पिता की जो है नियति को आकर उसमें आकार प्रदान करती हैं। अतः माता पिता सावधान रह करके ही उनकी भावनाओं को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचने देवें। जिनके माता पिता का जीवन कष्ट में व्यतीत होता है वे निश्चय ही चिंताओं तथा व्यथाओं दुखों में तथा पीड़ाओं से ग्रस्त अभिशस्त लगे हों। अतः आपको भी चाहिए, आपको परामर्श दिया जाता है कि आप अपने माता पिता की श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक सेवा करके उनका आशीर्वाद लेवें। वैसे वेदों में बताया गया है, ऋग्वेद का मंत्र यहाँ पर उपदेश देता है।

0: न यस्य सतुर्जनितोर अवारिन मातरा पितरा नु चिदिष्टौ अधा मित्रो न सुधितः पावको अग्निर्दीदाय मनुषेषु भिक्षुः। यहाँ पर मंत्र दिया गया है कि यहाँ पर आदेश है बच्चे और माता पिता के संपर्क के बीच में, जिस पुत्र के माता पिता रहते हैं दुखी हमेशा जो लगातार रहते हैं, वे तो उनका सत्कार नहीं कर सकते हैं, पर अत्यंत अत्याचार सदैव जो होता है तो वह पुत्र भाग्यहीन होता है और पीड़ित होता है बार बार। इसलिए जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है, सत्कार करता है, उनकी ही हर प्रकार से प्रजाओं में कीर्ति और प्रशंसा अपार होती है, उसको सौभाग्य सुख प्राप्त होता है, उसी का जय जयकार होता है। सबसे व्यवहार करने वाला वह हितैषी मित्र के रूप में वो होता है और सर्वदा हमेशा से अग्नि के सदृश चमकता रहता है। माता पिता का कल्याण। श्रोतागण, माता पिता वही हमारे पितर होते हैं, माता पिता हमारे जीवित पितर होते हैं, वही उनकी जीवित अवस्था में ही उनकी रक्षा करनी चाहिए। अथर्ववेद में बताया गया है कि वैदिक धर्मानुयायी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उनके माता पिता को स्वास्थ्य तथा सुख शांति तथा समृद्ध प्रदान करें। उनकी उत्कृष्ट कामना है कि विश्व के सभी प्राणियों, संपूर्ण गौ जगत और सभी मनुष्यों को स्वस्थ और सुखी जीवन का वर प्राप्त हो। यहाँ यह ध्यान में रखना समीचीन है कि इस मंत्र में यहाँ पर जो देने जा रहे हैं, हम इस मंत्र को ध्यान से अपने जीवन में उतारें। मंत्र है, स्वस्ति मात्रे उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः विश्व सुभूतम सुविदत्रम नो अस्तु जोगेत्र दृशेम सूर्यम। इस मंत्र का भावार्थ यह है, हमारी माता हमारा पिता सदा सुखी हो, हे प्रभु ऐसी कृपा करना। सब प्राणियों और सब गौओं का, संपूर्ण संसार के सब मनुष्य का सब प्रकार से कल्याण हो। हम सबको ऐश्वर्य, उत्तम ऐश्वर्य और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो। हे प्रभु, हम सबको ऐसी कृपा कीजिए, हम सब पर ये आनंदमय दीर्घ आयु प्रदान कीजिए हे भगवान, ताकि चिरकाल में चिरकाल दीर्घायु तक देखते रहें और सूर्य के समान दृश्य शोभायमान हम इस जगत में रहें। श्रोतागण, आदर्श परिवारों से ही आदर्श राष्ट्र का निर्माण होता है, इसीलिए आदर्शपन व्यक्ति से ही आरंभ होता है। व्यक्ति परिवार का निर्माण करते हैं, परिवार राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यदि परिवारों की स्थिति दयनीय होती है तो राष्ट्र का क्षय होता है और विघटन अवश्यम भावी है कि व्यक्ति की प्रथम पाठशाला उसका तो परिवार है। जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि परिवार में सबसे पहले उसकी माता ही उसका प्रथम पाठशाला का चरण होता है। यदि प्रत्येक परिवार में शांति तथा स्नेह, आदर तथा सम्मान, प्रतिष्ठा तथा शीतलता, राग तथा निष्ठा का बोलबाला है तो उनके नागरिकों से एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण अवश्य ही होगा। श्रोतागण, आज के लिए आपके ध्यान के लिए इतना ही। आप सबके को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

0: सुबह के 6:16 हो रही है। आप जुड़े हुए NBC रेडियो मॉरिशस के साथ। अब प्रस्तुत है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां। सेवा बापू स्टेट सेकेंडरी स्कूल, माफ कीजिए, वाक्वा सेवा बापू स्टेट सेकेंडरी स्कूल, वॉरियर्स रेस्ट, मोबाइल विंग्स, एडमिरल्टी रेजिडेंस के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 19 सितंबर को सुबह के 11:30 बजे से शाम के 3:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और वाक्वा ग्लेनपॉक वाक्वा के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 19 सितंबर को रॉयल रोड ग्लेनपॉक मुंबई रोड नंबर 1, मुंबई रोड नंबर 2, मुंबई रोड नंबर 3 और आसपास में जो गलियां हैं वहाँ के लोगों को सूचित किया जाता है कि दिन के 9 बजे से 12 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और रोंपा होद ग्लेनपॉक के निवासियों को सूचित किया जाता है कि दिन के 11 बजे से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच आज वहाँ पर बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर पेरेबेर, जी हाँ, एवेन्यू लोरिये पॉइंटो कानोनिये के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 20 सितंबर को सुबह के सवा आठ बजे इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। ये जगह है एवेन्यू लोरिये पॉइंटो कानोनिये। फिर मोसेमो नोलेन पेरेबेर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 20 सितंबर को दिन के 11 बजे से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और तेरूज मोसेमो ग्रीन पार्क और सेंट जोसेफ और मेबल मेनिये और आसपास में जो रास्ते हैं उन रास्तों में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 19 सितंबर को दिन के 12:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और थ्रोबिश मौसमों अस्तित्व मौसमों आमदनी के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 19 सितंबर को सुबह साढ़े ग्यारह बजे से दिन के बारह बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर तेरूज स्कूल लेन और मौसम जिहाज के आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 19 सितंबर को सुबह साढ़े ग्यारह बजे से दिन के 1 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना की बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सेबी इन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां।
1: 819 kHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
0: प्रभु के चरणों में ही सुख की प्राप्ति है। यह संसार मोह माया है, यहाँ कोई अपना नहीं है। ये शरीर जिस पर हम इतना गुमान करते हैं, ये शरीर हमारा अपना नहीं। 5 तत्वों से बना ये शरीर अंत समय में 5 तत्वों में मिल जाता है और आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। सो जब तक जीवन है, जब तक हमारी सांस चल रही है, उस परम पिता परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए आज की सुबह हम उस परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। विष्णु के अवतारों में से एक कृष्ण के रूप में विष्णु भगवान अवतरित हुए थे दुखों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना

अपना हेतु। तो चलिए इस महामंत्र का जाप करते हैं दामोदरम स्तकम में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो हरे रामा राम रामा हरे हरे।

प्रिय श्रोताओं, याद है ठीक 6:30 बजे आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, अनुद हवाई नुलावेनिया। उसके बाद सुबह के 7:05 पर हम प्रस्तुत करेंगे योर मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सुनते रहिए प्रेम से MBC रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घरे मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। शनिवार 19 सितंबर 2026 के प्रातःकालीन पहले समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सभी को नमस्ते और प्रणाम। सबसे आगे आज की सुर्खियां। सर शिवसागर राम गुलाम मेमोरियल सेंटर फॉर कल्चर आज शनिवार को करीब 11 महीने बाद जनता के लिए फिर खुलेगा। सर शिवसागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के मौके पर सेंटर को नई रूप में तैयार किया गया है, जिसमें तस्वीरों, अखबारों की कटिंग्स, निजी सामान और किताबों को शामिल किया गया है। केवल नगर में कल सर शिवसागर राम गुलाम की 126वीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री के देश की स्वतंत्रता और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को याद करते हुए स्मारक पार्क में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने राष्ट्रपिता की स्मृति को नमन करते हुए राष्ट्रीय एकता को प्रगति की अहम कुंजी बताया। मॉरिशस की रम को अब आधिकारिक तौर पर रोम द्वीपीय भौगोलिक संकेत का दर्जा मिल गया है। ये प्रमाण मॉरिशस में बनी रम की उत्पत्ति, गुणवत्ता और पारंपरिक उत्पादन कौशल की रक्षा करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी पहचान मजबूत करेगा। वर्ल्ड क्लीनअप डे से 2 दिन पहले मॉरिशस में अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज। सरकार ने ओपरेशन जीरो डे पुश शुरू की है, लेकिन लाशोमिया समेत कई इलाकों में अब भी खुले में कचरा फेंके जाने की समस्या बनी हुई है। त्रियोली की 60 वर्षीय सब्जी विक्रेता सरस्वती मुच्चा की गला घोंट कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। उनका शव कल सुबह सब्जी के खेत में मिला। मामले की जांच थोबिश क्रिमिनल पुलिस कर रही है। राधा रानी के प्रेम और भक्ति में डूबा वातावरण श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है राधा अष्टमी। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के बीच भक्त राधा रानी से सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांग रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में मस्जिद के पास कार बम धमाके में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। करीब 11 महीने तक बंद रहने के बाद प्लानवेयर स्थित सर शिवसागर राम गुलाम मेमोरियल सेंटर फॉर कल्चर आज शनिवार से जनता के लिए पुनः खुल रहा है। यह पुनः उद्घाटन सर शिवसागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के अगले दिन हो रहा है। कल उनकी जयंती के अवसर पर एक स्मरण समारोह भी आयोजित किया गया था। सेंटर में सर शिवसागर राम गुलाम के जीवन और योगदान को दर्शाने वाली प्रदर्शनी को नई सिरे से तैयार किया गया है। इसमें आर्काइव से प्राप्त नई सामग्री शामिल की गई है, जिसमें तस्वीरें, अखबारों की कटिंग्स, निजी सामान और सर शिवसागर राम गुलाम के जीवन तथा उनके सफर पर आधारित पुस्तकें शामिल हैं। इस पर ज्यादा जानकारी करुणा लालू दे रही है।
2: एक जाना पहचाना पता, एक ऐतिहासिक घर जो सर शिवसागर राम गुलाम का है, पोटली में नंबर 87 देफोज गली स्थित इस घर में उन्होंने 1936 में अपना मेडिकल क्लिनिक शुरू किया था। बाद में वे यहीं रहने लगे और 1965 तक इसी स्थान पर अपने चिकित्सीय और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कार्य करते रहे। आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अपनी बहन सुनीता जयपुल के साथ मिलकर सर शिवसागर राम गुलाम मेमोरियल सेंटर फॉर कल्चर को फिर से जनता के लिए खोल दिया। लकड़ी से बने इस ऐतिहासिक घर

0: की 8 कमरे राष्ट्रपिता के रूप में पहचाने जाने वाले शशि सागराम गुलाम के जीवन के एक हिस्से की कहानी बयां करते हैं। यहाँ उनकी तस्वीरें, पुराने अखबारों में प्रकाशित लेख और उनके निजी जीवन से जुड़ी वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। इस पुनः उद्घाटन के अवसर पर सबसे पहले शशि सागराम गुलाम की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये परिसर उनके पारिवारिक जीवन की यादों को फिर से जीवंत करता है, उनके चिकित्सीय सफर को सामने लाता है और देश की सेवा के लिए उनके समर्पण की कहानी भी बयां करता है।
1: केवल नगर सर शिव सागर राम गुलाम के जन्म स्थान पर कल प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम समेत कई गणमान्य लोग एकत्र हुए और राष्ट्रपिता की 126वीं जयंती मनाई। सर शिव सागर राम गुलाम मेमोरियल पार्क में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान देश के इतिहास में उनके योगदान को याद किया गया, खासकर मॉरिशस की स्वतंत्रता हासिल करने में उनकी भूमिका और उन महत्वपूर्ण सुधारों के लिए जिन्होंने देश को आकार देने में अहम योगदान दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने सर शिव सागर राम गुलाम की स्मृति को नमन किया। उन्होंने उन्हें मॉरिशस की धरती से जन्म लेने वाला सबसे महान जननेता बताया और कहा कि राष्ट्रीय एकता आज भी देश की प्रगति की प्रमुख कुंजियों में से एक है। इस पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम को सुनते हैं।
2: Qui nous confère sa capacité de contourner ma difficulté et sa persévérance qui finit de gagner une liberté, de l'indépendance. Vous connaissez à l'époque-là, ma famille hindoue, pas très content, moi, j'ai des enfants dans mon école payant. Qui fait? J'ai père. J'ai père qui a des enfants pour le gagner, apprendre côté européen. Je préfère vos enfants de Bédka. C'est si ça parle que voilà l'époque, il y a de Bédka. On parle hindi, on parle gita, ramayan, on se fait sentir tout cela. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand j'étais dans 5 ans, il venait à Soulier, il vivait dans la campagne, je me suis posé l'aise un peu en lambeau. Les tous mes enfants peuvent marcher, ils mettent uniforme et Soulier. Il y a pas un garçon là, il dit écoute bien, ils ont bien l'école. Qu'il fait? Ils ont 5 ans, ça. Ils rentrent ensemble en zone. Il y a l'école. Moi, c'est plus qu'un mille. Quand ils rentrent là-bas, c'est l'école catholique. Pose une question à ce dire. Madame Cyrus, un enfant, l'école payant à l'époque-là. Un enfant, peine en uniforme, il part, rentre dans la casquette, et le professeur qui s'est bouffé là. C'est mon petit, mais à toute la case. Mais Madame Cyrus, au lieu de faire ça, elle fait aller assiser sur place. Et après, quand l'école finit, Madame Cyrus dérangée, prend-lui, amène-lui sur la case. GMD Acha. GMD Acha, c'est l'Angleterre. Les gens ont envie de jouer un étudiant mauricien. Ils ont envie de causer aux autres. Ils ont envie de côté sur sa gare. Ils ont envie de faire. Ils ont envie de faire médecine. Acha, j'ai envie de faire. Je vais faire. Je pense qu'ils m'ont arrêté. Je me fais un arrêté. Je ne sais pas si la casse. L'amour peut travailler, travailler, mais pour ramasser la casse, l'amour continue. J'aime des achats. Pas de dire non, mais quand ils rentrent Maurice, ils ramassent l'argent, ils ont voulu s'assurer sur sa gare pour les continuer sur les tirs. C'est moi qui dis parfois, comme tout, je fais comme il a l'air. Je ne peux pas accepter. Regarde bien qu'il est arrivé là. Premier sens sur sa gare, une madame catholique. Deuxième sens, un musulman qui aide lui. Fini sur l'étude. C'est un SSO qui est passé. La cause, ça lui tient sa phrase, l'unité dans la diversité. C'est lui qui tient sa phrase. Et il élève nous comme ça, monsieur là. Quand il dit, il élève nous comme ça, pas fait de discrimination. Mon maman aussi pareil, mon maman là, c'est un honte ça. Lui aussi, il n'a pas fait de discrimination. Besoin de l'unité pour nous ici. Imagine bien, c'est mon pays, c'est où pays, c'est nous pays, ça, l'île Maurice là. As one people, as one nation in peace, justice and liberty. Un pays, une nation, un destin. Ça, tu rêves, c'est ça.

0: खबरों को आगे बढ़ाते हैं। मॉरिशस की रम ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। गोम दे मॉरिस को अब आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिक इंडिकेशन का दर्जा मिल गया है। इस प्रमाण से मॉरिशस में उत्पादित रम की उत्पत्ति, गुणवत्ता और उत्पादन से जुड़े पारंपरिक कौशल की सुरक्षा होगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मॉरिशस की रम की पहचान को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। गोम दे मॉरिस का लेबल हासिल करने के लिए रम का उत्पादन मॉरिशस में ही होना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था के तहत 7 डिस्टिलरी शामिल हैं। नाबूदो ने सेंटोबें, ओग्जानम क्राफ्ट डिस्टिलरी, मेजिन, शमारेल, ओबनिकेन और ग्रेस, इन सभी की अपनी अलग उत्पादन शैली बरकरार रहेगी, लेकिन गोम दे मॉरिस का दर्जा हासिल करने के लिए उन्हें एक समान निर्धारित मानकों का और नियमों का पालन करना होगा। ग्रेस के रम ब्रांड मैनेजर फ्लोरेंस दे कोरियोलिस को सुनते हैं, जिनसे बात की नियमा नारायण हडी ने।
1: मॉरिशस में रम बनाना साल 2000 के आसपास शुरू हुआ था। काफी समय तक मॉरिशस की रम आज जितनी अच्छी है उतनी अच्छी नहीं थी। उस समय चीनी मिलों के लिए रम बनाना इतनी बड़ी प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन आज मॉरिशस की रम ने दुनिया के बाजार में अपनी एक खास जगह बना ली है। इसी वजह से अलग अलग रम बनाने वाली संस्थाएं एक साथ आई हैं, ताकि मॉरिशस की रम की अच्छी गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। रम की अच्छी गुणवत्ता शुरू से ही जरूरी है। हम चाहते हैं कि मॉरिशस की रम की अपनी पहचान और उसकी अच्छी गुणवत्ता हमेशा बनी रहे। इसीलिए ऐसे कोई भी विधि नहीं अपनाई जानी चाहिए जो मॉरिशस की रम की गुणवत्ता के अनुरूप ना हो।
0: ये मान्यता ऐसे समय में मिली है जब दुनिया भर में प्रीमियम और हाथों से बने रम की मांग बढ़ रही है, खासकर यूरोप, अमेरिका और एशिया में। मॉरिशस के लिए इसका उद्देश्य अपनी रम को अन्य उत्पादों से अलग पहचान दिलाना, उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करना और निर्यात बाजार में उसकी विश्वसनीयता को मजबूत करना है। मेक्सा ने इस भौगोलिक संकेत को लागू करने के लिए स्थानीय रम उत्पादकों के प्रयासों में समन्वय किया है। संस्था की एक अहम भूमिका मॉरिस नाम, उसकी पहचान और प्रतिष्ठा की रक्षा करना भी है, खासकर इसके गलत या अनधिकृत इस्तेमाल को रोकना। इस बारे में मिक्सा की निदेशिका लीलावती राजमन जूसरी ने विस्तार से जानकारी दी। मिक्सा की निदेशिका को सुनते हैं।
1: मॉरिशस की मिट्टी में कुछ ऐसे खास रासायनिक और भौगोलिक गुण हैं जो मॉरिशस के लिए बहुत विशेष हैं। इसी वजह से यह बनाने वाली रम और यहाँ की चीनी में भी कुछ ऐसे खासियतें हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में आसानी से नहीं मिलती। मॉरिशस में यूरोपियन संघ के बीच एक व्यापार समझौता है। इस समझौता में एक खास प्रावधान है जिसके तहत मॉरिशस की रम को विशेष भौगोलिक पहचान दिलाने के लिए काम शुरू किया गया है। इस पहचान के मिलने से मॉरिशस बनाने वाली रम को अपनी अलग पहचान और मान्यता मिल सकेगी।
0: वर्ल्ड क्लीन अप डे से दो दिन पहले अवैध रूप से कचरा फेंकने के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। खास सरकार ने इस सप्ताह ऑपरेशन जीरो डिपो शुरू किया है। जनवरी से अब तक करीब 100 अवैध कचरा स्थलों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 1000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं। हालांकि लश्रमिया में निगरानी और कार्रवाई के बावजूद खुले में कचरा फेंकना जारी है। सीमेंट के टुकड़े, कबाड़ और घरेलू कचरे के ढेर लगातार बढ़ रहे हैं और कुछ जगहों पर तो कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं। वहीं जो लोग कानूनी तरीके से कचरा फेंकना चाहते हैं, उनके लिए ट्रांसफर स्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। इंस्पेक्टर अमासे के मुताबिक इन स्टेशन पर 500 किलो तक कचरा मुफ्त में जमा कराया जा सकता है। जॉन मिक मार्टिंगेल की 8 सितंबर 2024 में हुई मौत की न्यायिक जांच कल रोजिल अदालत में जारी रही। सुनवाई के दौरान 14 जुलाई को बुबासन जेल में मजिस्ट्रेट डेनिस विलियन और डीपीपी के प्रतिनिधियों द्वारा की गई घटनास्थल की जांच पर चर्चा हुई। इसके अलावा अदालत में पहले जांच जेल अधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों को

0: को भी सुनवाई का हिस्सा बनाया गया। लुविना सूफी, याचना मिश्रा।
1: जेलों के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद आसिफ रामतुला और अधिकारियों क्रितिश गुहा, जोनाथन वाइटिलिंगा, राजनंदलाल और इमानुएल कोस्टों को दोबारा गवाही के लिए बुलाया गया। उन्होंने डीपीपी के प्रतिनिधि बैरिस्टर रिकी भुकन के सवालों के जवाब दिए। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि अदालत में इन अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान बुबासन जेल में घटनाओं के पुनर्निर्माण के दौरान सामने आए दृश्यों से हमेशा मेल नहीं खाते थे। बैरिस्टर भुकन ने जॉन माइक मोटेंगाल की मौत के बाद बार्कली पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए बयानों में भी समानताएं बताई। ये बयान एएसपी मोहम्मद आसिफ रामतुला और चारों अधिकारियों ने दिए थे। एक समय पर इमानुएल कुस्तो ने स्वीकार किया कि पुलिस को अपना बयान देने से पहले उन्होंने और उनके सहयोगियों ने आपस में एक दूसरे से सलाह ली थी। हालांकि अन्य अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया। मामले की सुनवाई 24 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। उस दिन बैरिस्टर भुकन इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे। गौरतलब है कि जॉन माइक मोटेंगाल की मौत से एक दिन पहले एएसपी आसिफ रामतुला ने उनकी कोठरी की तलाशी का आदेश दिया था। तलाशी के दौरान एक मोबाइल फोन जब्त किया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान बैरिस्टर रिकी भुकन ने तय प्रक्रियाओं के उल्लंघन की ओर भी इशारा किया था। क्यूपिप के रहने वाले जॉन माइक मोटेंगाल खुद को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाला एक अमीर निवेशक और बेल्जियम में एक रेस्टोरेंट का मालिक बताते थे। उन्हें ड्रग तस्करी के मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। उन पर अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार की गई दो यूक्रेनी महिलाओं के जरिए करीब 4,60,00,000 मॉरिशन रुपए की सिंथेटिक ड्रग्स मॉरिशस लाने की कोशिश करने का संदेह था। उनके परिजनों का मानना है कि न्यायिक हिरासत के दौरान उनके साथ मारपीट की गई थी। वहीं पोस्टमार्टम में ये निष्कर्ष निकला कि उन्होंने आत्महत्या की थी। उनके परिवार वालों ने मामले की दोबारा जांच के लिए दक्षिण अफ्रीका के एक फोरेंसिक डॉक्टर से दूसरी पोस्टमार्टम जाँच भी कराई थी।
0: खबरों को आगे बढ़ाते हैं। BMW 740D Drive, McLaren और Tura, Aston Martin Coupe और Mini Cooper, जो याशिश अमृत और उनकी प्रबंधन कंपनी की हैं, अब FCC द्वारा नीलाम नहीं किए जा सकेंगे। याशिश अमृत ने कल सुप्रीम कोर्ट से इंजंक्शन यानी अदालत से रोक लगाने का आदेश हासिल कर लिया। इन वाहनों को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत जब्त किया गया था। अपने वकीलों के माध्यम से याशिश अमृत ने कहा कि उन्हें प्रेस के जरिए इन वाहनों की नीलामी के बारे में पता चला। उनका कहना है कि जाँच अभी जारी है और जब्ती का आदेश नहीं होने की स्थिति में इन वाहनों की बिक्री और बिक्री से पहले उनका निरीक्षण दोनों गैर कानूनी होंगे। FCC को 25 सितंबर को अदालत में ये स्पष्ट करना होगा कि इन वाहनों की बिक्री क्यों जारी रखी जानी चाहिए। गौरतलब है कि FCC 21 और 22 सितंबर को दूसरी नीलामी आयोजित कर रहा है। करीब 40 वाहनों के निरीक्षण की प्रक्रिया इस रविवार को निर्धारित है। 60 वर्षीय सरस्वती मुचिया की मौत गला घोंटने से हुई है। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर द्वारा किए गए पोस्टमार्टम के बाद ये निष्कर्ष सामने आया है। त्रियोली की रहने वाली सरस्वती मुचिया का शव कल सुबह इलाके में स्थित उनके सब्जी के खेत से बरामद किया गया। वह सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। मामले की जाँच थोबिश क्रिमिनल पुलिस ने शुरू कर दी है। राधा, प्रेम, भक्ति और समर्पण का वह नाम जो श्री कृष्ण के बिना अधूरा और श्री कृष्ण जिनके बिना पूर्ण नहीं माने जाती। राधाष्टमी के पावन अवसर पर आज देश भर में भक्त राधा रानी के चरणों में श्रद्धा और प्रेम अर्पित कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। ये पर्व केवल राधा रानी के जन्मोत्सव का अवसर नहीं बल्कि प्रेम की उस पवित्र भावना का उत्सव है जिसमें भक्ति ही सबसे बड़ा समर्पण बन जाती है। इस पर एक विशेष रिपोर्ट याचना मिश्रा द्वारा।

0: शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। ये पावन दिन भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त और उनकी दिव्य प्रेम शक्ति माने जाने वाली राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: ब्रज धाम राधा जी की, ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे।
0: राधा रानी का नाम आते ही मन में प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना जाग उठती है। कृष्ण के साथ राधा का संबंध केवल प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है।

0: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। इसी कारण उन्हें बरसाने वाली राधे कहा जाता है। उनके पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति देवी बताया जाता है।
1: श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे।
0: राधा रानी बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम से जुड़ी है। राधाष्टमी के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। राधा कृष्ण की प्रतिमाओं का श्रृंगार किया जाता है और भक्त पूरी श्रद्धा भाव से राधा रानी का स्मरण करते हैं। राधा रानी को केवल कृष्ण की प्रिया के रूप में नहीं बल्कि भक्ति के सर्वोच्च स्वरूप के रूप में भी देखा जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में किसी फल की इच्छा नहीं होती, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा फल ये मिला कि अभी भी उनका नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है, राधा कृष्ण।

आज भी भारत के कई शहरों में अभिवादन के रूप में लोग राधे राधे कहते हैं। राधा कृष्ण के मधुर भजनों से वातावरण में आध्यात्मिकता घुल जाती है। यही है राधा अष्टमी का संदेश। जहाँ प्रेम है वही भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहाँ राधा रानी का आशीर्वाद है।

0: आप सभी को राधा अष्टमी की शुभकामनाएं। आज 19 सितंबर को सुबह 9 बजे से पोर्टलिस में उनकी सीट पर सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से महाकाव्य रामायण पर आधारित रामायण गायन प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन के लक्ष्य के बारे में मौसे सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की सेक्रेटरी नवीन मातादी ने ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, उनको सुनते हैं।
1: जय श्री राम। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन सभी हिंदुओं को सूचित कर रहे हैं कि शनिवार 19 सितंबर 2026 यानी कि सैटरडे 19 सितंबर 2026 9:30 सवेरे मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन भवन पोर्टलिस में अयोध्या रामायण प्रतियोगिता के संदर्भ में रामायण गायन प्रतियोगिता, ट्रेडिशनल नॉर्मल वर्शन, ट्रेडिशनल चौताल वर्शन और मॉडर्न क्लासिकल वर्शन मंदिरों के लिए आयोजित कर रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत को बचाने, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने और इस महाग्रंथ रामचरितमानस की सीख को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए रामायण गायन प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। तो आप सभी आइए और देखिए कि हमारे नई पीढ़ी हमारे मंदिरों के टोलियाँ कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। जय श्री राम।
0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक मस्जिद के पास हुए कार बम धमाके में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी के अनुसार मृतकों में 15 पुलिसकर्मी और 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। ये हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोवात शहर में हुआ जहां बंदूकधारियों ने पुलिस की एक सुविधा पर भी गोलीबारी की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में धमाके में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बताया गया

है कि धमाका स्थानीय समय अनुसार दोपहर 1:15 पर हुआ। उस समय मस्जिद में शुक्रवार की नमाज अदा की जा रही थी। मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व दक्षिण पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है, सुबह के समय आमतौर पर मौसम सुहाना होगा। दिन के दौरान धीरे धीरे पूर्वी और सटे प्रांतों वाले इलाकों में बादल घिराएंगे और बारिश होगी। ऊंचे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। रात के दौरान भी पूर्वी और सटे प्रांतों वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी। अन्य इलाकों में बादल घिरे रहेंगे। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के पास समुद्र सामान्य रहेगा और 2 मीटर की लहरें उठेंगी। तापमान, अधिकतम तापमान सटे प्रांतों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच, शहरी इलाकों पर अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच, न्यूनतम तापमान सटे प्रांतों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:02 पर और सूर्यास्त शाम 6:05 पर।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का और कंसल पर हमारे सहयोगी फैजन का सहयोग मिला, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रॉबर्ट एडवर्ड हॉट स्ट्रीट स्टानले रोजिल में, रॉबर्ट एडवर्ड हॉट स्ट्रीट स्टानले रोजिल में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड के श्री सदानंद अंगुचिया, श्री सदानंद अंगुचिया जिन्हें टून के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी सोमवार को उनकी पत्नी बीना अंगुचिया के घर रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीघा की शमशान भूमि ली जाएगी। समय के बारे में बाद में बताया जाएगा। विदेशी लेन थ्रियोली में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री हनुमान बंधुआ जो TBS के रिटायर्ड बस कंडक्टर हैं, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर थ्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS लेन थ्रियोली की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 1 PM। सुमाहू लेन पोचित पॉइंट पीमो में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री आर्यवीर सुभग जिन्हें सूर्यदत्त के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो SSRN अस्पताल में रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर पोचित पॉइंट पीमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमदेव पापाई की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 1 PM। पेलावाल स्ट्रीट पुत्रोदो विलाज में OCA के आगे 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री राम प्रकाश रामकुलिया जिन्हें सुनील के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे ऋषिदेव रामकुलिया के घर पुतोदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 1 PM। लक्ष्मण रोड ब्रिजवेजिया में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री कृपानंद लक्कू जिन्हें राजेंद्र के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर ब्रिजवेजिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। आकाशिया स्ट्रीट बाउंड्री रोजिल में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड की जनाब मुख्तार अहमद अमीरुद्दीन जिन्हें मुख्तार के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे इनकी बहन काशिद बेन सुदन के मकान बाउंड्री रोजिल से उठाकर दफनाने के लिए सैमौते मोहोश का कब्रिस्तान ले जाएगा। Funeral today at 2 PM. Rye Road, Grand Bay में 79 साल के 79 years old की श्री रजनी दियाला जिन्हें राजन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:15 पर लाशापेलाउदों दिलियन सैन बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालिन की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे एट 15 PM. डिफो एबेन में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्री वारा दम्बर कपन पैदाशाम तिरुवेंगादम और जिन्हें विनोदा वारादम्बर

0: के नाम से ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10:15 पर उनके घर इबेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा कैटोबोन की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे एट 15:10 AM राय रोड कैटोबोन में राय रोड ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। रुद बासें कैटोबोन में 68 साल के 68 years old के श्री मोहलाल गोयराब जिन्हें सुनील के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके घर कैटोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून बाल्मीक रोड सैमिशेल बेलेरिवियर सेश में 33 साल के 33 years old के श्री महादेश सौदागर जिन्हें परमुन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके भाई मंदेश सौदागर के घर सैमिशेल बेलेरिवियर सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM स्कूल रोड दागुचिया में 53 साल के 53 years old के श्री धर्मानंद ज्योति जिन्हें जो एक पूर्व पुलिसकर्मी थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर दागुचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसापिया की शमशान भूमि ली जाएगी। कमिश्नर टुडे एट 11 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: गजानन आश्रम जो जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल रसबेल के बगल में पाया जाता है एक सरस्वती महापूजा का आयोजन कर रहा है। ये पूजा रविवार 20 सितंबर 2026 को सपहर के 3 बजे होगी। बच्चों एवं छात्रों से विनम्र आग्रह है कि वे इस पूजन में भरपूर भाग लें। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया आचार्य नगेंद्र शर्मा से संपर्क करें इस फ़ोन नंबर पर 5914339 5914-3390।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।
3: सुबह के 7:25 हुए हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। इंग्लिश प्रीमियर लीग चेल्सी के समंदर में जैसे अचानक बवंडर आ गया। ब्रैंटफोर्ड ने द ब्लूज को 3-0 से हराकर उनकी मुश्किलें द ब्लूज की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं, जबकि ब्रैंटफोर्ड का टाइम आ गया। अब वो लीग टेबल में मजबूती के साथ तीसरे स्थान पर आ गया है 9 अंक लिए। सो ब्रैंटफोर्ड 3-0। खेल के दूसरे भाग में जाकर एंटोनी का एक पहला गोल 61 मिनट पर, फिर ईगो चियागो ने अपना पहला प्रीमियर लीग गोल स्कोर किया खेल के 83rd मिनट पर, और इंजरी टाइम में भी जाकर फैबियो का वैल्यू ने घायल किया चेल्सी को। ब्रैंटफोर्ड 3-0। उल्लेखनीय है कि होआओ पेड्रो की अनुपस्थिति में चेल्सी के अटैक में जान ही नहीं थी, और ये चेल्सी का लगातार तीसरा लीग मैच है जिसमें उसे जीत नहीं मिली है। यानी अब क्साबी अलोंजो की टीम को इस तूफान से गुजरना पड़ेगा, इस तूफान से निकलकर अपनी लय और आत्मविश्वास वापस पाने की बड़ी चुनौती है। प्रीमियर लीग का 5वां सप्ताह आज जारी रखा जा रहा है। आज का एक अर्ली किक ऑफ 3:30 टोटेनम हॉटस्पर वर्सेस एस्टन विला, बड़ा ही गर्मा गर्म मैच, हॉट मुकाबला टोटेनम हॉटस्पर वर्सेस एस्टन विला आज 3:30। फिर 6 बजे लीग लीडर आर्सेनल एवे जाएगी ब्राइटन एंड होव के मैदान पे। अभी सप्ताह के दौरान ब्राइटन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ललकारा था, उसे एवे जाकर 3-2 से हराया था। सो आज ब्राइटन वर्सेस आर्सेनल 6 बजे। उसी समय एवर्टन का मुकाबला इपस्विच टाउन से होगा। न्यूकासल यूनाइटेड टक्कर लेगी अपने सेंट जेम्स पार्क में हल सिटी से, जबकि आज का लेट

मुकाबला रात 8:30 नॉटिंगहम फॉरेस्ट वर्सेस कोवेंट्री। कल रविवार को 4 अन्य मैच खेले जाएंगे। सबसे पहले शाम 5:00 कल लिवरपूल के लाल एवे जाएंगे बोर्नमुथ के यहाँ। बोर्नमुथ लिवरपूल कल शाम 5:00। फिर लीड्स यूनाइटेड टक्कर लेगी क्रिस्टल पैलेस से। मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला संडरलैंड से। द सिटीजन्स अभी पहले स्थान पे हैं आर्सेनल के साथ, 4 मैचों में 4

0: के मैदान पे। सो इतना सब कुछ इंग्लिश प्रीमियर लीग को लेकर। कल रात प्रीमियर लीग के अलावा बाकी चैंपियनशिप में भी कई मैच खेले गए। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में ब्रिस्टल सिटी ने वाटफोर्ड को 1-0 से परास्त किया। स्कॉटिश चैंपियनशिप में क्वींस पार्क की हार हुई, क्वींस पार्क 0 एयर यूनाइटेड 2। एफए कप के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड में वोचेस्टर ने स्ट्रैटफोर्ड को 2-1 से परास्त किया। और बात करें यदि स्पेन के लालीगा की, तो जो मात्र मैच खेला गया उसमें एल्चे की जीत हुई, स्पानियल 1 एल्चे 3। और जर्मनी के बुंडेसलीगा में भी बवाल मच गया जब बायर्न म्यूनिख ने अपने अलायंस अरेना में यूनियन बर्लिन को 7-0 से पछाड़ा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 7 गोल। जमाल मुसियाला का एक पहला गोल, हैरी केन ने 2 गोल दागे, माइकल ओलीजे का एक शानदार हैट्रिक रही और सैबारी ने 1 गोल स्कोर किया। सो बायर्न म्यूनिख 7 यूनियन बर्लिन 0। बाकी मैच आज रात खेले जाएंगे। इटली के सीरिया में मोन्जा 2 सासुओलो 1। तो फ्रांस के लीग अ में मोनाको की जीत हुई, ओलंपिक आईएस मोनाको 2 रेसिंग क्लब दे लांस 1। ब्रन और ग्रादित का 1-1 गोल मोनाको के लिए, ग्रादित का ये ओन गोल रहा। सो आईएस मोनाको अभी फिलहाल लीग टेबल में आगे बढ़ पाई है और देखते हैं कि आज और कल आगे आगे होता है क्या। इतने सभी मैच कल रात खेले गए, आज और कल इस सप्ताहांत के दौरान बाकी सभी मैच खेले जाएंगे। प्रीमियर लीग में हमने बता दिया कि आज का पहला मैच 3:30 बजे टोटनहम हॉटस्पर वर्सेस एस्टन विला, फिर रात 8:30 बजे नॉटिंगहम फॉरेस्ट का मुकाबला कोवेंट्री सिटी से, फिर स्पेन के लालीगा में जर्मनी के बुंडेसलीगा, इटली के सीरिया और फ्रांस के लीग ए में बाकी सभी मैच आज और कल खेले जाएंगे। कल सुबह इसी समय आपको हम देंगे इन सब के नतीजे, लेकिन बता देते हैं कि आज रात 7 से 9 के बीच हमारी फिर मुलाकात होगी इस बार रेडियो मस्ती और M2 पर हमारे झंकार बीट्स कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत कई सारी जानकारियां और आपको दी जाएंगी। और बता दें कि स्पेन की लालीगा में आज बार्सिलोना एवे जाएगी FC सेविलिया के मैदान पे। जर्मनी के बुंडेसलीगा में आज सभी मैच खेले जाएंगे। इटली के सीरिया में भी AS रोमा का मुकाबला आज इंटर मिलान से है, जबकि फ्रांस के लीग ए में आज रात ओलंपिक दे लियों खेलेगी रेन के विरुद्ध। सो इतना सब कुछ फुटबॉल, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को लेकर। और क्षेत्रीय तौर पर, स्थानीय तौर पर भी फुटबॉल जारी है। फुटबॉल की ही बात करें तो बता दें कि मॉरिशस की अंडर-20 टीम हार गई अपना पहला मैच नमीबिया के विरुद्ध, 1-0 से उनकी हार हुई। कोसाफा अंडर-20 का पहला मैच खेला गया मोजाम्बिक में, और जिसमें बेबी जोजोज या बेबी क्लब एम की हार हुई 1-0 से। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, पहला मैच है, लेकिन हर एक मैच बहुत ही आवश्यक है। इस कारण उन सबको इसलिए हार्दिक बधाई, एक पहला मैच जिनमें उनकी हार हुई 1-0 से। तो ये थी खेलकूद संबंधी चंद जानकारियां। सुबह के 7:08:50 हुए हैं। आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
3: आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में विद्या समिति विद्यार्थियों तथा निरीक्षकों को सूचित करता है कि छठी कक्षा की परीक्षा शनिवार 19 सितंबर 2026 को प्रातः 9:30 बजे से 11:15 बजे तक निम्न परीक्षा केंद्रों में होगी। DAV कॉलेज 1 महर्षि दयानंद स्ट्रीट पोर्ट लुइस, सुंदर मानरा खान कॉलेज लॉन्ग माउंटेन, कालबास गवर्नमेंट स्कूल स्कूल लेन कालबास, डी सिवराज गवर्नमेंट स्कूल नेवियर मिल रॉयल रोड ट्रियोले, पॉइंटोपीमा गवर्नमेंट स्कूल रॉयल रोड पॉइंटोपीमा ट्रियोले, प्लेंदे पपाए गवर्नमेंट स्कूल रॉयल रोड प्लेंदे पपाए, डी हरी गवर्नमेंट स्कूल रॉयल रोड गुडलैंड्स, भीवा महादेव गवर्नमेंट स्कूल रिवेजुगांपा, रामस्वरूप रामगति आर्यन वैदिक एडेड स्कूल रॉयल रोड लावॉन्चर।

0: सुखदेव बिसनदयाल गवर्नमेंट स्कूल रॉयल रोड लालमाटी, राजकुमार गजादर गवर्नमेंट स्कूल सेंट्रल फ्लाक, मोहनलाल मोहित गवर्नमेंट स्कूल सेंपिया, पंडित काशीनाथ किश्तो आर्यन वैदिक हिंदू एडिड स्कूल सेंपोल वाकवा, जिपे गवर्नमेंट स्कूल आर्य समाज स्ट्रीट मेबर्ग और सुयाक आर्य समाज मंदिर। निरीक्षकों से नम्र निवेदन है कि परीक्षा के आधे घंटे पूर्व अपने परीक्षा केंद्र में पहुंचने की कृपा करें। श्री सनातन धार्मिक ब्राह्मण महासभा द्वारा भारतीय विद्या भवन के सहयोग से शनिवार 19 सितंबर और रविवार 20 सितंबर 2026 को क्यूपिप कॉलेज, मॉडर्न कॉलेज और हिंदी भवन लॉन्ग माउंटेन में सरल संस्कृत की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। बालबोध, प्रारंभ और प्रवेश की परीक्षाएं रविवार को 9 से 2:30 बजे होगी क्यूपिप कॉलेज, मॉडर्न कॉलेज और हिंदी भवन लॉन्ग माउंटेन में। परिचय और कोविड की परीक्षा शनिवार 19 और रविवार 20 सितंबर को 9 से 2:30 बजे के बीच क्यूपिप कॉलेज में।
1: स्वस्तिकम फाउंडेशन द्वारा शनिवार 19 सितंबर 2026 की शाम 5:30 बजे स्वस्तिकम रॉयल रोड पिचगाफ्रे में गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। संग्राम आर्य समाज, आर्य महिला समाज, आर्य सभा मॉरिशस के तत्वधान में प्लेन विलियम्स आर्य जिला परिषद एवं वेद प्रचार समिति एवं मॉरिशस आर्य महिला मंडल के सहयोग से रविवार 20 सितंबर 2026 की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मऊ वाकवा जलाशय में 12 घंटों का एक वृष्टि महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं।

खावाई नू लाविनिय। तोहर खातिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल जात बा। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में किंग्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड जिलेतौद रोड मोफियाचिल रोजबेल में पावल जाला एगो हैवी लॉरी ड्राइवर जेकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बातें खोजत हवन। एप्लीकेशन करे खातिर कॉल करिए 2 7 7 73 46 अरिनेतर 2 7 7 70 09। अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 22 सितंबर 2026। कॉन्ट्रैक्टिंग के सेक्टर में जेनिथ कॉन्ट्रैक्टिंग लिमिटेड जे रॉयल रोड लागोसा में पावल जाला खोजत हवन एगो कॉर्पेंटर मासों स्टील फिक्सर। एप्लीकेशन करे खातिर कॉल करिए 2 5 87 31। अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 24 सितंबर 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में मेटलाइट कंपनी लिमिटेड जे लॉट 11 रोजबेल बिजनेस पार्क ग्रोबियो न्यू ग्रोव में पावल जाला खोजत हवन एगो हेल्पर एगो वेल्डर जेकर एनसी लेवल 3 और 2 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बाते एगो टर्नर जेकर एनसी लेवल 3 कर ले हवन और 2 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बाते एगो ड्रॉट्समैन जेकर डिप्लोमा और 2 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बाते एगो स्टोर कीपर जे एससी और नहीं तो एचएससी कर ले हवन और 2 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बाते एगो स्टोर मैनेजर जे डिप्लोमा कर ले हवन और 5 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बाते। एप्लीकेशन करे खाते कॉल करिए 2 7 7 34 34 और नहीं तो 59 40 02 01 पर।

मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में क्वालिटी टी एल टी जे B28 शिमेको पेराचीव लाफ्लोरा में पावल जाला ग्रेड टू कॉपेंटर खोजत हवन जेकर दू बरी स्किल लेक्स पे यौंस बा। एप्लीकेशन भेजे खातिर कॉल करिए सेकंडे 61 41 पर। अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 30 सितंबर 2026। टेक्सटाइल के सेक्टर में शहनाज खान क्लॉथिंग लिमिटेड जे पोप एनएससी स्ट्रीट बुबासे में पावल जाला खोजत हवन मैकेनिस्ट जेकर 6 महीना के लेक्स पे यौंस बा और ई टेक्सटाइल हेल्पर जेकर 6 महीना के लेक्स पे यौंस बा दे। एप्लीकेशन करे खातिर कॉल करिए 58 42 77 12। अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 30 सितंबर 2026। एविएशन एंड लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में जेनेसिस ग्रुप जे फर्स्ट फ्लोर एयर कार्गो हाउस ओल्ड एयरपोर्ट रोड प्लेनमायो में पावल जाला खुजा थवन कस्टमर सर्विस असिस्टेंट जेकर एक्सपीरियंस बा कस्टमर सर्विस में फ्रेट लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर जेकर डिप्लोमा बा लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में और लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट जेकर एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मैनुअल बाते। एप्लीकेशन करे खातिर अपन सीवी विदा करिए HR@genesis.co.com पर। अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 30 सितंबर 2026। रिटेल के सेक्टर में बीना फिश लिमिटेड जे रॉयल रोड गांगोब में पावल जाता खोजत हवन एगो फिश क्लीनर। एप्लीकेशन करे खातिर कॉल करिए 62 62 62 77। अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 30 सितंबर 2026। रिटेल के सेक्टर में वूलवर्थ्स मॉरिशस लिमिटेड जे द क्यूबिकल लॉट नंबर 1 रॉयल रोड फिनिक्स में पावल जाला खोजत हवन शॉप असिस्टेंट जे फोम काट कर ले हवन और स्टोर एडमिनिस्ट्रेटर जे HSC कर ले हवन। एप्लीकेशन करे खातिर अपन CV विदा करिए HR@administratormauritius@woolworths.co.za पर। अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 30 सितंबर 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में शिल्वान फर्नीचर लिमिटेड जे गुस्ताव कोलिन स्ट्रीट फर्स्ट साइड क्योपिप में पावल जाला खोजत हवन वॉर्निशा जेकर एक बरिस के लेक्स पे यौंस बाती। एप्लीकेशन भेजे खातिर अपन CV विदा करिए projectleader@shilvanfurniture.mu पर। अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 7 अक्टूबर 2026। पैरास्टेटल के सेक्टर में स्पेशल एजुकेशन नीड्स अथॉरिटी जे साइबर टावर 2 बी फ्लो ए बैन में पावल जाला खोजत हवन स्पीच थेरेपिस्ट कंसल्टेंट्स। एप्लीकेशन भेजे खातिन टेलीफोनिक करिए 460 30 15। अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 23 सितंबर 2026। सेक्टर पब्लिक में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस खोजत हवन एगो कम्युनिटी फिजिशियन। एप्लीकेशन करे खातिन अपन CV विदा करिए https://psc.gov.mu.org/। अंतिम तारीख है 28 सितंबर 2026।

0: पब्लिक सेक्टर में म्यूनिसिपल टाउन काउंसिल ऑफ वोबासें रोजिल खुजत हवन एगो हैवी मैकेनिकल यूनिट ड्राइवर एप्लीकेशन करे खातिन अपन सीवी विदा करिय https://lgsc.gov.mu/ पर अर्जी भेजे के अंतिम तारीख 22 सितंबर 2026। प्राइवेट हाउसहोल्ड सेक्टर में प्लेनमायों में एगो हाउसहोल्ड एम्प्लॉई के जरूरत बा एप्लीकेशन करे खातिन कॉल करिय माइबू ईआईसी 631-95-18 पर और नहीं तो 630-04-01 पर। प्राइवेट हाउसहोल्ड सेक्टर में ही रिवेजो रोपो में एगो हाउस मेड के जरूरत बा एप्लीकेशन भेजे खातिन कॉल करिय रिवेजो रोपो ईआईसी 412-69-25 पर। प्राइवेट हाउसहोल्ड के ही सेक्टर में हाउसहोल्ड एम्प्लॉई और गार्डनर के जरूरत बा गुडलैंड्स में एप्लीकेशन भेजे खातिन कॉल करिय गुडलैंड्स ईआईसी 282-59-17 पर। तो ई रहल नू ट्रावाई नू लाविनिया तोहर खातिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल गल रहल।
1: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427. Or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 p.m.
2: सुबह के 7:23 हुए हैं। सभी लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं AM2 MBC रेडियो मॉरिशस पर। अब प्रस्तुत है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ। प्लेनबोआ और मालाकोफ के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल 20 सितंबर को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। ब्रामस्तान मोसेल मोवियोस ब्रामस्तान बालकिसन रोड और कोइचे के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 20 सितंबर को सुबह के 8:15 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर जॉन्टिली टेल्फे विलाज लेजॉर्डे दे शांतनी रेलवे पोस्ट ऑफिस मोसेलमों Espral, Dr. Pilou, Monselmo Rhapsody, Kalachen, Société Mon Plaisir, Fail Gentilly, Fail Office, Flat et Folia, Monselmo MDA No. 1, Monselmo MDA No. 2, Fail Minisi No. 8, No. 2, Charles Telfe Institute No. 8, No. 2, CWA Camp Auguste, CWA Minisi, Pont Pump, STP Pumps, PV Form Minissi, Lycée des Mascareignes, École du Centre, or Les Allées d'Elvesia, PH3. वहाँ के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 20 सितंबर को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। Trèfle, Conda Lane, Avenue des Cactus, Avenue des Orchidées, Avenue des Géraniums और आसपास में जो गलियां हैं वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 20 सितंबर को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में

0: कटौती लाई जाएगी। और सेबास्टोपोल non seulement Sikda, quartier rouge, Pèlerin, Sébastopol, Consona, rue Crémation, rue Ragouba, aura espace medio, choti choti galiyan hai, wahan ke nivasiyon ko suchit kiya jata hai ki kal 20 september ko subah ke 8:30 baje se sham ke 3:30 baje ke beech bijli ki apurti mein katauti lai jayegi. Aur Quatre-Bornes, avenue Boundary, Résidence Pierre Laval, Résidence Beau Séjour, Robert-Edouard Hart, Docteur Ferrière, Horace Pass, qui est le lien. Il y a une innovation qui est en train de se faire qui est le 20 septembre, le jour de 10 bajé, le jour de 1 bajé, le jour de 1 bajé, le jour de 1 bajé. Coromandel, Marc Leasing, Avenue Riverside, अपार्टमेंट द वेज के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 20 सितंबर को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और जी हाँ, तो श्रोताओं से मांग की जाती है कि वो सावधानियां बरतें। तो अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस। सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
2: जी हाँ, ये आपका मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी दोस्तों को अजय प्रताप सिंह का सप्रेम नमस्कार। जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं, सभी का स्वागत करते हैं। भाई और बहनों, संगीत प्रेमियों, ये रेडियो आप ही लोगों का है और ये प्रोग्राम भी आप ही लोगों के लिए हम सजा कर लाए हैं। द मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना सैटरडे मॉर्निंग 9 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा। यस, टेल मी फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी तरह से हुई है। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। जी हाँ, प्यारी सी मुस्कुराहट दीजिए और आप देखेंगे कि दिन भर आप यूं ही मुस्कुराते गाते रहेंगे। क्या बात है! हंसना जरूरी है, मुस्कुराना भी जरूरी है। जब अपनों का साथ हो और जिंदगी आरामदायक हो तो क्या बात है कि नहीं? और इंसान वहीं जाता है जहाँ उसे प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है कि नहीं? तो बस यहाँ पर भी एमबीसी परिवार है जहाँ पर प्यार अपनापन मिलता है। आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद में प्राप्त होता है। इसी तो हर शनिवार की सुबह हम चले आते हैं दौड़े दौड़े आप लोगों का साथ देने के लिए ऑन AM2 MBC रेडियो मॉरिशस। 819 kHz पर हमारा प्रसारण चल रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एक ही नंबर है, 819 kHz। AM मोड पर हमारा लाइव प्रसारण चल रहा है मोका से। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मौसम तो आज बड़ा ही प्यारा रहने वाला है। धूप मुस्कुराएगी। क्या बात है, क्या बात है! पिछले सप्ताह से काफ़ी ठंड पड़ी हमारे देश में।

0: अच्छी बात है, ये धूप जो निकल आई है इससे कपड़े भी सुखा पाएंगे। हमारी गृहिणी जो है हमेशा कंप्लेन करती है, भाई जी इतनी बारिश हो रही है कि कपड़े नहीं सूख रहे। सो इस वीकेंड तो मौसम बड़ा ही प्यारा रहने वाला है, सो कपड़े ज़रूर सुखाएं और जितना काम काज है आराम से करें, है कि नहीं। सो सुबह का वक्त है, अगर मीठी मीठी नींद से जागे हैं तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग। और बस आपको बता दें कि आज है शनिवार, जी हाँ शनिवार 19 सितंबर साल 2026। आज का दिन स्पेशल है उन लोगों के लिए जिनका जन्मदिन है। सो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार हमारी ओर से और एमबीसी की पूरी टीम की ओर से। चलिए देर न करते हुए सुबह का नजराना प्रोग्राम का पहला आइटम प्रस्तुत करते हैं, जैसे फर्स्ट सेगमेंट आज का चिंतन। और चलिए सुनते हैं कि डॉक्टर झमनजी हमें क्या सुना रही है।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: बेईमान ईमानदार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेईमान अगर ईमानदार को धोखा देने की कोशिश करेगा तो वह धोखा लौटकर बेईमान को ही नुकसान पहुंचाएगा।

आज का दिन, आज की तारीख बहुत ही पावन है, शुद्ध है, पवित्र है, क्योंकि आज हम दुनिया भर में मना रहे हैं राधाष्टमी। सो MBC की पूरी टीम की ओर से आप सबों को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और राधाष्टमी भगवान कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है, यानी जन्माष्टमी के लगभग 15 दिन बाद। हिंदू वैष्णव परंपरा में राधा रानी को प्रेम, भक्ति और समर्पण का स्वरूप माना जाता है। भक्त इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और भक्ति की भावना को स्मरण करते हैं। सुबह स्नान करने करके साफ कपड़े पहनते हैं, राधा कृष्ण की पूजा और श्रृंगार करते हैं, फूल फल मिठाई और आदि अर्पित किया जाता है। राधाष्टमी की कथा और राधा कृष्ण के भजन सुने और गाए जाते हैं। कई भक्त व्रत रखते हैं और बाद में प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा, झांकी और कीर्तन होते हैं। और यह जो त्यौहार है, बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, क्योंकि हम कृष्ण जी की अर्धांगिनी राधा जी का गुणगान करते हैं। तो जितने भी भक्त आज राधाष्टमी मनाएंगे, राधा जी का व्रत आपने धारण किया है, तो बस हम यही प्रार्थना करेंगे राधा रानी से, राधा मैया से, कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो। राधे राधे, राधे कृष्ण, कृष्ण राधा माता का जो आशीर्वाद है आप सब पर बना रहे। सो MBC की पूरी टीम की ओर से राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को।

गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। इसी भक्ति गीत के साथ ही सुबह का नजाना इसका पहला हिस्सा यहीं पर समाप्त होता है। 7:45 वाले हैं, ठीक 7:45 आप सुनेंगे हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से ज्ञान सर्वर कार्यक्रम। उसके बाद 8:00 भोजपुर में समाचार शोक समाचार पढ़े जाएंगे। समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी। स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड, सुनते रहिए अति प्रेम से MBC रेडियो मॉरिशस।

0: प्रिय श्रोतागण, हिंदी संगठन यानी हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा प्रस्तुत हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान सरोवर में हम आप सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। आप सभी लोगों को नमन है। आज के कार्यक्रम में हम जैसे हर सप्ताह की तरह किसी अतिथि को बुलाकर उनके ज्ञान का हम प्रचार करते हैं, वर्धन करते हैं। और प्रसन्नता की बात है कि आज स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं एक विदुषी, अपने परिचय स्वयं देगी वो, और उन्हीं के साथ आज का वार्ता हम जारी रखेंगे। बहन जी बताइए, आप कहाँ से आ रही हैं, आपका पूरा परिचय।
1: सर्वप्रथम तो मैं आप सभी श्रोतागणों को कजो नमस्कार करती हूँ, गुरु जी आपको भी कजो प्रणाम। मैं श्रीमती जोन की प्रीति हूँ और तकरीबन मैं 25 वर्षों से हिंदी की सेवा करती आई हूँ और अभी मैं सर अब्दुल रहमान स्टेट कॉलेज में हिंदी पढ़ा रही हूँ।
0: एडुकेटर है?
1: एडुकेटर, हाँ
0: हाँ। और रहती किधर है आप?
1: मैं सैंपुर रहती हूँ।
0: सैंपुर रहती हाँ, है हाँ। अच्छा, हिंदी से जुड़ी हुई है
1: हाँ।
0: अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि आज आप स्टूडियो में आने की अपनी मंजूरी दी।
1: धन्यवाद।
0: आज हम कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको और सभी जनता को बता देते हैं कि हाल में अभी हमने हिंदी दिवस मनाया
1: हाँ।
0: अभी तक हम हिंदी दिवस मना रहे हैं
1: हाँ।
0: हिंदी दिवस हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही एक अच्छा दिन है, शुभ दिन है, जहाँ पर सभी लोग हिंदी के कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कर रहे हैं। हाल ही में अभी हर किसी संस्था ने इसके हिंदी दिवस के उपलक्ष पर बहुत सारी अच्छी अच्छी कार्यक्रम किए, उसमें से इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडिया कल्चर, विश्व हिंदी सम्मेलन, आर्य सभा, जितने भी सभासद हैं सभी लोगों ने हिंदी दिवस जोरदार से मनाया। वैसे जनता को जानकर यह प्रसन्नता होगी कि हिंदी दिवस 1953 में उसका गठन हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस शुभ दिन को प्रत्येक वर्ष मनाने का वो निर्णय लिया। तब से ये मनाया जाता है और हिंदी दिवस बहुत ही कैसे स्मरणीय दिन है हिंदी पढ़ने वालों के लिए, और हमें चाहिए कि हिंदी का प्रचार प्रसार इसी प्रकार से होता रहे। आपका स्वागत है बहन जी, और आप हमें बताइए कि आज इन दिनों आप सरकारी स्टेट कॉलेज में जुड़ी हुई हैं
1: हाँ।
0: हिंदी की पढ़ाई कैसे चल रही है वहाँ पर सबसे पहले?
1: हाँ, यानी कि मैं अकादमिक स्कूल में हूँ
0: हाँ।
1: और वहाँ पर हिंदी की पढ़ाई बड़ी जोर शोर से चल रही है।
0: बच्चों की संख्या आदि, बच्चे हिंदी
1: हाँ हाँ पढ़ रहे हैं
0: हाँ।
1: और हाँ, वे काफ़ी रुचि भी दिखाते हैं इस भाषा में
0: हाँ।
1: और न केवल पढ़ाती हूँ लेकिन बल्कि मैं उन्हें प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने के लिए जैसे कि
0: प्रोत्साहित
1: करती हूँ हाँ
0: हाँ। अच्छा, आज हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में वैसे तो अनेकानेक कवि, महाकवि, लेखक जुड़े हुए हैं
1: हाँ।
0: विशेष रूप से हिंदी दिवस के उपलक्ष पर आज हम अपना जो वक्तव्य है आधारित करेंगे हमारे सर्वश्रेष्ठ महाकवयित्री महादेवी वर्मा पर। सबसे हमें पहले हमें यह बताइए
1: हाँ।
0: कि महादेवी वर्मा का साहित्यिक योगदान क्या है
1: हाँ। महादेव

0: थॉमस का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी कविता को गहरी आत्मानुभूति, संवेदना और आध्यात्मिकता प्रदान की तथा नारी जीवन और मानवीय करुणा को साहित्य में प्रभावशाली स्थान दिया। वे छायावाद की प्रमुख कवयित्री होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण नारीवादी चिंतक और गद्यकार भी थी।
1: अच्छा, रहस्यवाद की बात आपने कही अभी महादेवी वर्मा को, उसके साथ साथ में उनकी कविताओं में उनकी लेखनी ने बहुत ही जोर डाला है वेदना और पीड़ा पर, इस पर थोड़ा सा विचार करें आप।
0: हाँ अवश्य, वेदना महादेवी वर्मा की काव्य संवेदना का केंद्रीय तत्व है। उनके लिए पीड़ा केवल दुख नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव और सृजन की प्रेरणा है। विरह और अधूरी प्राप्ति के माध्यम से वे जीवन की गहराई को समझने का प्रयास करती हैं। इसलिए उनकी वेदना निराशा पैदा करने के बजाय पाठकों को संवेदना और आत्मचिंतन उत्पन्न करती हैं।
1: बहन जी मुझे बताइए, आज के आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं महादेवी वर्मा की कविताएं, क्या आज के बच्चे उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं, रहस्यवाद को समझ पाते हैं या जो भावना है कविताओं में उसको पकड़ पाते हैं?
0: हाँ, वे पकड़ पाते हैं। जैसे कि पहले तो हम उन्हें पढ़ाते हैं महादेवी वर्मा पर कुछ ना कुछ, एक जैसे कि जीवन परिचय के बारे में कहते हैं, फिर कविता पर आते हैं और कविता पर आने पर कुछ एक दो जैसे कि विचार प्रकट करते हैं, तब वे पढ़ते हैं दो तीन लाइन और हम समझाते
1: हैं, व्याख्या करते हैं उनकी,
0: व्याख्या करते हैं।
1: हाँ, क्योंकि कविताओं में जो रस है उसके रसास्वादन तो कर पाते हैं, वे अच्छी तरह समझ पाते हैं।
0: हाँ, यानी कि जो HSC के बच्चे हैं, हाँ वे रसास्वादन कर पाते हैं और काफी रुचि दिखाते हैं।
1: आपने अभी HSC की बात की, वो पाठ्यक्रम में महादेवी वर्मा जी की कविताएं हैं।
0: हाँ, दो कविताएं हैं जैसे कि जीवन विरह का जलजात और धीरे धीरे उतर क्षितिज में।
1: इन कविताओं के बारे में थोड़ी सी कुछ बता सकते हैं आप?
0: अवश्य, जैसे कि उनकी पहली कविता धीरे धीरे उतर क्षितिज में, कविता का मुख्य भाव प्रकृति सौंदर्य, शांति और रहस्यमय आध्यात्मिक अनुभूति है। और महादेवी वर्मा ने सूर्यास्त और संध्या के सुंदर दृश्य के माध्यम से अपने कोमल, संवेदनशील और भावुक मन को व्यक्त किया है।
1: बहन जी मुझे बताइए कि महादेवी वर्मा की कविताओं का असर आधुनिक जीवन के बच्चों पर कैसे हो सकेगा या होता है, कैसे अपने व्यवहार में बच्चे लाते हैं उनकी कविताओं के भाव को?
0: हाँ, जैसे कि जो रहस्यवाद है वो उन काफी ठीक तरह से ग्रहण कर पाते हैं।
1: हाँ, मधुर कविताएं होती है। अच्छा, चलते चलते मुझे एक बात बताइए, प्रकृति चित्रण के बारे में भी बात की आपने। महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रकृति चित्रण, इस पर थोड़ा सा समझाइए हमें।
0: प्रकृति उनकी कविताओं में केवल बाहरी सौंदर्य का विषय नहीं है, वहाँ कवित्री की भावनाओं की सहचरी और प्रतीक बन जाती है। बादल, दीप, फूल, रात, चांद और पवन आदि के माध्यम से वे अपने मन की आशा, निराशा, विरह और करुणा को व्यक्त करती हैं। मैं तो कहूंगी कि HSC के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वे कहते हैं बहन जी नहीं, बहुत ही जैसे कि दुख भरी कविताएं, लेकिन जब वे सच्चे में
1: समझ पाते
0: गहराई में जाते हैं तो वे कर पाते हैं।
1: बहन जी चलते चलते ये बताइए कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कही गई है, इसके पीछे रहस्य क्या है?
0: महादेवी वर्मा की कविता में गहरे आध्यात्मिक प्रेम और विरह की भावना दिखाई देती है। उनका प्रिय अक्सर किसी स्पष्ट सांसारिक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक अज्ञात आध्यात्मिक या परम सत्ता के रूप में सामने आता है। इसी कारण उनकी भक्ति, विरह और आत्मसमर्पण की भावना की तुलना मीरा से की जाती है और इस प्रकार उन्हें आधुनिक मीरा कहा गया है।
1: अच्छा, इसके साथ साथ किन कवियों को या किन कवित्रियों को इनके साथ तुलना की जा सकती है आपके विचार से?
0: देखिए, सभी जो कविगण हुए हैं छायावादी के, उनका एक अलग ही स्थान है। तो मैं कहूँगी, क्योंकि जैसे कि हम छायावादी लेते हैं, तो छायावादी के जो कविताएं होती है वो अपने ही में एक अलग, जैसे कि उनकी
1: अलग प्रकार की भावना उसमें व्यक्त होती है। अच्छा बहन जी, इन कवियों को पढ़ाते हुए आपका जो अनुभव रहा है, बच्चे कविताओं को पसंद करते हैं?
0: हाँ, बस बच्चे कविताओं को पसंद करते हैं, क्योंकि जब एक बार उनको ठीक से ग्रहण कर लेते हैं तो वे लिख पाते हैं।
1: और इस प्रकार की कोई गतिविधियां होती है जिस पर इसका खुलकर बच्चे प्रदर्शन कर सकते हैं या किसी?
0: हाँ, जैसे कि हम
1: कविता पठन या कुछ इस
0: कविता
1: प्रकार
0: पठन करते हैं, फिर एलोक्यूशन कंटेस्ट करते हैं, और ऐसी बहुत सी जो प्रतियोगिताएं हैं जिनमें हम भाग लेते हैं, जैसे कि हिंदी दिवस के अवसर पर भी आप कह रहे हैं, तो उनको बहुत प्रकार का, जैसे कि बहुत अवसर मिलता
1: है प्रस्तुत करने का, क्योंकि पढ़ाने का माध्यम यह भी होता है कि बच्चों को प्रस्तुत किया जाए और बच्चे स्वयं कविता पठन करें ताकि वे ज्यादा इसको समझे और अपने जीवन में इसको उतारे। और इसके बारे में और कौन से अच्छे गुण महादेवी वर्मा के आपको दिखता है?
0: जैसे कि जब हम उनके साहित्य पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि नारी चेतना पर उन्होंने किस प्रकार से नारी पर अपने विचार व्यक्त किया है। और मैं तो कहूँगी कि महादेवी वर्मा स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, उनकी स्वतंत्रता और उनके अधिकारों पर गंभीरता से उन्होंने विचार किया है, विशेष रूप से जैसे कि श्रृंखला की करिया में उन्होंने स्त्री को समाज द्वारा लगाए गए बंधनों से मुक्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने नारी को केवल त्याग और सहनशीलता की मूर्ति मानने के बजाय उन्हें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर के रूप में देखा है। तो इस प्रकार से जब बच्चे पढ़ते हैं तो जैसे कि आजकल की जो नारियां होती हैं कैसे स्वतंत्र हैं, तो काफी रुचि दिखाते हैं।
1: महादेवी वर्मा रहस्यवादी कवित्री के साथ साथ और कौन से गुण से संपन्न है, आप कुछ बता सकती हैं?
0: हाँ, महादेवी वर्मा ने कविता के साथ साथ संस्मरण, रेखाचित्र और निबंध भी लिखे। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी जैसी रचनाओं में उन्होंने व्यक्तियों और जीवन के अनुभवों को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके गद्य में करुणा, मानवीय संवेदना और सूक्ष्म निरीक्षण दिखाई देता है।
1: ठीक है बहन जी, इन कवियों कवयित्रियों को पढ़ाते हुए आपका काफी समय हो गया है पाठशालाओं में,
0: काफी समय हो
1: और
0: गया।
1: बच्चे भी इसे रुचि रखते हैं
0: अवश्य।
1: और इनके साथ साथ और कवित्रियों के बारे में आपके आप संदेश दे सकते हैं नौजवानों को, हमारे शिष्यों को, पाठ्यक्रम?
0: जैसे कि पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि महादेवी वर्मा है HSC के पाठ्यक्रम में, फिर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और सुमिता नंदन पंत जी, तो सभी का एक एक स्थान, अपना एक स्थान है।
1: बहुत बहुत और, बहुत धन्यवाद बहन जी, आप आए, आपको कोटि कोटि धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद गुरु जी।
1: हम आज के इस कार्यक्रम के अंत पर पहुंच गए हैं। हम श्रोताओं से यही मांग करेंगे कि लगे रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार के कार्यक्रम हम अतिथियों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। अगले दिनों के इंतजार में हम सभी लोगों को धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।

8 बजे के समाचार में सबको के स्वागत कर जाता है, सबको के नमस्ते आप प्रणाम। सबसे आगे हम नी देश के बारे में बतियाओ। अब जा शिव सागर राम गुलाम मेमोरियल सेंटर फॉर कल्चर आज सामदी के 11 महीना के बंद रहला के बाद जनता खातिर खुलता। शशि सागर राम गुलाम के 126वां जयंती के मौका पर सेंटर के नवा रूप में तैयार कर गल बाटे, जेकर में तस्वीर, अखबार की कटिंग और उनकर निजी सामान और किताब भी शामिल बाटे। आर केवल नगर में काल शशि सागर राम गुलाम की 126वां जयंती पर उनकरा भावभीनी श्रद्धांजलि देवल गल। मॉरिशस के पहला प्रधानमंत्री के देश के स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक विकास व योगदान के याद करत स्मारक पार्क में उनकरा श्रद्धांजलि देवल गल पुष्पांजलि समारोह के आयोजन भइल। आर यही अवसर पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित आर बहुत दूसर गणमान्य भी हुआ उपस्थित रहन जा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम राष्ट्रपिता के स्मृति के नमन करत राष्ट्रीय एकता के प्रगति के अहम कुंजी बतैलन। मॉरिशस के रम के अब आधिकारिक तौर पर रोम दो मोरिस भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिक इंडिकेशन के दर्जा मिल गल बाटे। ई प्रमाण मॉरिशस में बनल रम के उत्पत्ति, ओकर गुणवत्ता और पारंपरिक उत्पादन कौशल के रक्षा करे के संगे संगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एकर पहचान के भी मजबूत करेला। दूसरा समाचार में ई भी शामिल बाटे कि वर्ल्ड क्लीन अप डे यानी के साफ सुथरा रखे के जो दिन है ओकर दो दिन अगते ही मॉरिशस में अवैध रूप से कचरा फेंके होला लोग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर देवल गल बाटे। सरकार ओपेरेशन जीरो डेपो शुरू कर ले बाटे, पर लाशोमिया समेत कई गो दूसर इलाका में अभी ले खुला में कचरा फेंकल जाए के समस्या बनल बाटे। अब तनी हमनी कानूनी मामला के बारे में बतियाला जा। जॉन मिक मॉटिंगेल के 8 सितंबर 2024 में भयल मौत के न्यायिक जांच रोजिल अदालत में जारी रहल। काल की सुनवाई में बोबासे जेल में करल गल घटनास्थल के जांच और 5 जेल अधिकारी के पहला देवलगर बयान में सामने आल विसंगति पर सवाल उठावल गल बाटे। एगो दुखद घटना थ्रियोले में बीतल 60 बरिस के 3 बरिस के एगो सब्जी बेचे होला मौसम यानी कि सरस्वती मुचिया के गला घोंट के मुआ देवल गल बाटे। एकर पुष्टि भल बाटे उनकर देह उनकर शव के काल फजीर के ओकरे खेत में मिलल। मामला के जांच थोबिश के क्रिमिनल पुलिस करता। आर याशिश इमरित आर उकर प्रबंधन कंपनी के 4 लग्जरी कार के नीलामी पर सुप्रीम कोर्ट अभी रोक लगा दिले बाटे। ऊपर एगो एजोंक्शन लगावल गल बाटे। FCC के 25 सितंबर के अदालत में ई बताए के पड़ी कि ई सब जो लुत्तो बाटे एके काहे बेचे के चाही आर काहे नहीं बेचे के चाही। और अंत में आज हमनी मनावत है जा राधा अष्टमी। राधा रानी के प्रेम और भक्ति में डूबल बा अभी सब सारा वातावरण। श्रद्धा के संगे मनावल जात बा आज राधा अष्टमी। देश के कई गो मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के बीच भक्त राधा रानी से सुख, शांति और समृद्धि के आशीर्वाद मांगत हवन जा। आप लोग के ई भी बता देवी ला जा कि जब हमने राधा रानी की बात बतियाए ला जा तो राधा रानी के नाम के संगे जुड़ेला श्री कृष्ण के भी नाम। और जब हमने श्री कृष्ण के बारे में बतियाए ला जा तो राधा रानी के हमने भुलाए नहीं सकब जा। राधा रानी के पावन अवसर राधा अष्टमी के पावन अवसर पर आज सब कोई के हमनी बहुत शुभकामना देवत हैं जा। आज ये जो धार्मिक अनुष्ठान बाटे ये भक्तिमय वातावरण में बितावल जाता। ये परब खाली राधा रानी के जन्मोत्सव के अवसर नहीं है बल्कि ये प्रेम के ऊ पवित्र भावना के उत्सव है जेकर में भक्ति ही सबसे बड़ा समर्पण बन जाला। और आप सब कोई के ये भी बता देवी ला जा कि आज ही के दिन आज सामदी के पोर्ट लुइस के सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के अपन सीट में हुआ परी सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन महाकाव्य रामायण पर आधारित रामायण गान प्रतियोगिता के आयोजन करता। ई आयोजन के लक्ष्य ई है

हमनी के संस्कृति हिंदू संस्कृति के आगे बढ़ाए के युवा के बीच परंपरा आज संस्कृति के बढ़ावा दे खातिर ई आयोजन करल जाता। दूसरा देश के समाचार में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मस्जिद के भीरी एगो कार में एगो बम धमाका भयल जेकर में

0: हमला के बखत पुलिस के एगो सुविधा पर गोली बारी भी करल गल बाटे। तही संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल। अभी 8:05 होता।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

मरने के समाचार सुना। स्कूल रोड दागुचिया में, स्कूल रोड दागुचिया में 53 बरिस की 53 इयर्स ओल्ड की दुगोरी 13 बरिस के श्री धर्मानंद ज्योति जो आगे एगो पुलिस अफसर हैं, इनका मृत्यु हो गल बाटी। इनका अर्थी आज फजित के 11 बजे इनका घर दागुचिया से उठा के अंतिम संस्कार खाती सैकों सैपिया के शमशान भूमि ले चावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। बाल्मीक रोड सैन मिशेल बेलेर वेसेश में बाल्मीक रोड एस आई मिशेल बेलेर वेसेश में 33 बरिस के एक कोरी 13 बरिस के श्री महादेश सौदागर जिनका परमुन के नाम से बेन में जिस जनाथन जाके मृत्यु होकर बाटी। इनका अर्थ ही आज फजित के 11 बजे ही इनकर भाई मंदेश सौदागर के घरे बेलेर वेसेश से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। कमीशन टूडे एट 11 AM। रुद बासें काठुबोन में 68 बरिस के 3 कोरी 8 बरिस के श्री मोहलाल गोरप जिनका सुनील के नाम से बेद में जैसे जाथन जा की मृत्यु हो गल बाटी। इनकर अर्थी आज दिन के 12 बजे इनका घरे काठुबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर देव गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए। कमीशन टूडे एट 9। देकात एबेन में 83 बरिस के 4 कोरी 3 बरिस के श्रीमती वारादंबर कपन पैदाश नाम तिरुवेंगानम जिनकरा विनोदा वारादंबर के नाम से बेद में जैसे जानते हैं जाके मृत्यु होकर बात। इनकर अर्थी आज फजीर के 10:15 पे इनकर घरे एबेन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा कैटरबोन के शमशान भूमि ले जावल जाए। कमीशन टू दी 10:15 AM। रॉय रोड ग्रॉम्बे में 79 बरिस के 3 कोरी 19 बरिस के श्री रजनी दियाला जिनका राजन के नाम से बेन में जैसे जानते हैं जाकिन मिथो कल पाटिन कर अर्थी आज 12:15 पर लाशा पेलोदों देलियनसन बुवासे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लिसालिन के शमशान भूमि ले जावल जाए। कमीशन टुडे एट 15 मिनट्स पास नून। आकाशा स्ट्रीट बाउंड्री रोजिल में 73 बरिस के 3 कोरी 13 बरिस के जनाब मुख्तार अहमद अमीरुद्दीन जिनका मुख्तार के नाम से बेद में जिसे जाना जनजा इंतकाल कर गल हुआ। इनकर जनाजा आज दिन के 2 बजे इनकर बहिन काउशिद बैन सुदन के घरे रोजिल से उठा के दफनाए खाती सैमौत मोगोश के कब्रिस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। लक्ष्मण रोड ब्रजवैजा में 75 बरिस की 3 कोरी 15 बरिस के श्री कृपानंद लखू जिनका राजन के नाम से भी में जैसे जानते हैं जाके मृत्यु हो गल बाटी। इनकर अर्थी आज फजर के 11 बजे इनका घर ही ब्रजवैजा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावोचा के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टी डी एट 11 AM। पेलावाल स्ट्रीट पुत्रदो विलाज में ओसीए की भीड़ी 63 बरिस के 3 कोरी 3 बरिस के श्री राम प्रकाश रामकुलिया जिनका सुनील के नाम से भी आदमी जैसे जहाँ जा और जो आगे यूबीपी बाजार पुत्रदो में काम कर रहे थलन की मृत्यु होकर बाटी। इनकर अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर बेटा ऋषिदेव रामकुलिया के घरे पुत्रदो विलाज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो के शमशान भूमि ले जावल जाए। कमीशन टी डी एट 1 PM। सोमारूलेन पचित पॉइंटोपी मोमे 81 बरिस के 4 कोरी 1 बरिस के श्री आर्यवीर सुभग जिनकरा सूर्यदत्त के नाम से भी आदमी जैसे जहाँ जा और जो आगे एसएसआरएन अस्पताल में काम कर थलन की मृत्यु हो गई बाटे। इनकर अर्थी आज दिन के 1 बजे इनका घरे पिचित पॉइंटोपी मौसे उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लेंडी पपाई के शमशान भूमि ले जावल जाए। कमीशन टी डी एट 1 PM। विदेशी लेन थ्रियोली में 73 बरिस के 3 कोड़ी 13 बरिस के श्री हनुमान बंधुआ जो आगे

तेबे एस समय बस कंडक्टर रलन की मृत्यु होकर बातें कर अर्थी आज ही दिन के एक बजे इनका घर ही थ्रियोले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर SSS लेन थ्रियोले के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टूरी एट 1 PM। रॉबर्ट एडवर्ड हॉट स्ट्रीट स्टैनले रोजिल में सत्तर बरिस के 3 करोड़ 10 बरिस के श्री सदानंद अंगुचिया जिनकर अतुन के नाम से बेदमी जैसे जानते जाके मृत्यु कुल बाटे इनकर अर्थी लंदी के इनकर पत्नी श्रीमती बीना अंगुचिया के घरे रोजिल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बीगा के शमशान भूमि ले जावल जाए इकर बखत के बारे में बाद में सूचित करा जाए। Cremation on Monday afterwards. शोक में डूबल इस सब परिवार के संगे हमनी के दिली हमदर्दी बाटी।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
2: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह की 8:19 हो रही है, जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं सभी का हम स्वागत करते हैं। जी हाँ, ये है आप ही लोगों का मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस 819 kHz पर, और आप हमें टिकटॉक पेज पर भी देख सकते हैं ऑन द टिकटॉक पेज ऑफ MBC रेडियो मॉरिशस। कहिए दोस्तों, क्या हाल है? हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है और आपका साथ दे रहे हैं, एंड होप यू आर डूइंग वेल। जी हाँ, हमारा रब का साथ है और अभी से लेके दिन के 9 बजे तक हम आपका साथ देंगे, और आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत प्यार के साथ हम आए हैं और सुबह का नजराना पार्ट टू, जी हाँ, अभी से लेके दिन के 9 बजे तक। और बेशक किसी को हाय हेलो कहना चाहते हैं सो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 402-808-5905 पर। और बेशक बहुत सारी फिल्मों के गीत हैं हमारे पास, मीत मेरी मन के, अनमोल, आगाज, चलती का नाम गारी, फिर एक राधा भजन, राहुल 1 & 2 एल्बम, तीसरी मंजिल और लेजेंड्स ऑफ आरडी बर्मन। ये पहला गाना, जी हाँ, आज बहुत से लोगों का जन्मदिन है, सो आज जन्मदिन है रूही जोशिका मंजू। हेलो, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर चाचू रियांश मंडू,

जो है ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं रूही जुष्का मंजू को, हैप्पी बर्थडे बेटा। फिर दादी रेखा मंजू का जन्मदिन है, ढेर सारा प्यार। सो रूही जुष्का मंजू और रेखा मंजू को हैप्पी बर्थडे कहते हैं, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद रवि, रवीश, रितेश और सब मंजू परिवार की ओर से। और रविश मंजू इज़ ए बिग फैन ऑफ रेडियो मॉरिशस, सो अगला गीत आपके नाम भी। So very happy birthday to sweet Ruhi Jushka Mandu and to Dadi Rekha Mandu. आपको हमारी ओर से ढेर सारा प्यार, आप दोनों की लंबी आयु हो, आपके जीवन में प्यार ही प्यार हो, बाहर ही बाहर हो। ठीक है, सुनते ही गाना मीत मेरे मन के। और आप गीत मांगना चाहते हैं तो फ़ोन कीजिए 4028085 और बेशक हमारे टिकटॉक पेज पर भी आप हमें SMS कर सकते हैं। तो टिकटॉक पर आप हमें देख रहे हैं, रेडियो मोशन पर सुन रहे हैं, चलिए अच्छी बात है।

सुबह का नजराना। जी हाँ, रेडियो मॉरिशस की लहरों पे आज 7 किलोहर्ट्ज पर। हम जानते हैं कि शनिवार का दिन है, सो बहुत से लोग देर से जागते हैं। वेल, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म कॉफ़ी हो जाए और कुछ गर्मा गर्म पकौड़े, तो क्या बात है। यस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मॉरिशस। सभी लोगों को हमारा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है। और अगला गाना है अकेले तुम अकेले हम। यस, बहुत ही प्यार सा गाना, देविका के नाम। हेलो देविका, प्रतिमा दुखी जी, गीत आपके नाम भी जाएगा। एंड रेनु दिमिया मल्होत्रा, विनय तेज, सनातन लवना, एंजल एंजल, स्वीटी, प्रतिमा दुखित, अनीता, मीला, अंसिना, नवीन भट्टराय भट्टराय, दविंदर सिंह, जकोरी सूरज, स्टाबूम, रघु, शाकलिन, अर्जुना सादा, सिमला बालचन और जय गोकुल, माला जोयसूरी, शिक्षा, यह गीत जाएगा इनेस, तेज सनातन, यह गीत आपके परिवार का, आपके परिवार, आपका, आपके पापा परमेश के लिए। इंदिरा जी, हाय रोजे, वेरी गुड मॉर्निंग। आजगी आजगी कंदन, यस, दिस गाना फॉर यू। माला जोयसूरी और तेज साहब, शिमला भी जाधर हमारा साथ दे रही है। रुपेश बुधन, गवीश गमंदी, वैसों बैल, देवन नदीवाला, हाय देवन नदीवाला वैनकूवर कनाडा से, आना, केवीश, अविश, हेमा दालू, एतान, शिमला बिजाधर, यह गीत आपके नाम भी जाएगा। एंजल फ्रिडेल, गैब्रियल लामा और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं टिकटॉक पेज पर और रेडियो मॉरिशस पर। सो चलिए हम सुनवाते हैं आपको अगला गाना।

और यही गाना खासकर हम चला रहे हैं डॉक्टर राकेश रामचरण के लिए, उनकी पत्नी आशा, बेटा रिवेश रितेश, और रिवेश जो मलेशिया में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी ढेर सारा प्यार। अकेले हम अकेले तुम का गाना आपके नाम।

वाह क्या गाना था, अकेले हम अकेले तुम, और दुनिया में इंसान अकेला ही आता है और अकेला चला जाता है। कौन किसका साथ देता है यहाँ पर, कुछ पल के लिए कुछ लोग साथ देते हैं और अंत में अकेले ही इस सफ़र को तय करना है और चली जाना है। और बेशक सुबह के 8:35 हो रहे हैं, हमारा प्रसारण चल रहा है AM2 रेडियो मॉरिशस की लहरों पे और हमारे रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर। सो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, थैंक यू जी। अगला गाना है देव को पत्थर, फिल्म का नाम आगाज़, ये गाना हम चलाएंगे।

0: फी के नाम, हेलो फी, नेपाली जी, ये गीत आपके नाम भी कविता अमृत खात्री, या गीत आपके नाम भी, ये गाना जाएगा वीरानंद दीनदयाल आपके बेस्ट फ्रेंड साइलेंट की ओर से, ढेर सारा प्यार वीरानंद दीनदयाल को। यह गीत, यही गीत जाएगा परी के लिए, फिर उसकी महारानी माता रीता, मौसी रेणुका और साइलेंट के और एक दोस्त है रिहाना हसन अली, फिनिक्स से हमारे साथ जुड़ी हुई है। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं इस समय, आपके नाम भी अगला गीत हम करेंगे। और अभी कुछ SMS की ओर बढ़ते हैं। आशा जानू, वेरी गुड मॉर्निंग, यस, आज आशा जानू का बर्थडे है, सो ढेर सारा प्यार, हैप्पी बर्थडे आशा जानू, ढेर सारा प्यार हमारी ओर से आपकी मामा कुमारी, दीदी आरती, नेफ्यू शुभम, जीजू ऋषभ राज, सो ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है आशा जानू, जहाँ भी रहें खुश रहें, सलामत रहे, आबाद रहे, हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और यही गाना हम चलाएंगे मॉडल बे के अनीता लाल जी के नाम। हाय अनीता जी, हाउ आर यू, सब लाल जी परिवार, इचू परिवार के नाम। और अभी एक दो से लाइन पे उनसे मिलेंगे। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, शुभ नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: राधे राधे, हरे कृष्णा। आज राधाष्टमी है, सो राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामना आपको भी,
1: आपको भी,
0: बोलिए,
1: सारे लोग के लिए शुभकामना।
0: हाँ
1: राधा की।
0: और आज आप मंदिर जाएंगे पूजा पाठ में?
1: हाँ आज शायद शाम को।
0: हाँ, और अगला गीत किसके लिए?
1: कल भी एक जगह में गणपति का
0: विसर्जन
1: हो रही थी, तो हम लोग गए थे वहाँ पर।
0: हाँ, और अगला गीत किसके लिए मांग रही है?
1: वही मेरे दो बेस्ट फ्रेंड है ना, छोटा सा लवर कुश की,
0: लवर कुश, हाँ बहुत ही प्यारा नाम है।
1: मामा दिव्या का जन्मदिन थी, 10 तारीख को चला गया, लेकिन नहीं याद हुआ, समय नहीं।
0: कोई बात नहीं, देर से ही सही, हम दुआ कर सकते हैं।
1: 25 प्रवेश है।
0: हाँ,
1: देवनारायण परिवार और विशेषर परिवार बधाई दे रही है।
0: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। और एक दो से लाइन प्रिंस मिलेंगे। हेलो हेलो
2: हेलो,
0: नमस्ते
2: नमस्ते प्रताप जी,
0: आप कौन हैं जी?
2: श्रीमती जी
0: सुयाक से,
2: सुयाक से।
0: कैसी हैं आप, ठीक हैं?
2: सब ठीक है, सब ठीक है।
0: अच्छा बोलिए।
2: तो एक गीत डाल देना, कल बेटा के जन्मदिन है।
0: हाँ,
2: काल का जन्मदिन बा। हाँ, तीन कोड़ी बरिस हुआ था बेटा के।
0: चलो बहुत बहुत अच्छी बात है।
2: दुगो भाई की तरफ से राकेश शक्ति, दुगो भौजी की तरफ से पूनम और आरती अंजनी, दुगो बहन पूनम और रेशमा की तरफ से, और हम उकर्मा है आशीर्वाद देवत है, उकर आयु लंबा जाए और उकर स्वास्थ्य निमन रही, और सब चंद्रमुनि परिवार की तरफ से, और सब महेश परिवार, सब ईश्वरी परिवार की तरफ से ओके बधाई देते हैं, सर आशीर्वाद देवत हैं, सर ओकर स्वस्थ अच्छा रही, ओकर लंबा आयु ओके भगवान दे।
0: हमारी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार है। ट्राई टू बी शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आपका नाम?
3: मैं कमला हूँ, मुंतबा से।
0: हाँ कमला जी बोलिए।
3: कमला रचा नायक।
0: हाँ कैसी हैं आप, ठीक हैं?
3: ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक है। और अगला गीत किसके लिए?
3: मैं एक गीत मांगना चाहती हूँ मेरे दो बच्चे के लिए।
0: हाँ,
3: आदेश और विदेश।
0: हाँ,
3: एक जोड़ी से गीत डाल देना।
0: अगला गीत है दिल को पत्थर, बहुत ही प्यारा सा गाना, फिल्म का नाम है आगाज। ओके ओके, बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। ट्राई टू बी शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। हेलो
4: हेलो प्रताप जी।
0: हाँ जी, नमस्ते जी।
4: नमस्ते, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप कौन हैं?
4: मैं कविता हूँ, कविता हिरुआ बोल रही हूँ।
0: आप आई बाहर आई। और अगला गीत किसके लिए? किसके लिए?
4: जब किसी को लाइन मिल जाए तो मुझे आपसे एक शिकायत है।
0: क्या हुआ?
4: पूरा खानदान के नाम बोलते जा रहे हैं।
0: इसी मैंने कहा,
4: यहाँ पर मेरे 50 रुपया चला गया।
0: इसी मैंने कहा ट्राई टू बी शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ बोलिए।
4: अच्छा, कल मेरे दामाद के जन्मदिन थे।
0: क्या नाम है?
4: लाइन नहीं मिला इसलिए।

0: याद मांग रही
1: हूँ। हाँ, क्या नाम है दामाद?
0: नाम है बेन।
1: बेन, ओके।
0: बेन, उसका पत्नी है प्रतिमा।
1: हाँ।
0: दो बेटे है आरव।
1: हाँ।
0: अलक्ष।
1: हाँ।
0: सचिता कविता के तरफ से और सब हिरुआ परिवार के लिए।
1: ओके, अगला गीत हम चलाएंगे आप सभी के नाम, ठीक है?
0: अच्छा, बहुत धन्यवाद,
1: बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। और भी एक तरफ है तो व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, दूसरी ओर हमारे टिकटॉक पेज पर बहुत से लोग हैं। कविता, अमृता खात्री, अनुषा, श्यामा, श्याम, रंजना, खुशेल, माधवी, अनुष्का भिकारी, ममता, बीना पादू या गीत आपके नाम, करुणा राम, वेस्ले जान, बीना पादू की ओर से अगला गाना जाएगा। सब आबाद परिवार जो रोजबेल रहते हैं, प्रेमिला जी भी हमें फॉलो कर रही है टिकटॉक पेज पर, थैंक यू सो मच। रूपा जी कैसी हैं आप? बहुत प्यार से हमें देख रही है टिकटॉक पेज पर और रेडियो पर भी सुन रही है, क्या बात है। चलिए एक साथ सुनते हैं अगला गाना, बहुत ही प्यार से गीत, कुमार सानू आका याग्निक की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है आगाज, संजय बिहारी का गीत आपके नाम, आपकी पत्नी सुरेखा, बेटा कुशल, बहू, बेटी रिंकू, दामाद और सब बिहारी परिवार के नाम। विकास रामलेखा, वेरी गुड मॉर्निंग, होप दिस मॉर्निंग इज आज ब्यूटीफुल आज दिस ब्यूटीफुल वेदर। मौसम तो बड़ा प्यारा है आज, विकास जी इस मौसम का फ़ायदा उठाइए, नाचिए गाइए झूमिए हमारे साथ। बहुत ही प्यारा सा गाना लहराता हुआ आ रहा है फ्रॉम द मूवी आगाज, हियर वी गो। जैसे मेरे लोग कोशिश कर रहे हैं आपको लाइन नहीं मिल रही है, ये गीत आपके नाम भी।

क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत सुनकर मूड बन ही जाता है है कि नहीं। सुबह 11:50 हो रही है और हम जानते हैं कि आप लोग हमें सुन रहे हैं बहुत प्यार के साथ। अगला गाना दिल की लगी कहीं जाने ना, सजना रे सजना रे सजना, फिल्म का नाम है अनमोल और बहुत सारे लोग हमें सुन रही है। सो उमिरा जोधा यह गीत आपके नाम हम चलाएंगे बहुत बहुत प्यार के साथ। विनोदा बेन कथासामी, अब्दुल्ला भाई, चांदनी, रितु जगलाल, ललिता, फिर यह गीत जो है हम चलाएंगे पूर्वी के नाम फरहाशा, यस, फिर यह गीत जाएगा स्त्रागा, आसमा, साधना आलगू, वेरी गुड मॉर्निंग, चिमुंडी, प्रीति, त्रिशा, अमला, शंभू, आश्वानी, रुकसाना, जी हाँ, शुरी के शौ भी हमारा साथ दे रहे, दाना, योगिनी दम्बन, पूनम क्रेश, सैमसन पादियाची, तमाम, कुणाल हिरीलाल, कुणाल भाई कैसे हैं आप? सबको बता दें कि एक लाइव

पूरी कंसर्ट होने वाला है 26 सितंबर को। जी हाँ, सो ज़रूर इसमें भाग लीजिएगा। बहुत सारे भोजपुरी आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे उस दिन। सो कुणाल हीरा, ये गीत आपके नाम, आपकी पूरी टीम, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और पूरे परिवार के लिए। और यही गाना जाएगा रुखसाना के नाम, प्रिंसेस मोहनी आदरिया के नाम भी जाएगा यह गाना। और इस समय हरीश बोबासा से हमें सुन रहे हैं बहुत प्यार के साथ। हाय हाय हरीश। यस, और पोलॉजी से छोटी है भाई, अबू वाकवा से है, फातमा न्यूग्रोव से, और टीना दीना भी हमारा साथ दे रही है। और जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं, शायद आपको लाइन नहीं मिल रही है, सो हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक ही नंबर है और एक ही नंबर पर फ़ोन करना पड़ता है। सो आई डू अंडरस्टैंड कि होता है कि एक ही नंबर पर और फ़ोन कर रहे हैं, सो कभी कभी लाइन नहीं मिलती है, ठीक है। सो ज़रूर आपको बता दें कि जलसा की रात बा एक फर्स्ट ग्रांड भोजपुरी लाइव कंसर्ट, ये होगा सैटरडे 26 सितंबर को रात के 7 बजे ब्लिस बैंक्वेट हॉल ऑसनाल में। और प्री सेल टिकट 500 रुपीज़, अड्डो है 700 रुपीज़। तो ज़रूर इस भोजपुरी कंसर्ट को देखने आइएगा ज़रूर। कुणाल हीरा इज़ मेन पर्सन एंड उसके साथ बहुत सारे लोग भी परफॉर्म करेंगे। सो चलिए और अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। दिल की लगी कहीं जाने ना, सजना रे सजना सजना। जी हाँ, सदना गुजी उनके पति आपने मैसेज अच्छी तरह से नहीं भेजा है, कृपया एक बार फिर मैसेज भेज दीजिए। सदना गु ऑन टिकटॉक, श्यामा जी हेलो, फिर श्यामा शमीमा मीमा, यह गीत आपके नाम भी जाएगा। यास्मीन भी हमारा साथ दे रही है, इब्राहिम साहब है पोर्टवी से, और रिहाना हसनारी, स्वीट एंड लवली रिहाना, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग अस ऑन टिकटॉक लाइव। विमला रघुबर, मिसेस बंधन, मिसेस जमन, मिसेस ओकल और मिसेस पद्मिनी, आप भी हमारा साथ दे रही है। रामास्वामी मैरवेल, ये गीत आपके नाम भी, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के सभी स्टूडेंट्स, प्रोफेसर लेक्चरर के नाम, especially BA French, MA French और PhD French में enrolled students, और वहाँ के सभी lecturer जो हमें सुन रहे हैं, आपके नाम भी है प्यारा सा गाना। और यही गीत हम चलाएंगे MGI College जो मुका में स्थित है, वहाँ के सभी अध्यापक, नॉन टीचिंग स्टाफ, रेक्टर, सभी स्टूडेंट्स दोस्तों के नाम, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स अभी बहुत जल्द ग्रेड 9, ग्रेड 11 और ग्रेड 13 में भाग लेंगे, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। और ये गीत आपके नाम।

गाते गुनगुनाते लहराते लहराते समय कितना जल्द बीत गया पता ही नहीं चला. यस दैट वाज द लास्ट सॉन्ग ऑफ द प्रोग्राम सुबह का नजाना. ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है. 9 बजे होगा समाचार, उसके बाद पीक टाइम मैगजीन. सुबह के 6 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया. थैंक यू जी हमें सुनने के लिए और हमें टिकटॉक पर देखने के लिए. थैंक यू फॉर SMS एज वेल एंड योर फोन कॉल्स. हमारी आपकी मुलाकात होगी कल संडे की शाम को 3 से 4 बजे रेडियो मनोरंजन पर. प्रोग्राम होगा ऐसा भी होता है. सो कल तक हमें दीजिए इजाजत. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, एंजॉय लाइफ, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. और जी प्रताप सिंह सीतालू की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार. शुभ दिन, बॉन वीकेंड, हैप्पी सैटरडे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, नमस्ते.

0: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं और समय हुआ है संक्षिप्त समाचारों का।

0: संक्षिप्त समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं आशिता रघु। आशिता जी नमस्कार।
1: नमस्कार किरण, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। केवल नगर शिवसागर राम गुलाम जी के जन्मस्थान पर कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम समेत कई गणमान्य लोग एकत्र हुए और राष्ट्रपिता की 126वीं जयंती मनाई गई। शिवसागर राम गुलाम मेमोरियल पार्क में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान देश के इतिहास में उनके योगदान को याद किया गया, खासकर मॉरिशस की स्वतंत्रता हासिल करने में उनकी भूमिका और उन महत्वपूर्ण सुधारों के लिए जिन्होंने देश को आकार देने में अहम योगदान दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शिवसागर राम गुलाम की स्मृति को नमन किया। उन्होंने उन्हें मॉरिशस की धरती से जन्म लेने वाला सबसे महान जन नेता बताया और कहा कि राष्ट्रीय एकता आज भी देश की प्रगति की प्रमुख कुंजियों में से एक है और मॉरिशस की रम ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। ओम दो मोरिस को अब आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिक इंडिकेशन का दर्जा मिल गया है। इस प्रमाणन से मॉरिशस में उत्पादित रम की उत्पत्ति, गुणवत्ता और उत्पादन से जुड़ी पारंपरिक कौशल की सुरक्षा होगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मॉरिशस की रम की पहचान को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रम की ओम दो मोरिस का लेबल हासिल करने के लिए रम का उत्पादन मॉरिशस में ही होना अनिवार्य होगा और इस व्यवस्था के तहत 7 डिस्टिलरी शामिल हैं। लाबूदो ने सेंट ओबेर, ओजानाम क्राफ्ट डिस्टिलरी, मेजिन, शामारेल, ओमनिकेन और ग्रेज। करीब 11 महीने तक बंद रहने के बाद प्लेनवेयर स्थित शिवसागर राम गुलाम मेमोरियल कल्चर फॉर सेंट आज शनिवार से फिर जनता के लिए खुल रहा है। यह पुनः उद्घाटन शिवसागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के अगले दिन हो रहा है। कल उनकी जयंती के अवसर पर एक स्मरण समारोह भी आयोजित किया गया था। सेंटर में शिवसागर राम गुलाम के जीवन और योगदान को दर्शाने वाली प्रदर्शनी को नए सिरे से तैयार किया गया है। इसमें आर्काइव से प्राप्त नई सामग्री शामिल की गई है जिसमें तस्वीरें, अखबारों की कटिंग्स, निजी सामान और शिवसागर राम गुलाम के जीवन तथा उनके सफर पर आधारित पुस्तकें भी शामिल हैं। म्यूजियम जनता के लिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और शनिवार को सुबह 9 से दिन के 12 बजे तक खुला रहेगा। और राधा, प्रेम, भक्ति और समर्पण का वह नाम जो श्री कृष्ण के बिना अधूरा है और श्री कृष्ण जिनके बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। राधा अष्टमी के पावन अवसर पर आज देश भर में भक्त राजधानी के राधा रानी के चरणों में श्रद्धा और प्रेम अर्पित कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। ये पर्व केवल राधा रानी के जन्मोत्सव का अवसर नहीं बल्कि प्रेम की उस पवित्र भावना का उत्सव है जिसमें भक्ति ही सबसे बड़ा समर्पण बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ती हैं। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक मस्जिद के पास हुए कार बम धमाके में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी के अनुसार मृतकों में 15 पुलिसकर्मी और 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में धमाके में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। और चलते चलते हम आपको याद दिला देते हैं कि 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा प्रोग्राम में आज जिस विषय पर चर्चा की जाएगी वह है मॉरिशस में बैठकाओं का स्थान और किरण जानकी के मेहमान होंगे श्री निरंजन बीगन जी जो कि शिक्षा मंत्रालय में कार्यवाहक निदेशक हैं और सेकेंडरी स्कूल और एंसेस्ट्रल लैंग्वेजेस के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो इसके साथ ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।

0: नमस्ते। आज की चर्चा कार्यक्रम में हम किरण आप सबको एक स्वागत करत है। आज के चर्चा में जो विषय पर आज हमने बात करब जा वो हम मॉरिशस में हिंदी के साथ साथ जो हिंदी के अन्य सहपाठी भाषा बा ओकर पर हमने के देश में कैसे पढ़ाई होवेला। मुख्य रूप से अभी हिंदी दिवस मनाई लीजा तो देखब जा कि मॉरिशस में बैठका जो उनकी बहुत ही अनौपचारिक तौर पर इस देश में शुरू हो रहा हमने के पूर्वज के ज़माना से आज वो कैसे एगो औपचारिक रूप ले ले ले बा एगो ऑफिशियल दर्जा हासिल कर ले ले बा। और इस विषय पर हमने संगे बात करे खातिर उपस्थित हवन स्टूडियो में श्री निरंजन बिगन जी। श्री निरंजन जी नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: आप शिक्षा मंत्रालय में कार्यवाहक निदेशक हवा और सेकेंडरी और पूर्वीय भाषा के भी जिम्मेदार अधिकारी हवा। तो आज हमने भोजपुरी में ये विषय पर बात करब जा जब मैं सब कोई समझियन जा भोजपुरी एगो ऐसा भाषा है जो जस्ती सब कोई के जोड़ेला।

0: एगो निकटतम भाषा है तो हमने के आज थोड़ा ई बैठका जोन बा मॉरिशस में एकर जोन दर्जा आज शिक्षा मंत्रालय संभारता कैसे एके एगो ऑफिशियल रूप मिलल बा और आप जे ई सब बैठका और पूर्वी भाषा के जोन अधिकारी हवा जोन सांझ सांझ के चलेला थोड़ा ई स्कूल ई कक्षा के बारे में हमने के बोला और कैसे कौन तरह से एके आधिकारिक स्तर देवल गल बा।
1: अच्छा नमस्ते। सबसे पहले जब हमने बैठका के चर्चा कर जा और हमने शिक्षा मंत्रालय के दृष्टि से जब हमने देखा जा तो वहाँ पर खाली बैठका नहीं बोल जला इवनिंग स्कूल ऑफिशियली मतलब औपचारिक तौर पर इवनिंग स्कूल बोली ला जा जिन में बैठका भी शामिल रहला और जब हम बैठका बोला था तो कर में हिंदी भोजपुरी और ओकर साथ साथ में हमने के पुरखन लोग के जन जितना भाषा रहल तमिल तेलुगु मराठी उर्दू मॉडर्न चाइनीज जमनी मंदारिन मोड़ला सा उस सब के समेट के तब इवनिंग स्कूल बोली जा जा कारण कि हमनी जब हिंदी के बात कर जा और भोजपुरी के बात कर जा तो उकर प्रभाव काफ़ी डबल है काफ़ी गहरा बा हमनी के इतिहास में हमनी के लोगन के बीच जो हिंदी और भोजपुरी बतियाए लंजा तो ये जाने खातिर चल हमनी के थोड़ा सा पीछे मुड़े के
0: जरूर है?
1: जब देखब शुरू में जब बैठका आदि के स्थापना करल गए रहल तो ओकर जो स्थिति रहल बहुत ही कठिनाई के स्थिति में से है शुरू हो रहल जब पुरनिया लोग शक्कर कोठी में तनी सुनो लोग के समय मिलत रहल तो बोलते हैं ना बटोड़ है? मतलब पुरनिया लोग भेंट मिल करके वो लोग अपन सुख दुख बतियातलन जा फिर धीरे धीरे जब वो लोग के लैका होई लगल तब लैका लोग के कैसे है जितना चीज लोग सीख के अनले हवन जा अपन साथ में धरोहर के रूप में तो कैसे अब लैका लोग के दीवन दियन जा तो है सबसे अब लैकवन लोग के कारण की जन जब वो लोग स्थिति जियतलन जा वो मतलब बहुत कठिनाई के स्थिति रहल और बहुत दुख सहलन जा और वो लोग नहीं चाहतलन जा कि जो दुर्गति वो लोग के होत रहल उस समय हवे भाग वो लोग के लैका के मिली हवे दुर्गति वो लोग के प्राप्त हुई तो ई कारण वो लोग चाहलन जा कि कौन कौन रास्ता हमनी सकब से अपनाए जैसे कि हमनी के लैका लोग अपन जड़ से नहीं हटियन जा और जो जितना चीज वो लोग सीख के आल हवन जा वो लोग उस सब के साथ लियन जा और साथ साथ में वो लोग के पढ़ाई हिंदी के माध्यम से भोजपुरी के माध्यम से और आगे चल करके दिबा आगे बढ़लन जा जड़ हवे रहल
0: जरूर।
1: तो एकर में हमनी देखब सा कि धीरे धीरे शुरू में जब बैठका ऐसे शुरू होल फिर सकबा बोले लुक छुप के हमनी के परत रहल पढ़ावे के बरजना लोग के पुरनिया लोग के और उस समय जोन आदमी लोग पढ़ावत रहलन जा वो लोग अभी जैसे हमनी है जा डिग्री होल्डर्स मांगिला जा बड़ा बड़ा योग्यता मांगिला जा उस समय वो लोग कथावाचक रहलन जा प्रचारक लोग रहलन जा जहाँ जा करके संदेश पहुँचा जा पुरोहित लोग रहलन जा गांव के जिम्मेदार व्यक्ति लोग रहलन जा वो लोग है भारवा संभालत रहलन जा और इसे धीरे धीरे हमनी देखनी जा कि बैठका एगो दूसर ओका स्वरूप बने लगल और धीरे धीरे जो सरकार है वो भी देखला कि जनता लोग के एगो डबल मांग है ना एगो बहुत गहरा चीज़ है कारण कि हमनी के जो अस्मिता है हमनी के जो पहचान है ओकरो बनावे में सरकार के एगो दायित्व है ओकर एगो जिम्मेदारी है और इस हिसाब से धीरे धीरे देखब समय के साथ साथ बैठका के गठन हो लगल ओकर नियमित रूप से ओके ओकर संचालन हो लगल। शुरू में बैठका में जब देखब जे पढ़ावत रहन जा तब बोल जला अवैतनिक मतलब बिना कोनो हाँ बिना कोनो भत्ता कोनो चीज़ नहीं खाली जाके के पढ़ावत रहन जा हमने याद बा जब हम शुरू कर ले रहनी तो 50 रुपया से शुरू कर ले रहनी 50 रुपया मिलता रहा ओकर से आगे तो होबो नहीं मिलत रहा तो एगो समय आल जब कुछ मिले रहल प्रोत्साहन के रूप में तो उस समय 50 रुपया से और धीरे धीरे देखब अब समय के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय निमन से एक व्यवस्थित करलक अब हमनी के देखबा

0: चार गो जोन है, चारों जोन में एक गो अफसर है जो कि हमने डेस्क ऑफिसर इवनिंग स्कूल बोली ला जा, और हौजा पर हमने के जितना संस्था बा जिस बैठका रही या कोनो अन्य भाषा के मद्रासा के आदि सबके, तो वो लोग जा करके वो लोग पंजीकृत होलन जा, रजिस्ट्रे होलन जा, और जितना अध्यापक है जे पढ़ावे लंजा, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, सबके लोग के योग्यता देखल जाला, और ई योग्यता के आधार पर ही वो लोग के भत्ता मिलेला न। जैसे जो डिग्री होल्डर है ओके अभी 3,000 से ज़्यादा वो लोग के जो भत्ता है एगो अलाउंस के रूप में मिले, एगो पेमा नहीं है, एगो सैलरी नहीं है, लेकिन एगो अलाउंस के रूप में वो लोग के ये मिलेला
1: हर महीना लगभग 3,000।
0: हाँ हर महीना। तो ये निर्भर है जे एक जना के ओका योग्यता माना ओका लगे एससी है तो ओकर एगो दूसर है, एचएससी के है तो एगो दूसर है, डिप्लोमा है तो दूसर है, और डिग्री होल्डर लोग के दूसर है।
1: जरूर।
0: हाँ
1: तो अभी जिसे सुनत हवा हमने संगे हवन शिक्षा मंत्रालय के कार्यवाहक निदेशक श्री निरंजन बिगन जी, और आप इवनिंग स्कूल्स जहाँ पर पूर्वी भाषा के पढ़ाई होवेला ओकर भी निदेशक, ओकर भी जिम्मेदार अधिकारी हवा, और अभी जब आप एगो भूमिका बांधत हवा कैसे बैठका शुरू होल मॉरिशस में, तो सच में मॉरिशस में बैठका के शुरुआत पढ़ाई के ध्यान में रख के नहीं हो रहा, वो आपस में मेल मिलाप रामायण के जो पाठ बा होवत रहल, जो दुख सुख बा वो बोलल जात रहल, और कितने जना बोलत हवन जा कि आगे के समय में बैठका एगो शेल्टर जैसन रहल, जब तूफान सिक्लोन आए तब बैठका में जा, कोनो परेशानी हुई तब बैठका में जा।
0: हाँ, सही, एकदम सही।
1: बैठका धरला गांव के एगो एगो रक्षक के रूप में काम करत रहल, आपके जो प्राकृतिक प्रकोप बाकोर से बचावत रहल, साथ में आपके संस्कृति
0: मॉडर्न भाषा में मेरे ख्याल से एमबीसी में भी बा जिसके बोल जाए असेंबली पॉइंट।
1: जी हाँ, असेंबली पॉइंट,
0: हमने गांव गांव का असेंबली पॉइंट।
1: हाँ, और उस संस्कृति और भाषा के बचावे पर भी बहुत काम करत रहल, और आज भी देखी राजा कि जहाँ देखबा लड़का लोग के जो डिजाइनते मतलब कि रुचि के कमी बा, जैसे दिखाला कि लड़का लोग थोड़ा संस्कृति से दूर जाता बन जा, ऐसा कुछ घटना घट गल तो सब कोई पहला बात बोले लन जा कि आज देश में जे बैठका आगे जैसा हर जगह रहत तो ये सब नहीं होवत, मतलब कि बैठका एगो ऐसा जगह रहल जहाँ पर लड़का लोग के सुसंस्कृत बनावल जात रहल, अच्छा नागरिक बनावल जात रहल, और लड़का लोग जब बैठका जात रहन जा तो उ लोग के अपन भाषा, पूर्वीय भाषा और संस्कृति के अच्छा पहचान रहत रहल, और धीरे धीरे ये बैठका कमती हुई लगल रहल, लेकिन देखा अब सरकार के ओर से, शिक्षा मंत्रालय के ओर से ये जिम्मेदारी संभाल गल बा, और अब ये गुंजाइश नहीं रही कि मॉरिशस में बैठका नहीं बा, और अभी बोलत हवा कि निशुल्क ई पाठ पढ़ावल जात रहल, गांव में जो गुरुजी या बहन जी रहत रहन जा उ लोग बिना पैसा ले ले लड़का लोग के पढ़ाई जा, सबसे बड़ा बात ई रहल कि उ लोग के गांव में एगो सम्मान के साथ देखल जात रहल कि ई गुरुजी हवन, ई बहन जी हवन, ई लोग जब कोनो लड़का के कुछ बोलियन जा तो लोग मनियन जा, तो ई आदर भाव, ई संबंध रहल आगे के समय में, और आज ई जो बैठका बा एक औपचारिक दर्जा देवल गल बा, और आज देखत है जा कि एगो फीस भी निर्धारित बा, और एकर में क्वालिफिकेशंस के भी बात चलता, आगे कोई भी सकत जाके बैठका में पढ़ावे, भले ही ओके जानकारी रहल भाषा के उतना या नहीं, लेकिन एगो कक्षा जब ओकर जिम्मेदारी लेबा तो ओकर में भाषा के साथ साथ और कुछ पढ़ावत हवा, लड़का लोग कम से कम ही नहीं होवन जा एगो जगह पर लोग कम से कम तो डिसिप्लिन सीखत हवन जा, अनुशासन, तो ई विषय पर अभी हमने के चर्चा जारी रही, हमने संगे हवन श्री निरंजन बिगन जी, हमने संगे जुड़ल रहिया, थोड़ा घड़ी में फिर मिलब जा।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। आज हमने बैठका पर बात कर रहे थे जा, मॉरिशस में बैठका के आज कौन स्थिति बा, और इस विषय पर हमने संगे बातचीत करे खातिर हवन श्री निरंजन बिगन जी, जो बहुत सुंदर भोजपुरी में हमने के समझावत हवन कि मॉरिशस में बैठका कैसे शुरू होल और कहाँ तक पहुँचल बा। अभी बोलत रही श्री बिगन जी कि मॉरिशस में बैठका जब शुरू हो रहा तो वो पढ़ाई बाद में आल, शुरू शुरू में अपन रामायण पाठ होवे, गीता के पाठ होवे, तो आज भी कैसे ये सब बैठका अपन भूमिका में निभावत हवन जा, पढ़ाई के साथ साथ संस्कृति के बढ़ावा देवे में, थोड़ा एकर पर हमनी के बतावा।
2: अच्छा, बैठका के एगो दोहरा भूमिका है
1: जी।
2: एक तो हमनी भाषा पढ़ावत हई जा हिंदी, अब ये भी जाने के चाहेला एगो समय दो तीन बरिस से हिंदी के साथ साथ हमनी अब भोजपुरी भी पढ़ावत हई जा, और वो भी औपचारिक रूप से, जितना पैसा भत्ता के रूप में एगो हिंदी अध्यापक के मिलेला हवे लेवल पर, उतना ही पैसा जिन व्यक्ति के पास भोजपुरी पढ़ावे चाहता उ भी सकी पंजीकृत हुए।
1: अच्छा।
2: एकर में एगो सुविधा शिक्षा मंत्रालय दिले बा, हमने जानत हैं जा जे कोई के बोलबा भोजपुरी पढ़ाव तो शायद बताई, शायद जब क्वालिफिकेशन देखब तब बोलियन जा नहीं भोजपुरी में नहीं सीखले हैं, लेकिन व्यवहार में बोलचाल के दृष्टि से लोग बराबर सब कुछ बोले लन जा, तो उ कारण शिक्षा मंत्रालय है बातवा जान के कुंच कर ले बा, एगो अनुमति दे ले बा जोन व्यक्ति के पास खाली हिंदी के योग्यता बा, मान ला तोर लगे एससी में हिंदी बा तो तू सकब भोजपुरी भी पढ़ावे, और जोन तोरा भत्ता मिली जोन अलावेंस मिली उ फॉर्म 5 जोन व्यक्ति के हा, जोन बाहेम बनल बा।

0: ओकर आधार पर मान जा तुहर लगे डिग्री बा हिंदी के, लेकिन ओकर आधार पर तू सब भोजपुरी भी पढ़ावे और उ अलाइन करल गल बा, मतलब कि तोरा हवे भत्ता मिली अगर योग्यतावा से और क्वालिफिकेशनवा से तू हिंदी पढ़ाई था।
1: अच्छा।
0: तो ये लोग के आकर्षित करे खातिर हमनी जैसे कि दोनों साथ चली हिंदी और भोजपुरी, ये हमनी व्यवस्था कर ले जा।
1: और ये रजिस्ट्रेशन कहाँ कैसे कोई से
0: अच्छा, करे? तनी हम समझाएला कैसे होला एक और जोन जोन प्रक्रिया जोन प्रोसीजर है। मान जो तुम्हारे एगो संस्था है, सबसे पहले तो संस्था के चला एनरजिस्ट्रे रहे के रजिस्ट्रार ऑफ एसोसिएशन या जोन जोन संस्था हो सकला तू रजिस्टर होल बा एगो एगो ब्रांच के रूप में एगो संस्था के रूप में और कई ब्रांच बा जैसे सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन आर्य सभा ना वो लोगों से अगर तू वो लोग के एगो ब्रांच हो जा तो हो जा से सकब अपन कार्यवाही शुरू करे के पंजीकरण के। तो चाहला शिक्षा मंत्रालय हमने के चार गो जोन है, जोन वन पोर्ट लुइस नॉर्थ है, जोन टू हमने लगे ईस्टर्न फ्लैग के बगल के है बोबासा है, जोन थ्री जो है वो रोजबेल साउथ के है, और जोन जोन फोर है वो प्लेन विलियम्स के है। तो मान लें कहूँ पर भी तुम्हारे गो एगो संस्था बा चलावे खोजत हो जा तब ओकर खातिर चाहेला जोन जोन में तुहर जगहवा बा जोन संस्थावा खोले चाहत हो जा हो जोन के चाहला ओकर डायरेक्टोरेट में जाए के जोन डायरेक्टोरेट में जैसे तब यहाँ बोलनी जा वहाँ पर एगो एगो अफसर बन हो जा रहेला हये कम वहाँ खड़े खातिर एगो डेस्क ऑफिसर इवनिंग स्कूल है चारों जोन में एक गो ऐसा ऑफिसिये है। तो जब हो जा जेब मांग करब तो थोड़ा जोन जोन कागजात रही जोन जोन डॉक्यूमेंट रही मंगियन जा तो ओकर अनुसार देखियन जा जगह कैसन बा और लड़का लोग के कोनो सिक्योरिटी के वो लोग के सुरक्षा के कोनो खतरा नहीं रही ना कहाँ पर पढ़ावत हो जा ना तो ये सब चाला हमने के जोन अधिकारी लोग हवन जा वो लोग जालन से है सब साइट विजिट करेलन जा चेक करेलन जा। अब साथ साथ में चाहला एगो सूची देवे के कौन कौन लड़का लोग के जो नाम है अभिभावक लोग के जो नाम है अता पता जमें नहीं लगी कि एगो फिक्टिशियस है ना नहीं तो सकेला कोई खाली नाम ऐसे ही डाल दे और जिसे कि कुछ मिले बदले में नहीं एगो बहुत ही एगो क्लोज मॉनिटोरिंग होला। काहे ये बोला था पास कि जब है मान लो नाम उम दे देबा और बोलबा अभी ये भी जाने के अच्छा है कि शुरू में एगो अध्यापक पीछे 25 गो लड़का चाहत रहे कि तब एलिजिबल।
1: अच्छा।
0: मान लो एगो लड़का पहले की बात हम बोला था मान लो 25 गो लड़का मान लो 20 गो लड़का बा तो पंजीकृत नहीं होते लन जा।
1: अच्छा।
0: तो समय के साथ साथ वो 20 गोवाल 20 गो से 15 गोवाल अभी हमने बोला था सर 2026 में अभी अगर हर 10 गो लड़का के पीछे एगो अध्यापक सकब से हमने पंजीकृत करे।
1: अच्छा।
0: माना जे एगो संस्था में 20 गो छात्र रही तो 2 गो अध्यापक सखी पंजीकृत हुए।
1: ये बहुत अच्छा बात बा कहे कि जिसे बोला था वह आगे 25 गो लड़का चाहत रहे के एगो जो टीचर या अध्यापक हवन उनकर खातिर और बहुत मुश्किल हो गल रहा एगो समय में इतना लड़का के बटोर के एगो बैठका चलावे में और ये शायद एगो कारण रहल जेकर वजह से बैठका बंद हो लगल रहल। लेकिन आज देखत है जा कि शिक्षा मंत्रालय एगो बहुत अच्छा फैसला के साथ आगे बढ़ल बा जहाँ पर एगो बैठका में जे 10 गो छात्र रही तो वहाँ पर एगो अध्यापक सखी कार्यरत रहे वो 10 गो लड़का से ही भले
0: काम चलावे से
1: काम हाँ शुरू हो जाए कमवा तब बाकी लड़का लोग सके जाए।
0: हमने के उद्देश्य है अब मान लीजिए हमने अतान करती जा कि 25 गो नहीं होल बा कब 25 गो हुई तब जो 10 गो लड़का जो इच्छा बा पढ़े के तो लोग का मौका तो नहीं मिलता।
1: हाँ।
0: ई कारण हमने शुरू करनी जा मूल जनाई 10 गो से मतलब मुट्ठी भर लड़का रही तो कम से कम ये लोग जब बैठका में आई लगियन जा पढ़ाई पढ़े लगियन जा
1: घर
0: हाँ अपन संगतिया लोग से बात उत करके तो सकियन जा और लोग के जोड़े
1: जरूर।
0: और हये दृष्टि से अमनी देखे ला जा कि अभी हाल में लगभग 2 साल हो रहे हैं शिक्षा मंत्रालय और भारतीय उच्च आयोग न दोनों के मिले जुले सहयोग से हमनी एगो अभियान चले ले हैं जा।
1: अच्छा।

0: और उ अभियान के नाम है रिवाइवल ऑफ बैटकास
1: जी।
0: तो उ में हम निकुंज करत हैं जा हम हैं और भारतीय चायोग से श्रीमती श्रुति पाठक जीवन सेकंड सेक्रेटरी हिंदी एंड कल्चर। तो उ हमने जात हैं जा एगो आउटरीच के रूप में हमने गांव गांव में जा करके माता पिता लोग के अभिभावक लोग के या फिर जो धार्मिक संस्था लोग हवन जा उन लोग के जो जो कर्ता धरता हवन जा उन लोग से भेंट करके उन लोग के समझावत हैं जा कि ई काहे एगो महत्वपूर्ण उन लोग के जिम्मेदारी बन जाला कि अपन लड़का लोग के हमनी के छाना जोड़े के अभी ऊपर पर अभी हुई बतिया हिंदी के अलावा काहे चाहला जोड़े के। तो उ अभियान में हमनी सगरो जात हैं जा और निमन बात ई बायकर में कि भारतीय उच्चायोग की ओर से हौजा पर जब हमने जाला जा तो उन लोग के जितना पुस्तक लगभग 50 गो पुस्तक दान में देवल जला जो माता पिता लोग आवेल जा श्रुति पाठक जी को नया तरीका अपने लो जा प्रश्नोत्तर हमने के संस्कृति पर धर्म पर प्रश्न पूछे लन जा और जो माँ बाप लोग भी भाग लेके उन लोग के रामायण के गो प्रति महाभारत के गो प्रति मतलब पुस्तक आदि दे करके तो ये गो सब एगो तरीका है कि लोगों के जाना कैसे हमने सकब से आकर्षित करे
1: मतलब कि सच में एगो रिवाइवल एगो पुनर्जागरण हुआ था जहाँ पर लड़का लोग के बैठका में आने खातिर माता पिता के भी शामिल करल जाता। जब ले माता पिता एक में शामिल नहीं हुई तो लड़का लोग कैसे सके अंजा आवे उन लोग में ये रुचि चाहिए बढ़ावेगे कहे कि हमें देखा थे जाके अभी एगो समय रहा टीवी पर हर सामदी के हर बीफे के जो हिंदी फिल्म रहा वो चले वो हिंदी फिल्म देख देख के हमने हिंदी सीख ली जा हिंदी के गाना सुन सुन के हमने हिंदी सीख ली जा साथ में स्कूल में भी। लेकिन अभी लड़का लोग तो टेलीविजन नहीं देखे लन जा वो लोग के एगो अलग दुनिया बा यूट्यूब पर जस्ती रहे लन जा और ऐसा में घर पर भी जब हिंदी भोजपुरी नहीं बुलाता तो लड़का लोग के रुचि कमती हो जाता और एकर में बहुत ज़रूरी बा कि माँ बाप के चाहे लड़का लोग में ये रुचि पैदा करे के। हम सबसे आगे तो ई जन जाने खोजती तोहर से कि आज हमने के देश में जब बैठका एगो समय में कमती होए लगल रहा और अभी शिक्षा मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ बोलत हुआ भारतीय उच्चायोग भी हाँ, अब सहयोग भी होता तो बैठका के जब जन स्थिति बा बैठका के जन संख्या बा ई देश में वो कहाँ तक बा अभी।
0: अच्छा जब से हमने फिर से अभियान चलेले हैं जा और आज भी जैसे हम बोला था अभी जब बतिया था मान लो सोमवार के कोई चाहे जैसे कार्यक्रम के मान लो प्रसाद स्वरूप लेके ना कोनो जोन में जी जा तो बराबर और जे कोनो बात के लोग के आवरी मतलब सूचना चाहिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सकें जा शिक्षा मंत्रालय या हम के कॉन्टैक्ट करें हमने बराबर सहायता करब जा। अभी हमनी के बैठका भी जो जो आंकड़ा बा जो हमनी के संख्या बा 326 को बैठका बा जब हिंदी जहाँ हिंदी और ही भोजपुरी के पढ़ाई होला।
1: अच्छा।
0: कोनो ऐसा ना भी संस्था ने बा कि खाली भोजपुरी जहाँ पर हिंदी के पढ़ाई होला
1: हौजे
0: पर संगे हाँ संगे संगे जैसे संस्कृत के भी पढ़ाई होला तो और 700 से अधिक 750 के लगभग हमने के गुरुजन लोग हो नहीं हमने के ना वो तो हजारन हवन जा 700 से अधिक हमने के अध्यापक अध्यापिका भाई बहन लोग हवन जा जोन वो लोग हिंदी और भोजपुरी के बढ़ावा देवे में वो लोग लगल हवन जा।
1: अच्छा।
0: हम नहीं बोला पर लोग काम करते हवन जा ये लोग एगो हमारे लिए एगो सेवा है वो लोग सेवारत हवन जा कारण की हैला जैसे तभी हम बोलनी जा केवल भाषा नहीं है ना आजकल हम ये देखते हैं जा जब मीडिया देखब सुनब तो चारों ओर खास करके हमने के जवान जवान लड़का लोग ना बिना कोनो बहाना बिना देखब कैसे बहक जाते हैं जा गलत रास्ता अपना ले होते हैं जा ना
1: दिशा निर्देश के कमी बा
0: हाँ तो ये चाहला लोग के एगो एगो मजबूत जड़ ना अक्सर हम भाई बोलल बोली ला जा एगो डाल या एगो फूल ना खूबे जोली लगेला माने गुलदस्ता में रखबा लेकिन अगले दिन जब देखब तो मुरझागल बा लेकिन हवे डालीवा अगर वो अपन पेड़ से जुड़ल रहत तो जब ले को जड़ रहत जड़वा के सींचत तो वो हरा भरा रहत तो ई खातिर चाहेला हमनी के लैका के हमनी के जो धर्म है संस्कृति है इस सब से जोड़े के और खास करके जितना हमनी के जो मूल्य मानव मूल्य
1: वैल्यू।

0: जोन वैल्यूज है, जोन मानव मूल्य है, जोन एथिक्स है, जोन शिष्ट भाव है, एथिक्स में जो शिष्टाचार है न, रहन सहन कैसे समाज में उठे बैठे चाहेला, तो सब के तैयारी कहाँ पर होला, नहीं सब हाँ बैठका में एगो नहीं सब एगो कूल ऐसे करे हमने बताब सा कैसे चाहला बतियाए के कैसे हाँ। तब उ तक कोई नहीं रही, तो ई एगो बहाना है हिंदी के माध्यम से बिना प्रेस्क्रिप्टिव जैसे बोल जाए ना वो लोगों ने जानियन सा कि कब कमुआ हो गल बा
1: हाँ।
0: ना जैसे पीटी पीटी लड़का लोग जब पूजा पाठ में दिखबा तो जब एगो बड़ा जाके पैर छुआता प्रणाम करता तो वो लोग अभी समझत नहीं वनसा लेकिन वो लोगों जाके करते न, तो हई भावनावा वो लोग में आने चाहला। अभी हाल के बात है एगो चीज बता देवा था
1: हाँ।
0: एगो हई हमने के जो युवक लोग बा धर्म संस्कृति से तो एगो एगो सीन बताओ लंजा भारतीय एगो चीज छोटा क्लिप में हम देखा था तो एगो सगाई के अवसर रहर छोकड़ा के बोलन जा छोकड़ी के मुंह में पंडित बोलन छोकड़ी के मुंह में मिठाई मिठाई डाल के नाम बोले तो छोकड़ी के मुंह में मिठाई डाल के बोता सोन पापड़ी
1: तो वो मिठाई के नाम बता हाँ,
0: बता नहीं लड़की का ना, लड़की के नाम बोला तब बीरबल थोड़ा सा हल्दी लगा दा टीका के रूप में तो पंडित के हल्दी लगा तो पंडित बोलता नहीं पंडित के नहीं चला दुल्हन के और छोकरिया के चला हल्दी लगा के तब बोला था पैर छुआ तब केकर पैर छुआ था जेकर संग कर सगाई हो जाता
1: मतलब यहाँ पर संस्कृति के कमी बा
0: हवे हाई बतावत मजा कि जे हमनी के लड़का ऐसा ऐसा माहौल में ऐसा ऐसा वातावरण में पलियन सा बढ़ियन सा तब लोग जनियन सा ये सब कौन सी बोल जला कैसे करे चाहला कारण कि आगे चल करके वो लोग तो करता धरता हो जा आज के जो युवक है तो वो लोग के अभी जो हमने तैयार नहीं करब जा तो शायद थोड़ा सा गड़बड़ आगे रही इस कारण ये हमने के कर्तव्य बनेला हमने के बाप दादा लोग ना वो लोग अपन भाग कर दिले वंजा अक्सर हम बोलीला ना हमनियों के लाहो जाके मुंह दिखाए चाहला
1: हाँ।
0: नहीं तो वो लोग बोले तू कौन से कर ले हम इतना छोड़ के गल है
1: धरोहर में जन तोहरा मिलल बा तोहर उचित बनेला हाँ। कि तू अपन लेका लो खते छोड़ के हाँ। जाइबा
0: कैसे माँ बाप लोग के जमीन पर हमनी
1: हाँ।
0: हक बोले था ये हमार माँ बाप के है तो वो लोगों के चाहला बोले कि ये हमार माँ बाप के है सीख ले है तब जा करके वो लोग हर दृष्टि से जमीन जायदाद से भी धनी रहियन जा संस्कार से भी धनी रहियन जा
1: जरूर जैसे सुनत हवा जैसे देखत हवा आज के हमने के जो कार्यक्रम चलता उ बैठका में कौन स्थिति बा आज मॉरिशस में ई विषय पर बातचीत हुआ था ई विषय के थोड़ा घड़ी आगे बढ़ाव जा फिलहाल ले जा एगो छोटा सा विराम।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। आज की चर्चा में हमनी बैठका के जिन स्थिति बा मॉरिशस में ओकर पर बतिया थे जा, हमनी संगे हवन शिक्षा मंत्रालय के कार्यवाहक निदेशक श्री निरंजन बिगन जी। श्री बिगन जी, हमनी के ई बतावा कि अभी जो बात कर रहे थे जा, कैसे हमनी के देश में पूर्वी भाषा हिंदी, भोजपुरी और साथ में जो हिंदी संस्कृति बा, इस सब के बढ़ावा देवल जता बैठका में। और अभी आप उदाहरण भी देवत हुआ कि कैसे विसंस्कृतिकरण के प्रभाव हमनी के समाज पर पड़े लगल बा। तो अब हमनी के ई बोला कि ई जो औपचारिक कक्षा आप लोग चलावत हुआ जा, एकर दायरा खाली हमनी के धर्म से ही जुड़ल बा, ये तक सीमित बा? जे हिंदी सीखता और हिंदी के जन संस्कृति बा, ये सब जब सीख ले बा, तो आपके सामने कौन कौन मतलब कि रास्ता सकी खुले?
2: अच्छा, ये जानल अच्छा है। जब हमनी बोलते हैं जा शिक्षा मंत्रालय अवसर देवता हिंदी भाषा, उकर मैंडेट केवल भाषा नहीं है। जब भाषा बोलते हैं तो भाषा के साथ साथ संस्कृति भी
1: न,
2: जैसे कि एंसेस्ट्रल जो हमने की जो जितना जो संस्कृति बा, वो लोगों को भी साथ साथ में बढ़ावा देवे के कारण कि हमनी जुड़ल हैं सर। जब हमनी लगे, जब बोलबा अक्सर हमनी बोला जा, हमनी लगे हर एगो संज्ञा एगो विशेषण भी है। जब बोलबा राम आ रहा है, तो राम केवल एगो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, एगो विशेषण भी है। राम के पीछे दशरथ के बेटा और दशरथ के बेटा में जितना गुण रहल, वो सब संगे आवता,
1: मर्यादा पुरुषोत्तम आवता,
2: सब चीज आवता संगे। तो वो कारण खाली एगो भाषा न रह करके ओकर में एगो चोली दामन के साथ रहेला भाषा और संस्कृति, इ तो एगो चीज है। अब हमनी के चाहला अब थोड़ा सा और आगे बढ़े के जानला, खाली हमनी जो माना जो बोल हिंदी बेल्ट है, जितना हिंदी भाषी लोग हम जा, खाली अपने में हमनी बोलब से चाहला बढ़ावा देवे के, मान ला 100 जना है सब बोलब से 100 जनाओं में चाहला बढ़ावा देवे के, तो हमनी 100 गो रह सा,
1: अगर से कमती हो सके रहे,
2: कमती हो जाए। ई कारण अब चाहला एगो दूसर तरीका अपनाए के जाना, बहुत जैसे तबियत तू बोला मीडिया के माध्यम से, फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से धई कोर के रुचि बढ़ गल बा हिंदी के प्रति, तो चाहला औसन एगो प्लेटफॉर्म औसन एगो अवसर देवे के, जैसे सकियन जा सीखे हिंदी ट्रांसलेशन के माध्यम से। हमनी के लड़का लोग जो SC HSC करत हवन जा, जो जो हमनी के संस्था हवन जा, वो लोग वहाँ पर वो लोग के लड़का लोग के चाला सकियन जा अध्यापक तब्बा
1: हाँ।
2: ना वो लोग के जो पाठ्य सामग्री है ओकर पर थोड़ा और चर्चा करे, सब कोई के जा करके प्राइवेट ट्यूशन आदि के अवसर नहीं मिलेला और शायद हिंदी में तो बहुत और कम, तो वो लोग के मौका मिली

0: बैठका के माध्यम से, बैठका के जरिए सकियां से जाके हौजा पर बैठका में जा कर के जिन काम लिकुल में होता ओकर उपरांत ओकर अलावा और ही कुछ ओलो के मिल जाए तब और ही ओलो के सुविधा रही अपन हिंदी भाषा के जो परीक्षा लिया जा अच्छा अंक कमाए के। और अगर सब चीज ऐसनी से शुरू होला, एगो लड़का कब बोलेला हम हिंदी पढ़ब, जब वो देखेला शुरू से ओकर ओकर आ मिलता, आ प्लस मिलता, वेरी गुड मिलता, एक्सेलेंट मिलता। और जब हम रखते रहनी तो ढेर को रही से रहन जा अध्यापक भी रहनी तो हिंदी के एक समय देखभाल लड़का लोग लेत लेके आते हों जा ना माँ बाप दिले वन जा कि हमारे लड़का अब हिंदी नहीं नहीं पढ़ी, जब कारण बुझबा तब बोले जा तनी फेब बा।
1: और कोई कोनो माँ बाप बोले जा कि ओकर रिजल्ट स्लिप में सगरो आ प्लस मिलता, हिंदी में जो बे से दे मिलता तो वो रिजल्ट स्लिप के खराब करेला, तो हम नहीं चाहते है जा कि ऐसा रिजल्ट आए।
0: हाँ हाँ ये सब कारण बा, तो ये कारण है ला है खामी जुनबा है खाई जुनबा है ला ओकर पूर्ति बैठका सकी करे बराबर सकी करे
1: जरूर
0: ना। तब देखबा हवे लैकवा के जो अच्छा अंक ओके मिलल बा तो हाउ लैकवा तो अब बोली नहीं हम एनसे में हिंदी करब, नहीं हम एससी में हिंदी करब, हम एचएससी में हिंदी करब। और हमने लड़का लोग के बोली ला जा समझाए ला जा कि मान ल तू हिंदी लेवत हो जा, अगर तुहर ध्येय बा एगो हिंदी अध्यापक बने के तब तो सोने में सुहागा न, लेकिन चाहला आगे पढ़ते जाए के चाहला बी ए एम ए आदि सब करे के। लेकिन हमनी के लड़का लोग के जब मान एससी की परीक्षा में लेवत हों जा हिंदी विषय, तो जरूरी नहीं है कि वो लड़का जा करके हिंदी भी ले मेन में जब एचएससी में जाए। लेकिन एक वो बात चाहना समझे के माँ बाप लोग के कि हिंदी के माध्यम से वो लोग के जो एग्रीगेट है केवल हिंदी नहीं जितना भारतीय भाषा बा ओकर माध्यम से जो लोग के जो एग्रीगेट है वो घट जाए। कारण कि बेस्ट ऑफ सिक्स गनाला मान जा एगो मान जा एडवांस में तोरा सिक्स मिलल बा, हिंदी में तोरा दो मिलल बा, तो चार गो एग्रीगेट चार गो इनिते से कमती हो जाए ना। जब कोई बोली ए है लेकवा लगे सिक्स इनिते है तो लोग नहीं जब ओकर में हिंदी बा ये नहीं पूछन सा, वो लोग देखन सा ओवरऑल ना, तो वो एनहांसमेंट खातिर ये आवश्यक है। और साथ साथ में एनहांसमेंट तो होता साथ साथ में कम से कम फॉर्म सैंक लेक एचएससी लेक हिंदी के संपर्क में आल ना, तो ई आवश्यक है। अभी हमने चर्चा कर तनी जा कि अब हिंदी के भूमिका हिंदी के चाहला ओकर द्वार तनी ज्यादा खोले के
1: बढ़ाई के
0: ताकि हमने के और लोग उनके सकबसा कर में जोड़े ना लेपोंस की तरह सूखे ना। तो ढेर कोई बात जो हिंदी पढ़े चाहत हो जा लेकिन अभी वो लोग के देवनागरी लिखे में कठिनाई होता ना, या फिर वो लोग के बोले में कठिनाई होता, तो हमने के जो संस्था बा ना मान ला एगो बोलबा एगो बिगिनर्स एगो कक्षा रखबा बिगिनर्स क्लास, तो ऐसा ऐसा लोगन के सकबा जुड़े और हवे लाइक हवे आदमियन लोग हवे व्यक्तियन बाद में देबा हिंदी पढ़िया जा। और एकर में सुंदर बात यह है जे ऐसा तरीका अपना के माँ बाप लोग के बड़ा आदमी लोग के अगर तू पकड़ लेला तब देखभाल लड़का लोग जब माँ बाप करता ऐसे तो वो लड़काओं का साथ में संगे बैठ के काम करी ऐसा ऐसा ढेर हमने के जो जो तरीका बा ना। कैसे अक्सर जब हम अध्यापक रहनी तो लड़का लोग के देवतन जा प्रोजेक्ट है, कारण कि खाली सुनबा अंग्रेज फ्रांसे मैथमेटिक में हम सब में प्रोजेक्ट मिलेला या सियांस के ना, हिंदी में एगो प्रोजेक्ट देबा घरे लड़का जाके रिसर्च करी कोलाज करी ना, तब वो में पूरा परिवार जुड़ेला
1: जरूर।
0: जब ये लोग सब जुड़ के एक मतलब एगो पोर्टफोलियो तैयार कर जाए तो पूरा परिवार देखता, तो ये एगो लड़का के तो जान तो बढ़ता लेकिन बगल में एगो आधार रहल माँ बाप लोग के है हिंदी जगत से भी जोड़े के। तो ऐसा नहीं कार्य चाहला करे के जमे कि जो लोग के इच्छा ढेर कोई के एगो छोटा संदेह रहेला हम इतना बड़ा हो गए हैं जब तक कुंच बुलंदा पिती लेका लोग संगे बैठब ना। हमार जब एगो समय रहा जब हम पढ़ावत रही और एम जी आई की ओर से एक्स्ट्रा म्यूरल इन हिंदी फॉर बिगिनर्स रहा एडल्ट कोर्स, तो तीन गोरी बारह बरिस के व्यक्ति हमार कक्षा में रहा
1: अच्छा
0: चाह रहा सर

0: है, श्वसान दूसरों के व्यक्ति आके बैठ के कक्षा जवान लोग संगे सीखा था। तो चाहेला हमने कहे जन जन बोला ना ये कॉम्प्लेक्स चला हटा के और ई कैसे से कब्जा करे, जब जो संस्थावा है जो बैठकावा है वो लोग लोगन के वो लोग के बोली नहीं आओ जा तुम्हारा सहायता करब जा। और एकर में हम मांग करती आज को अच्छा अवसर बा, हम मांग करती जितना हमने के धार्मिक संस्था के जो करता धरता लोग हवन जा मंदिर में हवन जा बैठका में हवन जा जहाँ जहाँ हवन जा वो लोग के चाहला ऐसन ऐसन संदेश देवे के कि हमनी के लैका लोग के चाहला भेजे के केवल लैका लोग नहीं वो लोगों के चाहला साथ साथ में जोड़े के।
1: जरूर
0: जब मैं हमनी के लैका लोग जब पढ़ियन से गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा तो ओम जय जी आई इस तरह से नहीं पढ़ियन सा, रोमन स्क्रिप्ट में ना पढ़ के वो लोग देवनागरी लिपि में पढ़ के तब वो लोग एगो दूसर मान रही वो लोग एगो दूसर भाव बनल रही समाज।
1: जरूर कहे कि बोलल जरा देवनागरी लिपि में जो लिखबा वही उच्चारण होवेला, हवे जब रोमन में लिखबा तो उच्चारण से की बदल जाए
0: गलत हो जाए। हाँ।
1: गलत रही। और जैसे बोला था कैसे चाहिए अब लैका लोग के फिर से रुचि जगावे के, जब माँ बाप ही शुरू कर लन जा लैका लोग के खत लिख के हिंदी के पढ़ाई रोके के, तो आज शायद चाहे ई माँ बाप ही लोग के सबसे पहला कदम उठावे के ई बैठका के ओर ई पूर्वी भाषा के ओर, ताकि वो लोग के लैका के रुचि फिर से बढ़ी। और माँ बाप के जिम्मेदारी सबसे पहला आवेला, जैसे अभी बोला था शिक्षा मंत्रालय अपन ओर से पूरा कोशिश करता
0: एकदम
1: जितना। हाँ। सहयोग के आप उम्मीद नहीं कर ले हो बा, वो सब सहयोग शिक्षा मंत्रालय के ओर से देवल जाता। और सुने पे सुहागा आज भारतीय उच्चायोग भी एकर में साथ देवता।
0: हाँ।
1: जी तो जब इतना सब कोई अपन अपन संसाधन अपन अपन जितना लोग के बुद्धिमता बा एकर में लगावत है वंजा इस संघर्ष में इस रिवाइवल में इस नवजागरण में, तो अब माँ बाप के सबसे बड़ा जिम्मेदारी बा कि आप कम से कम अपन लैका के भेजा। सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध बा, सब जितना आप लोग कितना काम करत हुआ जा बोला था हिंदी अध्यापक के आप अध्यापक ना बोल के सेवक बोला था हुआ। जब इतना सेवक लोग आपके सेवा करे खातिर तैयार हवन जा, तो काहे इस सेवा के लाभ नहीं चाहिए उठाए के, एकर में कुछ बिलाए के नहीं बा, एकर में खाली तोहरा मिलेवे के बा। तो चाहे सब माँ बाप के अपन लैका लोग के पूर्वी भाषा पूर्वी भाषा वाला कक्षा में ज़रूर भेजे के। और ये कार्यक्रम के समाप्त हुए में 3-4 मिनट रह गल बा श्री बिगन जी, हम चाहते कि आप जे कि ई अभियान में अभी आप बोला कि आप हिंदी भी पढ़े ले हवा, आप रेक्टर भी रहल हवा, मतलब कि आप खाली एगो निदेशक नहीं हवा, आप ई जोन सिस्टम बा प्रणाली बा शिक्षा के प्रणाली एके आप जनले हवा एकर में काम कर ले हवा, आज कौन संदेश देबा जे इतना बरिस से आप अलग अलग भूमिका निभेले आवत हवा इस शिक्षण के क्षेत्र में, बैठका के लेके कौन संदेश देबा आज?
0: हाँ देखा एगो चीज़ चाहला हमने के सोचे के बड़ा आदमी अभी हमने जैसे अंग्रेजी में बोले थे ना हमने अपने अपन कम्फर्ट जोन में चला लें सर।
1: हाँ
0: ना हमने के जो पुरनिया लोग रहन जा बहुत मेहनत बहुत परिश्रम त्याग से जैसे तैसे करके हिंदी के भोजपुरी के हमने के संस्कृति के बचैले आलहवन जा। ई हमने के मतलब एगो हरासत की बात हो जाए कि अब सब कुछ बा सब सुविधा बा फिर भी ई दिशा में हमने कुछ नहीं सकते हैं सर, एगो एगो कदम आगे बढ़ावे तई हम समझते हैं चाहला हमने के सब कोई के मान लगे एगो एगो महायज्ञ।
1: हाँ।
0: और सब कोई यजमान है कर में, तो सब कोई के चाहला अपन अपन सामग्री अपन अपन भूमिका निभाए के ना एक कर में देख शिक्षा जैसे तू बोला शिक्षा मंत्रालय की ओर से सब सुविधा देवत हैं जा, अध्यापक लोग सेवारत हवन जा। अब समस्या ई बा चाहला हमने के दूगो मूल तत्व चाहला जाने के, हमने के चाहला माँ बाप लोग के और लैका लोगन के ना। तो अगर हम सबसे पहले कर्जोर प्रार्थना करते हैं माँ बाप लोग से ना ये हमने के दायित्व नहीं तो हमने के मुक्ति के रास्ता नहीं खुली, कारण कि हमने पितृ ऋण से और आचार्य ऋण से हमने उऋण नहीं हो जा हई कर्जवा जब लेकर हमने नहीं चुकाब सा तो मोक्ष के कामना नहीं सब सा करी। ई कारण तो लोग डरावट नहीं है, कारण हमने के चाहेला जितना हमने के मिलल बा हमने के संतान लोग के लैका लोग के देवे के और ओकर से एक कदम आगे

0: और हमने के लड़का लोग के भी ये चाहल हम जाना था ही। अभी एआई के ज़माना बा, सब चीज़ के नयापन बा, ये सब अपन अपन जगह सही है। वन जा अंग्रेजी में गो चीज़ बोला गल बा, इट इज़ वेरी इजी टू बी एम ए, टू गेट एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी एम ए एन। तो हमने एम ए के साथ साथ हमने चाहते हैं जा कि हमने लड़का लोग एम ए एन हो जा, जिम्मेदार नागरिक हो जा, जिम्मेदार बेटा बेटी हो जा, जिम्मेदार संतान हो जा, तब जाके सब कोई के भला रही।
1: बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन बिगन जी, जैसे आज सुनला और दिखला श्री निरंजन बिगन जी बहुत सुंदर रूप से किस कितना अच्छा अच्छा उपमा देके आज समझेलन कितना ज़रूरी बा, कितना आवश्यक बा हमने के अपन लड़का लोग के ये भाषा, पूर्वी भाषा और संस्कृति सिखावे के। और आपके जिम्मेदारी बनेला कि आप अपन लड़का लोग के ये क्षेत्र में प्रोत्साहित करबा और वो लोग के भेजबा। आज के ये प्रोग्राम आप लोग ध्यान से सुन जा, एक खातिर बहुत धन्यवाद श्री बिगन जी, आपके बहुत धन्यवाद। आज शामदी के दिन अपन कीमती समय निकाल के आप स्टूडियो में आइला और ये सब अच्छा अच्छा बात
0: हिंदी और भोजपुरी के लिए कुछ भी
1: तो यही विचार के साथ हिंदी और भोजपुरी के लिए कुछ भी हमने आपसे आज्ञा चाहब जा। धन्यवाद, नमस्ते
0: नमस्ते।

श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। करीब 11 महीने तक बंद रहने के बाद प्रणवियत स्थित सचिव सागर रामगुला मेमोरियल सेंटर फॉर कल्चर आज शनिवार से फिर जनता के लिए खुल रहा है। यह पुनः उद्घाटन सचिव सागर रामगुलाम की 126वीं जयंती के अगले दिन हो रहा है। कल उनकी जयंती के अवसर पर एक स्मरण समारोह भी आयोजित किया गया था। सेंटर में सचिव सागर रामगुलाम के जीवन और योगदान को दर्शाने वाली प्रदर्शनी को नई सीरीज से तैयार किया गया। इसमें आर्काइव से प्राप्त नई सामग्री शामिल की गई है, जिसमें तस्वीरें, अखबारों की कटिंग्स, निजी सामान और सचिव सागर रामगुलाम के जीवन तथा उनके सफर पर आधारित पुस्तकें शामिल हैं। म्यूजियम जनता के लिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और शनिवार को सुबह 9 से दिन के 12 बजे तक खुला रहेगा। जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मोहम्मद आसिफ रामतुल्ला और अधिकारियों कृतिश गुरा, जोनाथन वाइथिलिंगा, राज नंदलाल और इमानुएल कोंसो को फिर गवाही के

0: लिए बुलाया गया। उनसे डीपीपी के प्रतिनिधि वकील रिकी बुकन ने सवाल किए। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि अदालत में अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान, बोबासन जेल में घटनाओं के पुनर्निर्माण के दौरान रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में हमेशा मेल नहीं खाते थे। वकील बुकन ने बॉकली पुलिस स्टेशन में जॉन मिक मॉटिंगेल की मौत के बाद दर्ज किए गए बयानों में भी असमानताओं की ओर ध्यान दिलाया। ये बयान एएसपी मोहम्मद आसिफ रामतुल्ला और चार अन्य अधिकारियों ने दिए थे। एक मौके पर इमानुएल कोस्ता ने माना कि पुलिस को अपना बयान देने से पहले उन्होंने और उनके सहयोगियों ने आपस में एक दूसरे से सलाह ली थी, हालांकि बाकी अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया था। मॉटिंगेल के परिजनों का मानना है कि हिरासत के दौरान उनके साथ मारपीट की गई थी। वहीं पोस्टमार्टम में उनकी मौत को आत्महत्या बताया गया था। उनके परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए दक्षिण अफ्रीका के एक फोरेंसिक डॉक्टर की सेवाएं भी ली थी। बीएमडब्ल्यू, मैक्लारेन, अचुरा, एस्टन मार्टिन कूपे और मिनी कूपर, जो यशीश अमृत और उनकी प्रबंधन कंपनी के हैं, अब एफसीसी द्वारा नीलाम नहीं किए जा सकेंगे। आशीष अमृत ने कल सुप्रीम कोर्ट से इंजंक्शन यानी अदालत से रोक लगाने का आदेश हासिल कर लिया। इन वाहनों को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत जब्त किया गया था। अपने वकीलों के माध्यम से आशीष अमृत ने कहा कि उन्हें प्रेस के जरिए इन वाहनों की नीलामी के बारे में पता चला। उनका कहना है कि जाँच अभी जारी है और जब्ती का आदेश नहीं होने की स्थिति में इन वाहनों की बिक्री और बिक्री से पहले उनका निरीक्षण दोनों गैर कानूनी होंगे। एफसीसी को 25 सितंबर को अदालत में ये स्पष्ट करना होगा कि इन वाहनों की बिक्री क्यों जारी रखी जानी चाहिए। गौरतलब है कि एफसीसी 21 और 22 सितंबर को दूसरी नीलामी आयोजित कर रहा है। करीब 40 वाहनों के निरीक्षण की प्रक्रिया इस रविवार को निर्धारित है। 60 वर्षीय सरस्वती मुचिया की मौत गला घोंटने से हुई है। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर द्वारा किए गए पोस्टमार्टम के बाद ये निष्कर्ष सामने आया है। थ्रियोली की रहने वाली सरस्वती मुचिया का शव कल सुबह इलाके में स्थित उनके सब्जी के खेत से बरामद किया गया। वे सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करती थीं। मामले की जाँच थोबिश क्रिमिनल पुलिस ने शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि यूरोप और फ्रांस के खिलाफ रूस की ओर से हाइब्रिड हमलों का खतरा बढ़ गया है। एलिजे पैलेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैक्रों ने बताया कि उन्होंने इस खतरे को देखते हुए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और रक्षा उद्योग से जुड़ी जगहों की सुरक्षा के लिए एक योजना तैयार करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में फ्रांस को रूस की ओर से कई हाइब्रिड हमलों का निशाना बनाया गया है और इन घटनाओं को बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Radio Mauritius.
3: 8.9 kHz पर ये है Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
3: Radio Mauritius.

अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहतशम व मुहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम रेडियो मोरशेस साहब से मुखातिब हैं और गुलहे अकीदत प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है, जिसमें हम आपका दिल की अतः गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। इस एक घंटे की नशियात में सामीन, जैसा कि मालूम है कि गुलहे अकीदत प्रोग्राम को हमने चार हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा तफसीर, दूसरा हिस्सा गोशे नूरी, तीसरा गोशे नसीहत और चौथा महफिल समा। आज सूरह यासीन की तफसीर का चौथा हिस्सा आप समाप्त कर सकेंगे और उसके बाद कसीदा गौसिया यानी बशाल खैर के चंद अशार हम आपको पेश करेंगे। हम आपको बता दें कि इस कसीदे की खासियत यह है कि हर शेर में दरूद शरीफ शामिल है और आखिर में बेशक चंद मनकबत कवालियों की सूरत में हम आपको पेश करेंगे। आइए आगाज करते हैं सूरह यासीन की तफसीर से। आज आप इसका चौथा हिस्सा समाप्त कर रहे हैं। मुफ्ती आसिफ अब्दुल्ला कादरी।

अब सूरह यासीन शरीफ के तीसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का भी बयान है, यानी अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत का जिक्र है, और ये बताया जा रहा है

जिस्म मट्टी में मिल जाए इसके बाद वो तुम्हें दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। इन बातों का जिक्र अब आने वाले रुकू में है और आने वाले रुकू में कयामत का भी जिक्र है और ये बताया जाएगा कि कयामत में कामयाब होने वाले कौन लोग हैं। सूरह यासीन शरीफ का तर्जमा इस तवज्जो के साथ सुने कि जब यासीन शरीफ हम पढ़ने लगे तो इसका मफहूम हमारे जहनों में गर्दिश करे ताकि यासीन शरीफ की कमा हक्कुहु बरकतें हम हासिल कर सकें। व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैता, व आया और निशानी, लहुम इन लोगों के लिए, अल अर्दुल मैता मुर्दा जमीन है, इन लोगों के लिए अल्लाह की कुदरत की एक निशानी मुर्दा जमीन है जो वीरान है बंजर है उसके अंदर जिंदगी की रमक नहीं है। आह यई ना, हम उस मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं। बारिश आती है और बारिश वो जमीन के अंदर जिंदगी पैदा कर देती है। अब जो बीज उसमें डाला जाए ये जमीन उसमें भी जिंदगी पैदा कर देती है। वो अख रजना मिनहा हब्बन, और हम ने निकाला उस जमीन से अनाज, हब्बन के माना दाना अनाज, फमिनहु याकुलून, बस ये लोग इस अनाज से खाते हैं तो क्या वो शुक्र अदा नहीं करेंगे, क्या वो इस पर गौर नहीं करेंगे कि जो रब एक दाने से पूरा दरख्त बनाने पर कादिर है, एक दाने से हजारों दाने पैदा करने पर कादिर है। एक अनार का दाना जमीन में बोया जाए उससे अनार का दरख्त पैदा हो और उस पर सैकड़ों अनार लगें, एक एक अनार में कितने दाने होते हैं। जो रब एक दाने से हजारों दाने पैदा करने पर कादिर है तो वो तुम्हारे जिस्म के जुजे असली पर पूरे जिस्म को दोबारा पैदा करने पर कादिर है। और अगर कोई जमीन में मट्टी हो जाए, मिलकर रेजा रेजा हो जाए और मट्टी के साथ मट्टी हो जाए, इंसानी जिस्म का एक जर्रा ऐसा है कि जो खत्म नहीं होता, वो मट्टी में बाकी रहता है, वो जर्रा खुर्दबीन से भी नजर नहीं आ सकता। ये वो जर्रा है कि जब इंसान की पैदाइश नहीं होती तो वो जर्रा बाप की पुश्त में होता है और उसी जर्रे पर इंसान की पूरी तखलीक है। उसी जर्रे पर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर उसे बनाया, उसी जर्रे पर दोबारा कयामत के दिन उठाएगा। तो वो जर्रा एक बीज की तरह है, जिस तरह एक बीज पर पूरा दरख्त बन जाता है। तो जमीन की मिसाल देकर इन्हें समझाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला इस पर जरूर कादिर है। वजअलना फीहा जन्नातिम मिन नखीलिन व अअनाबिन, और हमने इस जमीन में खजूर और अंगूर के बागात पैदा किए। खजूर और अंगूर का जिक्र खास तौर पर इसलिए किया गया कि खजूरें और अंगूर ये दो ऐसे फल हैं जो आज भी और उस जमाने में भी जिनका महफूज करना बहुत आसान है। खजूर अपनी असली हालत में कुछ अरसे तक महफूज रहती है, फिर अगर खुश्क हो जाए तो छुहारा बनकर महफूज रहती है। अंगूर ये खुश्क हो जाए तो किशमिश और मुनक्के की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें वो फल अता फरमाए कि जिनका स्टोर करना कितना आसान है और इन्हें बाकी रखना कितना आसान है। ये रब्बुल आलमीन का करम है, ये उसकी कुदरत का जहूर है। फज्जरना फीहा मिनल उयून, और हमने इस जमीन में चश्मे बहाए। इस आयत का मफहूम वही समझ सकता है जिसने उस इलाके में सफर किया हो कि जिस इलाके में पहाड़ों से जगह जगह चश्मे बह रहे होते हैं। उन पहाड़ों से वो चश्मों का वो पानी कि जो बगैर किसी मशीन के उसका ये आलम है, ऐसा साफ है और ऐसा जरासीम से पाक है,
कि दुनिया की साइंस आज ये तस्लीम करने को तैयार है कि प्योर अगर पानी आपको हर जरासीम से

पाक हासिल करना है तो चश्मों का पानी है, जिसमें कुछ गर्म है, कुछ ठंडे हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ फीके हैं, और हर एक के अंदर इंसानी जिस्म के लिए जिन विटामिन्स की और जिन मादनियात की जरूरत है उन चश्मों के पानी में अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। वफज्जरना फीहा मिनल उयून, और हमने इस जमीन में उयून बहाए, उयून के माना चश्मे, लिया कुलु, ताकि वो खाएं, मिन समरी ही इसके फलों से। तो जमीन में अल्लाह ताला ने फल पैदा किए, अनाज पैदा किया, हमारा काम तो सिर्फ बीज को बो देना है, बीज से पौधा बनाने वाला, उस पर फल देने वाला रब्बुल आलमीन है। और फिर सवाल यह है कि ये बीज हमें किसने दिया? तो आप कहेंगे ये बीज हमने एक फल से निकाला। वो फल कहां से आया? तो आप कहेंगे वो बीज से निकला, बीज से बना। फिर दोबारा ये सवाल है कि वो बीज कहां से आया? तो ये जब सर्कल आप चलेंगे पीछे, तो एक मौके पर दुनिया को तस्लीम करना पड़ेगा कि पहला फल या पहला बीज, वो उसमें इंसानी अमल दखल नहीं है, वो अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा किया। और हकीकत इंसान जो कुछ भी करता है वो अल्लाह ताला की कुदरत ही का जहूर है कि उसे ताकत और कुव्वत और उसे सोच और समझ और अकल रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई। वमा आमिलतु अईदीहिम, इस आयत के दो मफहूम हैं, यानी आयत एक है और इसके दो माना है। वमा आमिलतु अईदीहिम, और इनके हाथों ने ना बनाया, ये फल हमने पैदा किए हैं। इसमें तासीर, इसमें लज्जत, इसमें मिठास हमने पैदा की है। जमीन में पानी जो दिया जाता है वो खाद और जमीन की अपनी ताकत वो वही है, मगर फलों में मुख्तलिफ जायके और मुख्तलिफ मिठास पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन है। एक तो ये माना है। दूसरे माना, वमा अमिलतु अईदीहिम, हमने फल पैदा किए और फलों से जो वो बनाते हैं वो भी हमने ही उन्हें ताकत दी है ताकि वो इससे खाएं। मसलन एक आम ही को ले लीजिए, तो आम के मुख्तलिफ स्टेज हैं। जब छोटा है, केरी है, तो वो केरी की शक्ल इख्तियार करता है, उससे बसा औकात लोग चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, फिर केरी से बढ़ते बढ़ते आम की शक्ल इख्तियार करता है, फिर आम को जब तोड़ा जाता है तो उससे भी मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं। तो अगर देखा जाए कि हम जितना खाते हैं, चाहे कोई भी डिश हो, उस डिश के अज्जाए असलिया अल्लाह ही ने पैदा किए हैं और इसे बनाने की ताकत भी अल्लाह ने दी है। मसलन एक आप दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, इस पर देखें अल्लाह ताला की कितनी नेमतों को हम मिलाकर खाते हैं। रोटी को लीजिए तो गंदम है, फिर ये गंदम किस तरह उगता है और कैसे पहुंचता है, एक पूरा इसका सर्कल है। फिर इस गंदम के लिए जो आप बर्तन लेते हैं जिसमें आटा गूंथते हैं, इस बर्तन चाहे स्टील हो, चाहे लोहा हो, चाहे पीतल हो, ये सब अल्लाह ने पैदा किए। फिर जिस तवे पर आप रोटी गर्म करते हैं, वो तवा लोहे का हो या किसी भी और धातु का हो, ये अल्लाह ने पैदा किया। फिर जिस आग से इस रोटी को पकाते हैं, चाहे गैस से हो, चाहे पेट्रोल से हो, चाहे मिट्टी के तेल से वो आग पैदा हो या लकड़ी से पैदा हो, सबको पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। फिर जो आप जिस हाथ से खा रहे हैं, इस हाथों को कुव्वत और इस हाथों का ये शेप अल्लाह ने पैदा किया, ये दांत अल्लाह ने पैदा किए। फिर पूरा निजाम हमारे जिस्म के अंदर उस खुराक को हजम करने का अल्लाह ताला ने पैदा किया। फिर आप सालन को लीजिए, तो उसमें जो कुछ भी नमक है, मिर्ची मसाले हैं, गोश्त है, सब्जी है, आलू है, ये जितनी चीजें हम मिलाते हैं ये सब अल्लाह ताला ही ने पैदा की। यानी गोया के एक खाने में हम अल्लाह ताला की हजारों नेमतें इस्तेमाल करते हैं, मगर फिर भी ना शुक्री है। फिर भी ऐसे नादान लोग हैं जो दस्तखान पे बैठकर वो खाने की नाशुकरी करते हैं, बेअदबी करते हैं, उसमें नुक्स निकालते हैं। अगर हमारे नबी

से मोहब्बत है तो हुजूर का तरीका तो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी खाने में नुक्स बयान नहीं किया। अफला यशकुरून, क्या वो शुक्र नहीं करते? सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, खलकल अज़वाजा कुल्लहा, जिसने हर चीज के जोड़े बनाए, मिम्मा तुम बितुल अर्दो, उससे जो जमीन उगाती है, यानी दरख्तों में, पौधों में, फूलों में भी मुजक्कर और मोनस हैं, उनके भी जोड़े हैं। ये तो जो बॉटनी का इल्म रखते हैं वो बखूबी जानते हैं। वमिन अनफुसिहिम, और खुद इनकी जानों में हमने जोड़े बनाए, मुजक्कर और मोनस। वमिम्मा ला यालमून, और उस मखलूक के जोड़े पैदा किए जिसे वो जानते भी नहीं है। ये वो आयत करीमा है कि जिसने इंसान को जस्तजू और तहकीक की राह दी। मिम्मा ला यालमून, ऐसी मखलूक भी है कि जिसको हम जानते नहीं हैं। साइंस ने तरक्की की और आज ऐसी बेशुमार चीजें, ऐसी बेशुमार मखलूक, कीड़े, जरासीम, वायरस साइंसदानों ने बयान किए, जिसे बसा औकात हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, उनके भी जोड़े हैं, उनमें भी मुजक्कर मोनस है। यहां तक कि मच्छर कितना छोटा सा जानवर है, एक कीड़ा है, इसमें भी मादा भी है और नर भी है। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर वो मादा होता है, डेंगू वायरस फैलाने वाला मच्छर भी सुना है कि वो मादा होता है। तो आप सोचें, इतना छोटा सा कीड़ा है, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़े बनाए हैं। वह आयतुल लहुमुल लैल, और एक निशानी उनके लिए रात है। दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि जो रात को अपनी नींद पूरी करता है, बेशुमार बीमारियों से वो महफूज रहता है। आज जो हमारा पेट का निजाम है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये है, वो है, इसकी सबसे बड़ी वजह रात को देर से सोना, और फिर सुबह नूरानी वक्त में कि जो सेहत के लिए बहुत मुफीद है, उसमें फिर 12-12 बजे तक सोए रहना। तो ये इंसानी सेहत के निजाम को पूरा खराब कर देती है। इंसानी फितरत के मुताबिक जो नींद है वो ये है कि रात को जल्दी सोया जाए, सुबह जल्दी उठ जाए, फजर से भी पहले। हाँ, दोपहर में आधा घंटा एक घंटा अगर कैलूला कर लिया जाए, ये इंसानी फितरत के आयन मुताबिक है। अब जब आप फितरत से और असलियत से हटेंगे तो इसके नुकसान तो होंगे। ये रात जिसमें नींद इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, वो रात भी हमारे लिए अल्लाह की निशानी है।

0: सूरह यासीन की तफसीर का चौथा हिस्सा भी आप समाप्त कर रहे थे। अब वक्त हुआ है गुशे नूरी का, और गुशे नूरी में बशा अल खैर के चंद अशार हम आपको पेश कर रहे हैं, यानी दरूद गौसिया।
1: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن

सामिन, इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस सबसे मुखातिब हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को आप पसंद फरमा रहे हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है गोशे नसीहत, और आज दो ऐसी कहानियां हम आपको पेश कर रहे हैं जिनके उनवानात इस तरह हैं। पहली कहानी का उनवान है एक अल्लाह वाले का वाकया, और दूसरी कहानी राह खुदा में खर्च करें। और इसके फौरन बाद एक नसीहत आमेज कलाम हम आपको पेश करेंगे। समाप्त कीजिए।

बुजुर्ग थे, हज के सफर पर गए, हज के सफर पर गए, उनके हाथ में एक थैला था, उसको हमयानी कहते हैं, जैसे औरतों का पर्स होता है ना, तो मर्दों के हाथ में ऐसे थैले होते थे पहले, उसमें अपनी जरूरत की चीजें डाल लेते थे, तो वो हमयानी थी उनकी, उसमें उनके पैसे भी थे, सारा कुछ था। एक नौजवान आया और उसने जल्दी से दौड़ते हुए जो हमयानी उनसे छीनी और छीन के भाग गया। अब वो बुजुर्ग बड़े हैरान कि कोई नौजवान मेरे पैसे हमयानी सब कुछ छीन के भाग गया। थोड़ी देर उन्होंने देखा, फिर अपने घर की तरफ चल पड़े। अल्लाह की शान के जिसने हमयानी छीनी थी ना, ये थोड़ी दूर आगे गया तो अचानक जो इसके कैफियत हुई तो इसकी आंखों की बिनाई चली गई। कई दफा होता है ना, बैठा हुआ आदमी उठे तो आंखों में अंधेरा आ जाता है, तो इसकी भी ऐसी हालत हुई कि इसकी आंखों में अंधेरा, बिनाई चली गई। लो जी, इस नौजवान ने तो रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, क्यों रोते हो? कहने लगा कि मैंने एक बंदे का थैला छीना, पैसे छीने, मुझे लगता है उसने बददुआ की, अल्लाह ने मेरी बिनाई छीन ली। उनका भाई वो बंदे वो कहाँ है? कहने लगा फला हज्जाम की दुकान के करीब। उन्होंने कहा, हम तुम्हें ले जाते हैं और हम वहां ऐलान करते हैं, अगर वो वहां हो बड़े मियां तो वो तुम्हें माफ कर दे। चुनाचे वो इस नौजवान को लेकर वहां हज्जाम की दुकान के पास आए। हज्जाम से पूछा, भाई ऐसा बूढ़ा आदमी जो थैला लेके गुजरता था, उसने कहा दिन में 5 मरतबा नमाज के लिए आते जाते हैं, वो अगली नमाज के लिए फिर यहीं से गुजरेंगे, तुम इंतजार करो। सब इंतजार में बैठ गए। इतने में वो बड़े मियां भी आ गए। तो जब उस बंदे को बताया कि भाई वो बड़े मियां आ गए, लोगों ने भी कहा माफ कर दें, नौजवान ने भी कहा प्लीज मुझे माफ कर दें। वो कहने लगे, मैंने तो उसी वक्त ही माफ कर दिया था। भाई माफ कर दें? वो बुजुर्ग कहने लगे, मैंने तो उसी वक्त माफ कर दिया था। वो कहें, जी ये आपके सारे पैसे लेके भाग गया और आप कहते हैं मैंने उसी वक्त माफ कर दिया था? वो कहने लगे, हाँ मुझे ख्याल आया था जिसकी वजह से मैंने उसी वक्त माफ कर दिया था। तो लोगों ने पूछा, क्या ख्याल आया था? तो वो बड़े मियां कहने लगे कि जब

0: ये मेरा थैला लेके भाग गया तो मेरे जहन में ख्याल आया क्यामत का दिन होगा और मैं अगर अल्लाह के सामने मुकदमा पेश करूंगा तो इस बंदे से हिसाब लिया जाएगा और जितनी देर मेरे और इसके मुकदमे के फैसले होने में लगेगी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उम्मत का हिसाब मुकम्मल होने से पहले जन्नत में नहीं जाऊंगा, तो ख्याल आया कि जितनी देर मेरे मुकदमे में लगेगी मेरी वजह से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में जाने में देर लगेगी, मैंने माफ कर दिया, न मुकदमा पेश होगा न मेरी वजह से मेरे आका को देर लगेगी। आज हमारी अगर ये सोच बन जाए तो हम हर एक को माफ न कर दें कि हमारी वजह से तो हमारे आका को देर न लगे ना जन्नत में जाने में। अल्लाह अकबर कबीरा, रब्बे करीम हमें वो ज़र्फ़ अता फरमाए, हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह।
1: दोस्तों, किसी जमाने में बगदाद में एक बहुत बड़ा ताजर हमजा रहता था। वो तबीयत का बड़ा नेक और हाथ का बहुत सखी था। अपनी दौलत को वो अल्लाह की अमानत समझता था और इसे नेकी के कामों पर दिल खोल कर खर्च करता रहता था। इसने बेवाओं, यतीमों और अपाहजों के वजीफे मुकर्रर कर रखे थे। कोई गरीब कर्ज के बोझ तले दब जाता तो इसका कर्ज अदा कर देता। किसी गरीब तालबे इल्म में तालीम का खर्च उठाने की ताकत न होती तो इसका सारा खर्च अपने जुमा ले लेता। कोई बीमार अपना इलाज न करा सकता तो इसका इलाज कराता। हाजियों का कोई काफिला शहर में आ जाता तो इसकी खूब खिदमत करता। इसके दस्तरखान पर बीसियों गरीब और मस्कीन लोग दोनों वक्त खाना खाते थे। कोई सवाली इसके दरवाजे से कभी खाली हाथ न जाता। वो खुदा की राह में जितना ज्यादा खर्च करता था अल्लाह इसे इतना ही ज्यादा दे देता था। मट्टी में हाथ डालता तो वो भी सोना बन जाती। खुदा की कुदरत अल्लाह के इस नेक बंदे का अकलौता बेटा जिसका नाम मोहम्मद था अपने बाप का बिल्कुल उल्ट था। वो ऐशो आराम और दूसरे फजूल कामों पर बेतहाशा खर्च करता रहता था, लेकिन किसी गरीब और मोहताज को कुछ देने का इसे कभी ख्याल ना आया था। इसका नेक दिल वालिद इससे कहा करता था कि जो शख्स अपना माल सिर्फ अपनी जरूरतों और अपने ऐशो आराम पर खर्च करता है एक दिन इसका माल खत्म हो जाता है, लेकिन जो शख्स अपना माल अल्लाह को खुश करने के लिए यतीमों, बेवाओं, नकारा बूढ़ों, गरीबों और मोहताजों पर खर्च करता है इसका माल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने एक के बदले दस देने का वादा कर रखा है। मोहम्मद बिन हमजा अपने बाप की नसीहतों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। बाप बेचारा इसके अलल्ले तलल्ले देखकर जी ही जी में करता रहता। आखिर एक दिन इसका आखिरी वक्त आ पहुंचा और वो अल्लाह के पास चला गया। इसके जनाजे पर इतना हजूम था कि किसी बादशाह के जनाजे पर भी नहीं होता। बेवा औरतें, यतीम बच्चे और गरीब मस्कीन लोग दाड़े मार मार कर रोते थे और अपने मोहसिन के लिए दुआएं करते थे। मोहम्मद बिन हमजा ने यह सब कुछ देखा लेकिन इस पर कुछ असर ना हुआ। इसने सारा कारोबार मुलाजमों पर छोड़ दिया और खुद बाप की छोड़ी हुई दौलत को ऐशो आराम में उड़ाने लगा। मुलाजमों ने इसको कारोबार की तरफ से बेपरवाह देखा तो वो बेईमानी पर उतर आए। जिसके हाथ जो कुछ आता इसे हजम कर जाता। इसी जमाने में मोहम्मद बिन हमजा एक दिन जुमा की नमाज पढ़ने को गया। नमाज पढ़कर वापस आने लगा तो मस्जिद के सामने एक दरवेश ने इसे रोक लिया और सोने का एक दिनार मांगा। मोहम्मद बिन हमजा ने इसे चंद दरहम देकर टालना चाहा, लेकिन दरवेश अड़ गया कि सोने का दिनार ही लूंगा। मोहम्मद बिन हमजा को दरवेश पर बड़ा गुस्सा आया और इसने कहा, बाबा दूसरे लोग तो जो कुछ देते हैं तुम ले लेते हो, लेकिन मुझसे एक दिनार ही क्यों मांगते हो? दरवेश ने कहा, दूसरों से तो मुझे उम्मीद है कि जब मिलेंगे कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन तुम शैतान के कहने पर अपनी दौलत जिस तरह उड़ा रहे हो इसको देखकर आइंदा तुमसे मिलने की कुछ उम्मीद नहीं। तुम्हारा भाई शैतान एक दिन तुम्हें इसी जगह ला खड़ा करेगा जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। मोहम्मद बिन हमजा के साथ इसके चंद मतलबी दोस्त भी थे। उन्होंने दरवेश को बहुत डांटा और इस पर आवाजें कसने लगे, लेकिन मोहम्मद बिन हमजा के दिल में न जाने क्या ख्याल आया कि इसने एक दिनार निकालकर चुपके से दरवेश के हाथ पर रख दिया। दरवेश ने इसको बहुत सी दुआएं दी और कहा, मियां यही दिनार एक दिन तुम्हारे काम आएगा। इस वाक्य को कई साल गुजर गए। इस अरसे में वही हुआ जिसकी दरवेश ने खबर दी थी। मोहम्मद बिन हमजा का कारोबार तबाह हो गया, सब कुछ नौकर खा पी गए, बाप की दौलत भी बिल्कुल खत्म हो गई।

चंद माह तो कर्ज लेकर गुजारे, लेकिन जब बहुत ज्यादा कर्ज हो गया और वो इसे अदा ना कर सका तो कर्ज खुआओं ने काजी की अदालत में दावा कर दिया और इसकी सारी जायदाद कड़क कर ली। अब मोहम्मद बिन हमजा कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गया और इस पर फाके गुजरने लगे। तमाम मतलबी दोस्तों ने आंखें फेर ली। दूसरे लोगों में भी कोई ऐसा ना था जो इसकी किसी नेकी को याद करके इस मुश्किल वक्त में इसके काम आता। एक दफा इसे पूरे दो दिन खाने को कुछ ना मिला। तीसरा दिन जुमा का था। वो जामा मस्जिद के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया कि बाप के मिलने वाला कोई शख्स नजर आए तो इससे मदद मांगे। जब लोग नमाज पढ़कर मस्जिद से निकले तो हजूम में से वही दरवेश उसके पास आया और इसके हाथ में सोने का एक दिनार दे दिया। फिर इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह के नेक बंदे हमजा के बेटे, आज से चंद साल पहले जहां तुम खड़े हो मैं खड़ा था और तुमने मुझे ये दिनार दिया था। आज वही दिनार मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जो कुछ तुमने अपनी जात पर और ऐशो आराम पर खर्च किया वो सब जाया हो गया। ये दिनार तुमने अल्लाह की राह में दिया, यही अब तुम्हारे काम आएगा। इसे तुमने अल्लाह की अमानत समझकर खर्च किया तो एक के बदले दस पाओगे। जाओ अब इसे सोच समझकर काम में लाओ। ये कहकर दरवेश हजूम में गायब हो गया, लेकिन इसकी बातें मोहम्मद बिन हमजा के दिल में खुप गईं। उसने इस दिनार से कुछ सामान खरीदा और रास्ते में छाबड़ी लगाकर बैठ गया। ये सामान बहुत जल्द मुनाफा पर बिक गया। मोहम्मद बिन हमजा इसी तरह छाबड़ी लगाता रहा, यहाँ तक कि जल्द ही इसने एक दुकान खोल ली। अब वो बड़ी मेहनत से काम करता था और जो कुछ आमदनी होती थी इसमें से ज्यादा हिस्सा गरीबों और मोहताजों को दे देता था। अल्लाह ने इसकी दुकान में इतनी बरकत दी कि चंद साल के अंदर अंदर वो अपने बाप की तरह बहुत बड़ा ताजर बन गया। इसने अपने बाप की सारी जायदाद भी फिर से खरीद ली और बाप ही की आदतें और तरीके इख्तियार कर लिए। अब वो एक फजूल खर्च और खुदगर्द आदमी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा सखी था जिसके दरवाजे गरीबों और हाजतमंदों के लिए हर वक्त खुले रहते थे। वो खूब जान गया था कि अल्लाह की राह में जो कुछ दिया जाए वो कभी ना कभी जरूर काम आता है। तो दोस्तों, आप भी अपनी नेक कमाई में से जिस हद तक हो सके अल्लाह की राह में खर्च किया करें, खैरात किया करें और अल्लाह को कर्ज हसना दिया करें। राह खुदा में दिया दुनिया और आखिरत दोनों में काम आएगा।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनते हैं एक व्यक्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्लेन बुआ और मालाकोफ के रहने वालों को सूचित करता है कि रविवार 20 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सभी मरम्मत कार्यों के बाद बिना किसी पूर्व सूचना की बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, दिस इज रेडियो मॉरिशस।
3: बालानंद

బిలాబీ.

0: 819 kilowatts. 819 kilowatts. This is Radio Mauritius.
1: नमस्कार, इस समय दिन के 2:15 है। हमारा आपका साथ है रेडियो मॉरिशस पर। हमें सुरेखा आपका साथ दे रहे हैं। जहां भी होंगे आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और मुस्कुराने के बहाने आप हर तरफ बिखेरते रहिएगा ताकि जहां में मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट का आभास हो। आप सेहतमंद हो, आप खुश हो, आप हमेशा की तरह बहुत ही प्यार से अपने हर पल को बिता रहे हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है भगवान से, ऐसी हमारी उम्मीद भी है और कोशिश यही करेंगे कि हम आपका मन बहला सकें आपकी पसंद के गानों के साथ। इस समय 2:15 हैं और अभी से 4 बजे तक लेकर आए हैं आपके लिए आपकी पसंद।
2: आपकी पसंद,
1: जी हाँ, आपकी पसंद कार्यक्रम में आपके भाग लेने का इंतज़ार कर रहे हैं हम। और भाग तो लीजिएगा मैसेजेस के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए। 5251700 मैसेजेस वाला नंबर है, 4028085 कॉल करने वाला नंबर है। तो चलिए ज़रा हम इन्हीं दो नंबरों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहें और हमारे रेडियो के माध्यम से तो जुड़े ही हैं हम। साथ देते रहिएगा और अपनी पसंद का गाना ज़रूर मांगिएगा। हमारी आपकी ये मुलाकात इसी उम्मीद में कायम रहती है कि आपकी पसंद के गाने हम चला पाएं। फिलहाल तो हम एक प्यारा सा गाना आप लोगों के नाम करते हैं जुवारी मूवी का, और ये गाना है कुमार सानू की आवाज़ में।

चलिए जरा आपकी पसंद कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं हम गायत्री जी की पसंद के गाने के साथ। नोवेल फॉन्स की गायत्री जी सुनना चाह रही है फिल्म खानदान का गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों का ये गीत होगा और इस गीत को वे बजवाना चाह रही हैं अपने बेटे अजय के लिए, मेबक की मामी कल्याणी मोहन जी के लिए और लॉन्ग माउंटेन की भाभी शकुंतला के लिए, नोवेल फॉन्स की अपनी सखी गीता बाई के लिए।

चलिए जरा जन्मदिन की बधाइयाँ तो दे दें हम। जन्मदिन है लीला जी के पति किशोर लोचन जी का। उनके जन्मदिन के अवसर पर लीला जी बहुत से बहुत सारी बधाइयाँ दे रही हैं उन्हें, और किशोर लोचन जी को उनके बच्चों की तरफ से ऋषि, विक्की, करण, प्रीति, अक्षी, अक्षय की तरफ से, सूरज, अंजू, आयुषी की तरफ से, काशी परिवार और लोचन परिवार की तरफ से बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं, जन्मदिन की बहुत सारी मंगल कामनाएं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी पूरी टीम की तरफ से किशोर लोचन जी।

इधर हम शादी की सालगिरह की भी मुबारकबाद देने वाले हैं। अभिनय और रानी की शादी की सालगिरह 17 सितंबर को था और उनको शुभकामनाओं का गुलदस्ता मिला है उनके पूरे परिवार की तरफ से। गीता जी ने पोंफे से अपने बेटे और बहू को मंगल कामनाएं भेजी हैं और विनय और रानी जी आपको पापा रोहित जी की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद मिला है। बेटी जानवी की तरफ से, भाई रवि और राजीव की तरफ से, आदित्य, आरव और तनिष, आपकी दो भाभियाँ आपको बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रहे हैं। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहे, इस वजह से खुशियों वाला ये गाना आपके लिए चुना है। तो चलिए, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं।

तो चलिए इस बार हम आपको सुनवाते हैं सुरैया की आवाज़। बड़ी बहन मूवी का ये गाना है। इस गाने की फरमाइश विद्यानंद जी ने की है मेपक से। उन्होंने ये गाना सोहंती जी के लिए मांगा है। अमित, शीतल, आशु, कृषिका, विशाल, राजीव, स्वीटी, हरवेश, शिवाला लेन मेपक के विष्णु गजाधर जी के लिए, अपने दोस्त के लिए और बहन बिंदु कालीचंद जी के लिए। तो चलिए सुनिए, हम सुनते हैं हम सुरैया की आवाज़।

सुरैया और तलत महमूद की आवाज़ों का ही गाना था। इस बार चलिए ज़रा बढ़ते हैं हम नई गाने कुछ इससे भी नई गानों की ओर। और ये गाना आप सुनिएगा, 30 साल पहले का ये गाना है, दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का। इस गाने को आप लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में सुनिएगा। और ये गाना हमसे सुनवाना चाह रही है मौदलपिया की अनीता जी। अनीता जी ने ये गाना करुणा, अमृता और कविता के लिए मांगा है।

और चलिए जरा हम शिवरानी जी की पसंद का गाना पेश करते हैं, कश्मीर की कली का वो गाना जिसमें इशारों ही इशारों में दिल लुभाने की बातें की जा रही हैं, दिल लुभाने के चर्चे किए जा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ें हैं और ये गाना हम पेश कर रहे हैं गाँव बाकी शिवरानी जी के लिए। शिवरानी जी ने ये गाना एक ख़ास दोस्त के लिए मांगा है।

बस ये सीखी सिखाई बातें नहीं होती, दिल की बातें होती हैं। और हमारी आपकी पसंद कार्यक्रम में आपके दिल की बातें ही तो हम पेश करते हैं। आपके दिल में जो अरमां होते हैं गाने सुनने के, वही हम आपको सुनवाते हैं। बस आपकी पसंद कार्यक्रम को थोड़ा सा हम रोकेंगे अभी, और 3 बजे आप सुन पाएंगे आज के संक्षिप्त समाचार। उसके बाद बढ़ते हैं आगे आपकी पसंद कार्यक्रम के साथ।

0: 402-8000, poste 427, ou par email à bidsec@mbc.mu au plus tard le 17 septembre 2026. Et surtout, retenez la date, les offres doivent être soumises au plus tard le 24 septembre 2026 à 14h.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: 3 बज रहे। सुनते समाचार आस्था जी के साथ, नमस्कार।
3: नमस्कार। एफसीसी सोमवार और मंगलवार को रेजी में करीब 40 गाड़ियों की नीलामी करेगी। नीलामी सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। लोग गाड़ियां रविवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक देख सकेंगे। पहली नीलामी में 69 सामान की बिक्री से 3,34,00,000 रुपए मिले थे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यशीश अमृत और उनकी कंपनी की 4 गाड़ियां इस नीलामी में नहीं बेची जा सकेंगी। त्रियोले में सरस्वती मुचिया की हत्या के मामले में पुलिस संदिग्ध की तलाश कर रही है। 60 साल की सब्जी विक्रेता की गला घुटने से मौत हुई थी। उनका शव उनके खेत में मिला। थोबिश की क्राइम यूनिट कई पहलुओं से जांच कर रही है। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ब्रिज के पास आज सुबह 57 साल के एक व्यक्ति का शव मिला। वो रोजिल का रहने वाला था और कल से लापता था। उसकी मोटरसाइकिल भी पुल के पास मिली है। मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच जारी है। जॉन मिक मॉटिंगेल की मौत की न्यायिक जांच कल रोजिल की अदालत में जारी रही। सुनवाई में बोबासैंट जेल में की गई घटनाओं की पुनर्रचना और 5 जेल अधिकारियों के पहले दिए गए बयानों पर सवाल उठे हैं। जॉन मिक मॉटिंगेल की मौत 8 सितंबर 2024 को हुई थी। फ्रों मिलिटान प्रोग्रेसिस ने प्रस्तावित नेशनल क्राइम एजेंसी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के नेता पोल बिरांजे का कहना है कि नई संस्था के अधिकार पुलिस कमिश्नर के अधिकार को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने इसके भावी डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति पर भी सवाल किया। एफएनपी ने सरकार से नेशनल क्राइम एजेंसी बिल राज्यसभा में पेश न करने को कहा है। पार्टी के अनुसार प्रस्ताव आगे बढ़ा तो वो अदालत जा सकती है। विदेश स्तर पर पाकिस्तान के कोहाट में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हुए हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 16 पुलिसकर्मी और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमला एक आत्मघाती विस्फोट से शुरू हुआ जिसके बाद गोलीबारी हुई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की है। परिसर को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अभियान जारी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
4: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: अभी आप सुन रहे थे आज के संक्षिप्त समाचार आस्था से। इस समय 3:02 हुए हैं।
1: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
0: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से दो विज्ञप्तियां सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्लेम्बुआ और मलाकुफ के निवासियों को सूचित करता है कि कल रविवार 20 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर सीबी सूचित करता है कि पोर्ट लुई के रॉयल के एक भाग में और जोसेफ रिविएरा में कल रविवार 20 सितंबर को ही सुबह 8:30 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतज़ाम अवश्य कर लें। तो ये थी दो विज्ञप्तियाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना इंतज़ाम अवश्य करेंगे। इस समय 3:04 हुए हैं और हमारा आपका साथ है आपकी पसंद कार्यक्रम में।
2: आपकी पसंद,
0: जी हाँ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हमने जारी रखने का वादा किया था। सो आपके लिए ये कार्यक्रम हम जारी रखने जा रहे हैं और इस

बार पेश करेंगे आप लोगों के लिए जो गाना वो दिलीप जी की पसंद का होगा, कुंगुमा के दिलीप जी ने मांगा है, फिल्म दूर का राही का ये गीत दिलीप जी सुनना भी चाह रहे हैं, ये गाना सुनवाना भी चाह रहे हैं। तो चलिए सुनवाना चाह रहे हैं दिलीप जी संगीता जी को, योगेश, कविता, किस्नवी, निशान, दानन और हमारे सभी सुनने वालों को।

और चलिए जरा हम जादू ये संगीत का बिखेरते हैं इस बार पुष्पांजलि मूवी के गाने के साथ। पुष्पांजलि मूवी का ये गाना हम पेश कर रहे हैं वाकवा की सुदेवी जी की पसंद पर। सुदेवी जी ने यह गाना मांगा है दीदी ललिता के लिए, कुशल फैमिली के लिए जो थ्रेले के रहने वाले हैं, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, माला, बिंदु के लिए, मालेगा के अनुषा, किरण, यशना, नीरज के लिए, पूरे रामरतन, रिदोय, रघुपर, कुआगोर, जालू परिवार के लिए। और यही गाना जो पुष्पांजलि मूवी का है, इसकी फरमाइश फ्लिक ऑन फ्लैग से अनीता जी ने की है। राधा अष्टमी के अवसर पर फ्लिक ऑन फ्लैग की अनीता जी ने हमारे सभी सुनने वालों को, अपने सभी दोस्तों को और अपने पूरे परिवार को मंगल कामनाएं भेजी हैं इस गाने के जरिए।

और चलिए, हम तो आपकी पसंद के गाने पेश कर रहे हैं, आपकी पसंदों में बड़ा दम है। चलिए ज़रा हम पेश करते हैं तकदीर मूवी का गाना, और ये गाना हम विश्वानी जी की तरफ से बजवा रहे हैं। विश्वानी दुमन जी जो वाकवा रहती है, उनकी तरफ से ये गाना उनकी बहनों के लिए, इंदिरा और शारदा के लिए, उनकी सहेलियों के लिए, नीला और प्रतिभा के लिए, शोभा जी के लिए और गीता गजाधर जी के लिए। और यही गीत हम गौगुप की सुनीता जी के नाम करते हैं, सुनीता जी की तरफ से कुंगुमा की उनकी बहन विमाला के लिए।

ये वो गाना है जूदित नारायण और बेबी प्रीति की आवाजों में हम सुनेंगे। ये गाना हमने लिया है बड़े दिलवाला मूवी से और इसकी फरमाइश थी के बंधु फैमिली की तरफ से।

आइए जरा बढ़ जाएं और शरारत मूवी का गाना सुनें। ये गाना नीता जी सुनना चाह रही हैं और पूरे खेतनी परिवार को सुनवाना चाह रही हैं, जो सेंट जूलियन विलेज के रहने वाले हैं।

0: 890 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: रेडियो मॉरिशस पर आपकी पसंद कार्यक्रम है और आपकी पसंद कार्यक्रम में आप लोगों की फरमाइशों वाले गाने, बेशक इस बार मदर इंडिया मूवी का गाना है और ये गाना हम पेश कर रहे हैं जैबून जी की पसंद पर। पोंफालिंग की जैबून जी ने ये गाना मांगा है अपने शौहर कासम के लिए, अपने चार बेटों, चार बहुओं के लिए और नाती पोतों के लिए, जहिराबी, नगमा, उर्फा, असगर, हिदायत, फैज़ुल्ला, निहाद, और उन्होंने ये गाना अपने भाई के लिए मांगा है और अपनी बहनों के लिए भी मांगा है, बिहारी परिवार और रसमली परिवार के लिए भी।

और आप लोगों के लिए काली घटा मूवी का भी गाना पेश करेंगे हम, क्योंकि इस गाने की फरमाइश नोटरडम से रेहाना जी ने की है। रेहाना जी का कहना है कि उनकी जितनी सहेलियां हैं उन सबको ये गाना पसंद है। तो चलिए लता मंगेशकर की आवाज़ का ये गाना उनकी सभी सहेलियों के नाम करते हैं, ख़ासतौर पर माला फौदार जी के लिए और पोर्ट लुइस की सुरेखा जी के नाम उन्होंने ये गाना किया है।

चलिए जरा कजरे की धार को मापते हैं, जरा देखते हैं कैसी है ये धार। और देखने के लिए पंकज उडास की आवाज आएगी और ये गाना आप सुनिएगा, फिल्म मोहरा से लिया गया। मोहरा मूवी का ये गीत राजन लक्ष्मण जी सुनना चाह रहे हैं लाफलोका से। उन्होंने ये गाना अपनी पत्नी माला के लिए मांगा है, बेटी प्रगति और प्रार्थना के लिए, बहन मानती के लिए और भगिनी उर्मिला तुलसी के लिए, पूरे लक्ष्मण परिवार के लिए।

ये गाना है माया मूवी से लिया गया। इस गाने की फरमाइश करने वाले हैं पोर्ट लुइस के इब्राहिम जी। तो चलिए इब्राहिम जी के नाम करते हैं हम ये गीत।

0: On the hour, every hour.
1: Radio Marches.
2: भाई हमें तो मिला है मैसेज कुमारी जानू जी का, जो कुटेज रहती हैं। राधे राधे कुमारी जानू जी, आपको आपने बेटी कहा है हमको, तो कुमारी चाची जी आपको राधे राधे। राधे जी और कृष्ण जी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें, और सभी को राधा अष्टमी की मंगल कामनाएं दी हैं कुमारी जी ने। और स्पेशल बात तो ये कही है कि आज राधा अष्टमी के मौके पर उनकी लवली बेटी आशा जानू

The headbutt is so blissful. कितना शुभ दिन है आज आशा जी. इस शुभ दिन पर आपका जन्मदिन कितना मंगलमय, कितना मंगलकारी है ये घड़ी. आपको मंगल कामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से आशा जी. और आपको आपकी मामा ने हैप्पीनेस, गुड हेल्थ की मंगल कामनाएं दी हैं और भगवान आप पर बहुत सारी कृपा बनाए रखें. मामा कुमारी की तरफ से, नेफ्यू शुभम की तरफ से, ऋषभ की तरफ से, दीदी आरती, जीजू राज की तरफ से और पूरे जानू परिवार की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. हमारी पूरी टीम सब मिल के आपको कह रहे हैं वेरी हैप्पी बर्थडे. आपका जन्मदिन बहुत मंगलमय हो, बहुत अच्छे समय बिताइए अपने परिवार के साथ.

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से ये विज्ञप्ति सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ब्रह्मस्थान के निवासियों को सूचित करता है कि मोसिल मोवियोरेस ब्रह्मस्थान बालकिसुन रोड और कौची के एक भाग में कल रविवार 20 सितंबर को सुबह 8:15 से शाम के 4:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी और मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतज़ाम अवश्य कर लें। तो ये थी एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। इस समय 7:57 हुए हैं और 4:03 जो बाकी है हम अंतिम गाना पेश करते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम का। ये गाना होगा इम्तिहान मूवी से लिया गया और इसकी फरमाइश कविता जी ने की है मोतीदा से। उन्होंने ये गाना अपने पूरे परिवार के लिए मांगा है और अपने सभी दोस्तों के लिए मांगा है और ये गीत हम पेश कर रहे हैं उनकी तरफ से सभी सुनने वालों के लिए। सो इसी गाने के साथ हमारा आपका साथ यहाँ पर पूरा हो जाएगा, हमारी आपकी मुलाकात पूरी हो जाएगी और 4:00 आप सुन पाएंगे आज का साहित्य दर्पण कार्यक्रम जिसे लेकर आ रही हैं डॉक्टर अलका धनपत। हमारी आपकी अगली मुलाकात तक शुभ शाम, नमस्कार।

0: 819 kilohertz. This is Radio Marches.
1: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए। साहित्य दर्पण, प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की।
2: साहित्य दर्पण, नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत करती हूँ आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ तकनीकी सहायक के रूप में यज जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आप हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ते हैं 4028085 पर, आपका स्वागत और इंतज़ार रहेगी। आज आप सोच रहे होंगे कि हम किस पर चर्चा करेंगे। श्रोताओं, हमारे पौराणिक चरित्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र हुए हैं अष्टावक्र मुनि। अष्टावक्र का मतलब होता है 8 जगह से जिनका शरीर टेढ़ा था। वक्र मैंने टेढ़ा और अष्ट मैंने 8 जगह से। आप जानते हैं, बड़े ही ज्ञानी थे। आप बताइए, हमारे पौराणिक पात्रों में आपको कौन सा कोई पौराणिक पात्र प्रभावित करता है? तो आज मैं बात करूंगी अष्टावक्र की, और आप किसी और पात्र के बारे में चर्चा कर सकते हैं। श्रोताओं, बहुत ही ज्ञानवान बालक था यह, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि राजा जनक के दरबार में जब शास्त्रार्थ के लिए वह पहुँचा वहाँ पर, तो सब ज्ञानी मुनिजन उसके ऊपर हंसने लगे। तो जनक ने उनसे पूछा, महाराज कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मूर्खों के दरबार में आ गया हूँ। सभी लोग आश्चर्यचकित कि एक बालक हमको ऐसे बोल रहा, वह भी ऐसे बेढंगे शरीर वाला। राजा जनक ने कहा, आपने मेरे इतने ज्ञानवान दरबार को मूर्खों का दरबार कहा? अष्टावक्र मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, राजन, जो ज्ञानी अभी तक केवल शरीर को ही देख रहे हैं, वे किसी के गुण नहीं देख पा रहे, वह मूर्खों का दरबार नहीं तो और क्या है? जब तक हम बाह्य आकर्षण दिखावा इसी में ही डूबे हुए हैं, तो हम अभी मूर्ख हैं। तो श्रोताओं, अष्टावक्र के सामने तो जनक जी भी नतमस्तक हो गए, और बाद में उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। तो श्रोताओं, ये जो अष्टावक्र मुनि थे या अष्टावक्र ज्ञानी थे, इनके पिता का नाम उद्दालक था। महर्षि उद्दालक अपनी कुटिया पर एक चबूतरे पर बैठे थे, और ये अष्टावक्र बालक उनकी गोद में बैठा था। 8 जगह से ये बच्चा टेढ़ा मेढ़ा था, बहुत दिक्कत होती थी उसे चलने में, उठने में, और आश्रम के अन्य बच्चों की तरह वह खेलकूद भी नहीं पाता था। इस कारण महर्षि उससे कुछ ज़्यादा भी प्यार करते थे, क्योंकि बालक बहुत समझदार था, लेकिन फिजिकल क्रियाओं में या शारीरिक क्रियाओं में उसको दिक्कत होती थी। तो सुबह का समय था, आसपास अनेक पशु पक्षी थे, यहाँ तक कि सूर्य भी उदित हो चुका था, हवा बह रही थी, और दूर शहर से इस आश्रम में एकदम शांति छाई हुई थी। महर्षि उद्दालक किसी गहरे चिंता में अष्टावक्र के सिर पर हाथ फेर रहे थे, और अष्टावक्र क्योंकि अभी बालक था, चिड़ियों को, गिलहरियों को देखकर बड़ा खुश हो रहा था। तभी महर्षि उद्दालक का पुत्र श्वेत केतु दौड़ता हुआ आया, हाँफ रहा था, उसके मुखमंडल पर पसीना आ रहा था। सखाओं ने उसे खेल में हरा दिया था और उसे चिढ़ा रहे थे, तो वो काफ़ी खींचा हुआ था। श्वेत केतु शिकायत लेकर पिता के सामने आ गया, किंतु जब उसने देखा कि अष्टावक्र उद्दालक की गोद में बैठा है, तो थोड़ा सा श्वेत केतु के मन में ईर्ष्या जाग गई। उसे लगा कि पहला हक मेरा है, उसे लगा कि ये पिता मेरे हैं, अष्टावक्र के नहीं हैं। इसको गोद में बिठाया है गुरु ने, यह मेरा अधिकार छीन रहा है। उसने गुस्से

में आकर कहा, हटो मेरे पिता की गोद से, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ तो मैं बैठूँगा, ये तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता जहाँ हो वहाँ जाओ। महर्षि उद्दालक हैरान रह गए। अष्टावक्र बालक था, रोने लगा। रोते रोते वह अपनी माँ सुजाता के पास पहुँचा। माता ने दौड़कर बालक को गले लगाया और रोने का कारण पूछा। अष्टावक्र ने कहा, माँ सच बताओ, मेरे पिता कौन हैं और कहाँ हैं? उद्दालक ऋषि मेरे पिता नहीं, वे तो गुरु हैं, क्योंकि आज श्वेत केतु ने मुझे ऐसा बोला है। सुजाता अवाक रह गई। जिस बात की उसे चिंता थी और वो छिपाना चाहती थी, वह प्रकट हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बच्चे को गोद में लेकर बोली, तुझसे ये सब किसने कहा? बड़े भैया श्वेत केतु ने। अष्टावक्र रो रहा था। वह कहता है कि महर्षि उद्दालक तेरे पिता नहीं है। माता मूर्ति के समान बन गई। उसकी आंखों से आंसू तो गिर रहे थे। तब उसने कहा, वह सच कहता है पुत्र, महर्षि उद्दालक तेरे नाना हैं और श्वेत केतु तेरे मामा हैं। तो बताइए ना, मेरे पिता कौन हैं और कहां पर हैं? तो श्रोताओं, आगे बढ़ाने से पहले इस गीत को सुनते हैं।

0: की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा।
1: सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात,
0: ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर था और

0: बताता हूँ, हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, उनको सुनते हैं वे क्या कहना चाहते हैं हमें। हेलो हेलो।
1: हाँ बेटी।
0: नमस्ते नानी जी।
1: नमस्ते बेटी।
0: हाँ क्या कहना चाहेंगे?
1: अच्छा हवा जाना आप? अपन भी बोला था थोड़ा अच्छा है।
0: हाँ सुनाइए।
1: हाँ हम एक बात बताए के हैं कि शिव सागर चाचा के बारे में।
0: हाँ बिल्कुल जरूर।
1: एक दो बात बताए लिया।
0: जरूर जरूर जरूर।
1: तो वो जब शिव सागर चाचा जब अथी लेलन मरीज के लेलन हाथ में तब बहुत गरीबी हटेलन।
0: नानी जी आपका रेडियो सेट ऑन है।
1: गरीबी हटेलन सब के सुखी देलन काम देलन लेकोल कादो देलन और कपड़ा लुगा सब लड़का लोग के इतना दुख हटेलन इतना गरीबी के बहुत सहायता कैलन। लोन निकाला घर बनाव बहुत टूटली मरई रहल उस सहित में काम नहीं रहल हमारे पति के काम नहीं रहल फिर उनका काम मिलल खाए के घर में नहीं रहल कुछ बड़ी दुख रहल बेटी बहुत दुख हटेलन बहुत सुखी देलन।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कह रही नानी जी।
1: लाख हला प्रणाम करे के
0: जी
1: उनका जुग जुग जब ले जी अब जा तब ले उनका प्राण जब ले
0: बहुत धन्यवाद। और आपका रेडियो सेट ऑन है।
1: एक एक लाइन बोले था ये
0: बोलिए
1: तानी सुन बोले था फिर नहीं बोला। स्वाजी के सिमुआ बनैलन मरे चाचा स्वाजी के सिमुआ बनैलन मरे चाचा चारो बगल फूलवा लगैलन मरे चाचा चारो बगल फूलवा लगैलन मरे चाचा रेजवी के सिमुआ बनैलन मरे चाचा रेजवी के सिमुआ बनैलन मरे चाचा चारो बगल फूलवा लगैलन मरे चाचा चारो बगल फूलवा लगैलन मरे चाचा भर मरीस हरा भरा हो गई।
0: बहुत धन्यवाद नानी जी आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी एक स्मृति हमारे साथ बांटी और मॉरिशस के महान व्यक्तित्व के बारे में आपने चर्चा की। तो श्रोताओं आगे बढ़ते हैं। ये जो अष्टावक्र थे आठ जगह से टेढ़ा शरीर और आज अपने पिता के लिए पूछ रहे हैं माँ सुजाता से क्योंकि माँ ने कहा था कि उद्दालक ऋषि यही तुम्हारे पिता समान है तो ये बालक बचपन से उनको ही पिता मान रहा था। लेकिन श्वेत केतु ने आज कुछ ऐसी बात कह दी थी जिससे अष्टावक्र बहुत परेशान थे। तब उसने कहा कि माँ तुम मुझे सच बताओ। उसने कहा कि ये उद्दालक ऋषि तुम्हारे नाना हैं और श्वेत केतु मेरे भाई अर्थात तुम्हारे मामा हैं। तो फिर बताओ ना मेरे पिता कौन है माँ और वे कहाँ रहते हैं। माँ ने लंबी सांस खींची कहने लगी जब तुम्हें सत्य पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तुम्हारे पिता का नाम कहोड़ था। वह पिताजी के आज्ञाकारी शिष्यों में से एक थे। उनकी सत्यनिष्ठा सेवा भाव और कर्तव्य परायणता से प्रभावित होकर पिताजी उद्दालक ने मेरा विवाह उनके साथ कर दिया। हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। एक दिन तुम्हारे पिता शिष्यों को शास्त्र शिक्षा दे रहे थे। असावधानी में वह एक मंत्र का उच्चारण गलत कर गए। उस समय तुम मेरे गर्भ में थे। आश्रम के वातावरण ने तुम्हें गर्भ में ही शास्त्र ज्ञानी बना दिया था। तुमने पिता को वहीं से टोका। हे पिताश्री आप शिष्यों को गलत ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। यह पाप है। पहले स्वयं गहन अध्ययन मनन से निपुणता अर्जित करें फिर अध्यापन कार्य करें। शिष्यों के सामने तुम्हारे पिताजी लज्जित हुए लेकिन उनको क्रोध बहुत आ गया। और तुम जानते हो जब क्रोध आता है तो मनुष्य का विवेक समाप्त हो जाता है। उन्होंने उस समय उचित अनुचित भी नहीं देखा और क्रोध में कहा कि बालक तू स्वयं को अधिक ज्ञानी सिद्ध कर अपनी श्रेष्ठता प्रकट करना चाह रहा है। तू टेढ़े स्वभाव का है इसलिए जब तू पैदा होगा तू आठ अंगों से टेढ़ा होगा और लोग तुझे अष्टावक्र के नाम से जानेंगे।

0: श्रोताओं, अष्टावक्र नाम ही उसका इसलिए पड़ा क्योंकि आठ जगह से वह टेढ़ा था, पर ज्ञान को तो कोई नहीं रोक सकता था ना। पिताजी ने जो श्राप दिया वह शरीर को मिला, लेकिन जो ज्ञान उस बालक के पास था उसे कौन रोक सकता था।
1: सीख का सदा स्वागत होता है। साहित्य में छुपा गुड़ रहस्य होता है, क्योंकि साहित्य सबका आईना होता है। साहित्य दर्पण, ये साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम लेकर आ रही हैं

तो श्रोताओं, हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, उनको लेते हैं, देखते हैं वे क्या जोड़ना चाहते हैं। हेलो, शायद लाइन कट गई है, आप फिर से एक बार प्रयास कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये जो अष्टावक्र थे, जितना ज्ञान उनको मिला था अपनी माँ से गर्भ में, क्योंकि आश्रम में ही रहते थे,

कट गई है, आप फिर से एक बार प्रयास कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये जो अष्टावक्र थे, जितना ज्ञान उनको मिला था अपनी माँ से गर्भ में, क्योंकि आश्रम में ही रहते थे थी तो उनको देवताओं के यहाँ रहना पड़ा था। तो वहाँ रहने के कारण, क्योंकि हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहे थे, तो बालक प्रहलाद की आस्था विष्णु भगवान में हो गई थी। तो इसी तरह से अष्टावक्र ज्ञानी तो थे ही, और अपने पिता को कहते हैं कि उसी समय उन्होंने टोका, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसको शाप दिया कि तुम 8 अंगों से टेढ़े हो गए और तुम्हें लोग अष्टावक्र के नाम से जानेंगे। माँ ने कहा, तेरा समय नज़दीक आ रहा था जन्म का, मैंने कहा तुम्हारे पिता से कि हमारे पास धन नहीं, कुछ नहीं, कुछ ज़रूरत पड़ेगी आप राजा जनक के दरबार में चले जाएं। सुना है कि वे ब्राह्मणों का, परम ज्ञानियों की मदद करते हैं, तो शायद हमारा भी सम्मान करेंगे और मदद मिलेंगी। अष्टावक्र ने पूछा, फिर क्या हुआ माता? तो श्रोताओं, क्योंकि अष्टावक्र जानना चाहते थे कि ऋषि कहोड या उनके पिता जब गए वहाँ पर आश्रम में, या आश्रम से राजा जनक के दरबार में, तो क्या हुआ। मिथिला नरेश जनक के दरबार में वरुण देव का पुत्र बंदी भी है। यह वह शास्त्रार्थ में बहुत कुशल और स्वभाव से अत्यंत दुष्ट है। जब तुम्हारे पिता दरबार में पहुँचे तो उसने शास्त्रार्थ के लिए उन्हें ललकार दिया। किसने? वरुण देव का पुत्र जो बंदी था। तुम्हारे पिता सहर्ष तैयार हो गए, कई प्रहर तक शास्त्रार्थ, मतलब श्रोताओं एक दूसरे से प्रश्न पूछना, अंततः सभा निर्णय करती थी कि कौन कितना ज्ञानी है और कौन सुनने वालों को या प्रश्न पूछने वाले को संतुष्ट कर पाया। इस तरह से शास्त्रार्थ हुआ करता था। आप सबको याद होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कई शास्त्रार्थ किए थे, मुसलमानों के साथ भी, क्रिश्चियन पादरियों के साथ भी, हम सत्यात प्रकात में इसको पढ़ते भी हैं। तो श्रोताओं, कई प्रहर मतलब कभी कभी दिनों लग जाते थे इस शास्त्रार्थ में। यहाँ तक कि चाणक्य के नीति शास्त्र में भी मिलता है कि तक्षशिला नालंदा में विद्यार्थी लोगों को भी शास्त्रार्थ के लिए अंतिम परीक्षा देनी पड़ती थी और अपने गुरुजनों को संतुष्ट करना पड़ता था। तो माता ने बताया, सुजाता ने, कि तुम्हारे पिता गए तो वरुण देव के पुत्र ने उनको ललकारा। तुम्हारे पिता बड़ी लंबी यात्रा करके वहाँ पहुँचे थे, तो बहुत थके हुए थे, तो उसने इसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि आपको याद है उन दिनों जंगल होते थे, पदयात्रा बड़ी कठिन होती थी, और वे पराजित हो गए, और उसने क्रोध में आके तुम्हारे पिता को पत्थर बांध कर समुद्र में फेंकवा दिया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों किया? अष्टावक्र को बहुत ही क्रोध सा आया कि शास्त्रार्थ में यदि कोई पराजित हो गया तो उसको ऐसा दंड। माँ ने कहा, बेटा जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उन्हें दुष्टता में आनंद आता है, वे रोने वाले को और रुलाते हैं। जैसे रावण का नाम है रुलाने वाला, जो दूसरों को रुलाता है वह रावण है। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसी तरह से यह जो दुष्ट था वरुण देव का पुत्र, ज्ञानी तो था लेकिन बहुत दुष्ट था, अपनी दुष्टता को उसने तृप्त किया। अब तक ना जाने उसने कितनी ज्ञानियों को, जो बेचारे बूढ़े थे या जो उसे परास्त नहीं कर पाए, उनको मृत्यु दे दी उसने। अष्टावक्र को बहुत बुरा लगा श्रोताओं। सुजाता जानती थी वह सुनेगा तो क्रोध में आ जाएगा। उसने अपना दायां हाथ उठाकर कहा, माँ तेरे आंसुओं की सौगंध खाता हूँ कि वरुण पुत्र को शास्त्रार्थ ने पराजित करके मैंने समुद्र में न डुबाया तो मैं तेरी संतान नहीं हूँ। पुत्र की प्रतिज्ञा सुनकर माँ तो परेशान हो गई। उसे लगा कि मुझे पता है मेरा बेटा बहुत ज्ञानवान है, लेकिन फिर भी अभी तो छोटा है, ये छोटी आयु है उसकी और तीक्ष्ण बुद्धि है उसकी, पर फिर भी यही तो एकमात्र घर में मेरा सहारा है। अगर इसको कुछ हो गया या कोई कारण हो गया तो मैं क्या करूँगी? सबने अष्टावक्र को समझाया कि वह बड़ा दुष्ट है, किसी भी तरह से सबको तंग करता है, लेकिन अष्टावक्र भी हठी था। उसने कहा, नहीं, मैं अपने पिता की मृत्यु का ज़रूर प्रतिशोध लूँगा, मैं उसको शास्त्रार्थ में हरा कर बताऊँगा। आखिरकार सबने अनुमति दी कि तुम ठीक है, जाओ मिथिला, राह की कठिनाइयों को आप सोचो। अष्टावक्र और उस समय कितना कठिन रास्ता था, जैसे
मॉरिशस में परी तालाब आज तो सुंदर सड़कें सब सरकार ने बना दी हैं, लेकिन किसी

0: ज़माने में पदयात्रा कितनी कठिन होती थी, और भारत में भी जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो काफ़ी कठिन रास्ता तय करते थे, जंगलों से होके गुजरना पड़ता था। याद करिए श्रवण कुमार की कहानी कि कैसे राजा दशरथ को गलती लगी कि हिरण पानी पी रहा है जबकि वह अपने लोटे में पानी भर रहा था। इतना घना जंगल और उन्होंने शब्द भेदी बाण मार दिया जो श्रवण कुमार को जाके लग गया। तो श्रोताओं, अष्टावक्र बड़ी ही कठिनाई उसको झेलनी पड़ी होगी, लेकिन इन सब कठिनाइयों के लिए महर्षि उद्दालक ने कहा कि देखो बहुत दिक्कत होगी, तुम श्वेत केतु को साथ ले जाओ, कहीं कुछ ज़रूरत है तो मदद मिल जाएगी तुम्हें। तो अंततः ये निर्णय हुआ कि श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों मिलकर मिथिला जाएंगे। तो बढ़ते हैं थोड़ी देर में आगे।
1: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए, साहित्य दर्पण।

तो श्रोताओं आगे बढ़ते हैं अष्टावक्र को लेकर। अब अष्टावक्र बहुत ज्ञानी था, राजा जनक के मिथिला शहर तक पहुंच गया और उसके साथ श्वेत केतु भी था। आज अष्टावक्र को अपने पिता कहोड का एक तरह से उसको प्रतिशोध लेना था और उसे वरुण पुत्र जो बंदी था और क्रूर था उसे सबक भी सिखाना था। अब महल के प्रवेश द्वार तक तो पहुँच गया, अंदर यज्ञ चल रहा था। जब द्वारपालों ने उसको देखा तो कहा, अरे मूर्ख, ये तो आठ जगह से टेढ़ा मेढ़ा बालक, जानता नहीं अंदर यज्ञ चल रहा है, तुझे भिक्षा चाहिए तो बाद में लेना, क्या करने आया है तू यहाँ। अष्टावक्र का शरीर सबके लिए कौतुक का विषय था और इतने थके हुए थे दोनों कि चेहरा भी जैसे इतना धूल मिट्टी जंगल से आ रहे थे और क्रोध ऊपर से और उनको आ रहा था। तो द्वारपाल तो उसको देख देख के हंसने लगे और कहने लगे, तू यहाँ क्या करने आया है, यहाँ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं, तेरा यहाँ पर क्या काम है। तभी राजा जनक अपने दरबारियों के साथ वहाँ से गुजरे और उन्होंने कहा कि इतना मजाक इतना उपहास किसका कर रहे हैं, इतनी अशांति क्यों है। सभी दरबारी हंस पड़े जो उनके साथ थे जब उन्होंने अष्टावक्र को देखा। अष्टावक्र बड़ा तेजस्वी बालक था, उसने क्रोध में कहा, महाराज मैंने सुना कि आपके दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान रहते हैं, किंतु यहाँ तो मुझे सारे मूर्ख नज़र आते हैं, तभी तो वे मेरे ज्ञान को ना परख कर केवल मेरे शरीर के दर्शन तक ही सीमित हैं। जो केवल देह को देखकर देह भाव से निर्णय लेता है कि कोई कैसा है, वो क्या जानेगा वो कितना ज्ञानी है, लगता है सभी मूर्ख हैं। अष्टावक्र की ओजस्वी वाणी, क्योंकि बहुत ज्ञानी था, बहुत जानकार था और संयमी व्यक्ति था, राजा जनक हैरान हो गए। हम सभी जानते हैं राजा जनक राजर्षि थे, वे तो भांप जाते थे सामने व्यक्ति कैसा है। उन्होंने माफ़ी मांगी, हे ब्राह्मण देवता, बालक के वेश में निश्चय ही आप कोई सिद्ध पुरुष हैं, मेरे सेवकों से गलती हुई है, उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्षमा करें, लेकिन नियम अनुसार बिना ज्ञान परीक्षण के आपको यज्ञ मंडप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, अतः आप हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राजा जनक को अष्टावक्र ने कहा कि वह हर प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार है। राजा जनक ने कहा, सोते समय कौन आंखें बंद नहीं करता, किस में जन्म के पश्चात गति नहीं होती, किसके पास हृदय नहीं होता, कौन वेग से आगे बढ़ता है। अष्टावक्र ने तत्काल उत्तर दिया, हे राजन, सोते समय मछली आंख बंद नहीं करती, जन्म के पश्चात अंडे में गति नहीं होती, पाषाण मतलब पत्थर के पास हृदय नहीं होता और नदी सदा वेग से आगे बढ़ती है। अष्टावक्र की प्रतिउत्पन्न मति देखकर कि इधर उन्होंने चार प्रश्न किए और उधर उत्तर तैयार थे, राजा जनक तो हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, इतना छोटा बालक इतना गहरा ज्ञान, उन्होंने तो कठिन प्रश्न पूछे थे और अष्टावक्र ने सहज उत्तर दे दीजिए। वे तो उसकी विद्वत्ता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने सभी द्वारपालों को कहा कि उनको ससम्मान यज्ञ मंडप में ले जाकर

0: बिठाया जाए। अनुमति पाते ही अष्टावक्र के पैरों में मानो गति आ गई। उसने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया और श्वेत केतु भी पीछे पीछे आया। दो बालकों को यज्ञ मंडप में प्रवेश करता देख सभी लोग हैरान हो रहे थे कि ये दो बालक यहाँ कहाँ से आ गए हैं। अष्टावक्र पुनः ओजवाणी में बोले, इस मंडप में वरुण पुत्र बंदी कौन है? सामने आए, मैं उसे शास्त्रार्थ के लिए ललकारता हूँ। उसकी ललकार और चुनौती सुनकर वरुण पुत्र जो बंदी वरुण पुत्र था ये खड़ा हो गया। गौर वर्ण, तन पर रेशमी वस्त्र, सिर पर मुकुट और बहुत तेजस्वी बालक क्रोध में बोला, अविनयी बालक, लगता है शरीर की तरह तेरा मस्तिष्क भी टेढ़ा मेढ़ा है। विद्वानों के साथ भला इस तरह से बात की जाती है? क्या तेरे पिता ने तुझे यही संस्कार दिए हैं? अष्टावक्र को तो मौका मिल गया। उसने कहा, मैं ऋषि कहोड़ का पुत्र हूँ और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता हूँ। आज शास्त्रार्थ में तुझे पराजित कर और समुद्र में डुबोकर मैं अपनी माँ के कष्टों को दूर करूँगा। उद्दंड बालक, लगता है तुझे भी अपने पिता के पास जाने की जल्दी है। अगर तुझे अपने ज्ञान पर इतना भरोसा है तो मैं तेरे सम्मुख शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत हूँ। दोनों आमने सामने बैठ गए। विद्वानों की भीड़ हैरान होकर देखने लगी कि ये छोटा बालक आठ जगह से टेढ़ा मेढ़ा लेकिन ओज से भरा हुआ। वरुण पुत्र बंदी ने प्रश्न किया, जीवन और मृत्यु में कौन अधिक शक्तिशाली है? अष्टावक्र बोले, जीवन, क्योंकि उसे तमाम कष्ट और आपदाएं सहनी पड़ती हैं। मृत्यु तो एक बार हो जाती है, उसके बाद शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन जीवन अधिक शक्तिशाली है क्योंकि जीवन के पास चुनौतियों को सहने के लिए समय और शक्ति इस्तेमाल होती है। अच्छा बताओ, संख्या में कौन अधिक है, जीवित या मृत? बड़ा ही अजीब प्रश्न था। कौन काउंट कर सकता है कि संसार में जीने वाले लोग ज्यादा हैं कि मरे हुए लोगों की संख्या ज्यादा है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जीवित, क्योंकि मृत हमारे सामने उपस्थित नहीं है, आप उनको गिन नहीं सकते, लेकिन जीवित को आप गिन सकते हैं। वरुण पुत्र बंदी ने कहा, सबसे अधिक जीव कहाँ उत्पन्न होते हैं, भूमि पर अथवा समुद्र में? भूमि पर, क्योंकि समुद्र भूमि का ही एक हिस्सा है, अष्टावक्र ने उत्तर दिया। पहले दिन बना या रात, वरुण पुत्र ने पूछा। दिन, एक दिन पहले बना। मनुष्य ईश्वर कैसे बन सकता है? ऐसे कार्य करके जो मनुष्य के लिए संभव ना हो। तो श्रोताओं, वरुण पुत्र लगातार प्रश्न पूछ रहा था और अष्टावक्र एक पर एक उसे उत्तर दिए जा रहे थे। विद्वानों का समूह अष्टावक्र की प्रतिभा देखकर हैरान रह गया। इतना त्वरित गति से इतनी जल्दी और सटीक उत्तर वह दे रहा था। अब वरुण पुत्र को लगा कि नहीं, वह इस बालक से हार जाएगा। इस बालक के पास बड़े सही उत्तर हैं। अब उसकी जीभ थोड़ी सी लड़खड़ाने लगी और इतना घबरा गया कि अब नए प्रश्न नहीं बना पा रहा था। और फिर उसने एक श्लोक बोला और इस श्लोक को सुनते हैं इसके बाद।
1: सीख का सदा स्वागत होता है। साहित्य में छुपा गुड़ रहस्य होता है, क्योंकि साहित्य सबका आईना होता है। साहित्य दर्पण, ये साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम लेकर आ रही हैं

0: श्रोताओं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको हमारे पुराणों में से कौन सा पात्र सबसे अधिक प्रभावित करता आप उसके बारे में बता सकते हैं। 4028085 पर जुड़ सकते हैं। हम आज चर्चा कर रहे हैं अष्टावक्र की। उद्दालक गुरु का शिष्य था वे और कडोह का पुत्र था। अब जब शास्त्रार्थ करने लगा तो यहाँ पर वरुण पुत्र जो बंदी है वह थोड़ा सा लड़खड़ाने लग गया। अंत में उसने कहा, 13 की तिथि उत्तम बताई गई है तथा यह पृथ्वी 13 द्वीपों से युक्त है, इसको पूरा करो। अष्टावक्र ने फौरन उत्तर दिया, त्रयोदशा, तात्पर्य यह है कि केशी नाम के दानव ने भगवान विष्णु के साथ 13 दिनों तक युद्ध किया था और वेदों के अति विशिष्ट छंद 13 अक्षरों से युक्त हैं। अब तो बंदी मौन हो गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं और क्या प्रश्न पूछूं। वहां बैठा उपस्थित विद्वानों का समूह तो वाह वाह कर उठा और राजा जनक तो खड़े हो गए, जिसे कहते हैं स्टैंडिंग ओवेशन। ब्राह्मण देवता, आप बालक होकर इतने विद्वान हैं, ऐसी विद्वत्ता मैंने कहीं नहीं देखी न कहीं सुनी है। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। राजा जनक की प्रशंसा के शब्द सुनकर अष्टावक्र ने कहा, राजन, मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि इस दुष्ट को पराजित कर समुद्र में ज़रूर डुबोऊंगा और इस प्रकार अपने पिता के मृत्यु का बदला लूँगा, अतः मुझे अपने वचन का पालन करने की अनुमति दें। खैर, इस अनुमति से पहले हम एक श्रोता को लेते हैं और देखते हैं वे हमें क्या कहना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: जी कहिए
1: जी। हाँ, मैं मिसेस सिंह
0: जी
1: काफेबोन से। आप कैसे हैं? कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। थोड़ा बहुत बीमार से चल रहे हैं,
0: मौसम ऐसा है ना जी।
1: मौसम तो ऐसा ही है, मौसम से सब खराब हो जाते हैं। और क्या कहेंगे, वो अपने भी कथा सुनाया विष्णु भगवान का ना, वो छोटे से बच्चे के लिए।
0: जी जी, अष्टावक्र मुनि।
1: छोटे बच्चे में कितनी
0: ज्ञान
1: ताकत होते है ना, ज्ञान ताकत उसके करने जो होते हैं, उसके ताकत से सब कुछ धरती पर चले आते हैं। तो इसीलिए भगवान विष्णु भी चले आते हैं धरती पर।
0: बहुत धन्यवाद
1: हम लोगों के, क्योंकि वो कैसे कैसे उसको स्वीकार नहीं करेंगे।
0: हाँ, भक्ति को स्वीकार करते हैं।
1: भक्ति को, उसका भक्ति का, उसका जो

0: है, छोटे से बच्चे क्या उससे बड़े, उससे बड़े उस, तो वो जान जाते हैं वो उसका बच्चे है, ऐसा है ना। तो विष्णु भगवान सभी को स्वीकार कर लेते हैं, उससे सभी को माफी मिल जाती
1: बहुत
0: है
1: धन्यवाद,
0: आपके
1: बहुत
0: वजह
1: बहुत
0: से भी। ठीक
1: धन्यवाद।
0: है, ओके ठीक है,
1: ओके जी,
0: बाय
1: शुभ
0: बाय।
1: संध्या, शुभ संध्या। बहुत सुंदर आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, राजा जनक को उन्होंने कहा कि मैं केवल शास्त्रार्थ में उसको परास्त करने नहीं आया था, और ना केवल अपनी विजय का डंका बजाने आया था, मुझे तो अपने वतन का पालन करना है जो मैं अपनी माँ को देकर आया था। इससे पहले कि राजा जनक कुछ कहते, वरुण पुत्र बंदी सामने आ गया। मैं इसके लिए प्रस्तुत हूँ राजन, किंतु क्या आप लोग यह नहीं जानना चाहेंगे कि मैं विद्वानों को पराजित करके समुद्र में क्यों डुबोता था? सारी सभा उत्सुक हो गई, इसका क्या कारण हो सकता है? उसने कहा, राजन, यहाँ के समान वरुण लोक में भी एक यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा था। मेरे पिता को अनुष्ठान के लिए विद्वानों की आवश्यकता थी, अतः मैं विद्वानों को पराजित कर उन्हें समुद्र में डुबो देता था, किंतु अब उनका यज्ञ पूर्ण हो गया है, शीघ्र ही सारे विद्वान सकुशल वापस लौट आएंगे। आपको पता ही है वरुण देव जल का देवता है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं डुबोता था कि उनकी मृत्यु हो जाए, यद्यपि जो बहुत विद्वान थे मैं उनको अपने पिता के यज्ञ में भेजता था। इतना कहना था कि अष्टावक्र के पिता कहोड सहित सारे विद्वान वहाँ पर उपस्थित हो गए। पिता ने पुत्र को पहचाना, दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। जब उन्हें सारी बातें पता चली तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो श्रोताओं, पिता और पुत्र का यह अद्भुत मिलन देखकर सबकी आंखें भर गईं। वास्तव में ज्ञानियों की सभी जगह इज्जत होती है। श्रोताओं, जो ज्ञान है ना, वो आप छोटे हों बड़े हों, लेकिन एक बात निश्चित है कि गर्भकाल से जिसको ज्ञान विशेष मिल जाए उसके तो कहने ही क्या है।
2: सीख का सदा स्वागत होता है। साहित्य में छुपा गुड़ रहस्य होता है, क्योंकि साहित्य सबका आईना होता है। साहित्य दर्पण, ये साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम लेकर आ रही हैं

और श्रोताओं, पिता और पुत्र का ये मिलन पूरी सभा ने देखा और राजा जनक तो चाहते थे, वे बहुत खुश हुए क्योंकि वे अष्टावक्र के ज्ञान के कायल हो चुके थे। उन्हें लगा कि इतनी छोटी उम्र में ये बालक इतना ज्ञानी, क्योंकि राजा जनक स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी थे और इसीलिए उनको जनक जनक कहते थे। और सचमुच वे मिथिला नरेश थे और सबसे बड़ी बात थी कि वे राजर्षि थे। उनके जीवन की भी एक कथा आती है कि उन्होंने एक ऋषि उनके यहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि महाराज, आपको लोग राजर्षि कहते हैं और आप इतने बड़े राज्य को संभालते हैं, सब सुख सुविधा है, हम इतनी तपस्या करते हैं तो भी केवल ऋषि हैं। तो राजा जनक ने कहा कि कल सुबह एक बार आ जाइएगा। तो वे कल सुबह आए, राजा जनक ने उनको एक थाली दी, थारी जिसे आप कहते हैं, उसमें पानी भरा हुआ था। और राजा जनक ने कहा, इसको सिर पर रखिए, अगर एक बूंद भी पानी गिरा तो आपके साथ दो जल्लाद जा रहे हैं, वे आपकी गर्दन काट डालेंगे। आप जाके पूरा मेरा महल देख कर आइए, पूरा मेरा खजाना देख कर आइए, सब देख कर आइए कि कितना है यहाँ मिथिला नरेश में, मिथिला में। तो ऋषि तैयार हो गए, उनको लगा अच्छा है, मैं और भी सब देखूँगा यहाँ पर क्या क्या होता है। और वो थाली उनके सिर पर रखी गई, उसमें पानी था और दो जल्लाद तलवार हाथ में लिए उनके साथ चल रहे थे। शाम को ऋषि वापस पहुंचे तो राजा जनक ने पूछा, महाराज दरबार में क्या क्या देखा आपने, कुछ तो बताइए। ऋषि इतने नाराज हुए, उन्होंने कहा, आप समझते क्या हैं, आपने दो जल्लाद मेरे साथ लगा दिए और आप मुझे कहते हैं कि वहाँ महल में क्या था। मैं पानी को देखता कि उसमें से एक बूंद ना टपके, या मैं आपके महल और खजानों को देखता। राजा जनक मुस्कुरा दिए, बोले, ऋषिवर ठीक मेरी यही स्थिति है, मैं अपने परोपकार के कार्यों में ऐसे ही दृष्टि रखता हूँ और जो राजकोष में धन आता है वह सब प्रजा के हित के लिए लगाता हूँ, शायद इसीलिए लोग मुझे राजर्षि कहते हैं। तो श्रोताओं, राजा जनक स्वयं भी बहुत ही पहुँचे हुए राजर्षि थे। अब जिस समय कहोड़ अष्टावक्र और श्वेत केतु को लेकर वापिस जाने लगे, राजा जनक ने बड़ा सम्मान किया और तीनों जब लौट रहे थे तो रास्ते में समंगा नदी पड़ी। पिता ने कहा, पुत्र तुझे शाप देकर मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तू इस नदी में प्रवेश कर जा बेटा। अष्टावक्र ने पिता की आज्ञा मानी, नदी में प्रवेश किया, अरे जादू ही हो गया, अष्टावक्र एकदम से स्वस्थ और सुडौल हो गए। अष्टावक्र भी प्रसन्न और उनके पिता तो पूछे ही मत, कहोड़ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और श्वेत केतु ने अपने मित्र को गले से लगा लिया और तीनों आज अपने आश्रम में वापस लौट रहे थे। अष्टावक्र अपने पिता को साथ लेकर जा रहे थे और ये निश्चित था कि उनके पिता जब उनके साथ आएंगे तो माँ कितनी खुश होगी। बस इसी भाव से अष्टावक्र, श्वेत केतु और ऋषि कहोड़ लौट रहे थे। तो श्रोताओं, ज्ञान व्यक्ति की रक्षा सब जगह करता है। यदि आपके भीतर ज्ञान है, समझ है, गहराई है, तो वह सभी को रास्ता दिखाता है और जीवन की नई राहों को खोलता भी है। तो श्रोताओं, इसी के साथ अष्टावक्र की इस कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं और आप सबसे अनुमति लेना चाहूँगी। नमस्कार और शुभ संध्या। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और कथा कहानी के साथ, जिसमें जीवन का कोई गहरा मूल्य हो, जो हमें जीवन की राह दिखाती हो, एक दिए की तरह जलती हुई वह चरित्र या उसका प्रकाश या उसका वर्णन हो, जो हमें सोचने के लिए विवश कर सके। तो श्रोताओं, बस इसी के साथ अलका धनपत को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: जो चले समय के साथ सफलता आए उन्हीं के हाथ। 5:01
2: खेल खिलाड़ी इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।

खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी खिलाड़ी

प्यारे प्यारे श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। आप तो हमारे श्रोता प्यारे हैं, बड़े ही लाजवाब। शनिवार की है मन भावन शाम और खेल खिलाड़ी प्रोग्राम, बस बड़े प्यार से करना है आप ही लोगों के नाम। और खेल खिलाड़ी प्रोग्राम जो दो भागों में विभाजित होता है, 5:30 तक सिनेमा दिल से, जहां पर फिल्मी गानों के साथ हम प्रश्न भी पूछेंगे आपसे, और दूसरे भाग में मेरा सवाल तेरा कमाल, जहां पर स्पोर्ट्स, फुटबॉल और जनरल नॉलेज पर हम प्रश्न अवश्य पूछेंगे गानों के साथ। चलिए, आज का जो विषय है बड़ा ही रोमांटिक सा विषय है, वो 90s का जमाना, वो फिल्मों का खजाना। जी हाँ, वो 90s का जमाना, वो फिल्मों का खजाना। और हम हर एक साल में एक फिल्म से गाने से लिए गए गाने चलाएंगे, उस पर हम प्रश्न करेंगे, और जो फिल्म ज़्यादा चली उस साल में, स्टार ऑफ द ईयर्स जो हैं, जो कलाकार उस साल में, उनकी जो फिल्में बड़ी चली बड़ी बॉक्स ऑफिस पर, उन पर हम बातें करेंगे और आपसे प्रश्न करेंगे। तो चलिए, पहला जो गाना हम चलाएंगे आपके लिए 1990 में, यानी 1990 में जो फिल्म बहुत सबसे ज़्यादा जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाई थी, वो थी दिल। जी हाँ, गाना तो चल पड़ा दिल फिल्म, और उस साल में आमिर खान और माधुरी दीक्षित स्टार ऑफ द ईयर घोषित हुए। बेस्ट एक्टर के रूप में सनी देओल घायल फिल्म से लिया गया, और माधुरी दीक्षित बेस्ट एक्ट्रेस, लेकिन स्टार ऑफ द ईयर जिन लोगों की फिल्में सबसे ज़्यादा चली, आमिर खान और माधुरी दीक्षित। तो उसी साल में एक और फिल्म आई थी, आमिर खान और माधुरी दीक्षित पर फिल्म आया गया। ये तो फिल्म दिल का गाना है, तो हमें आपको हमें बताना पड़ेगा 4028070 85 पर, 4298085 पर प्लीज़ आप लोग हमें बताइए कि आमिर खान और माधुरी दीक्षित की और फिल्म रिलीज हुई थी 1990 में, और उस फिल्म का जो अक्षर है वो डी से शुरू होता है। 4028085 पर प्लीज़ आप लोग जवाब दें।

जी हाँ, 90s के ऐसे ऐसे गाने सुनेंगे आप लोग तो दिल को कैसे चैन आएगा, दिल को करार कैसे आएगा, नींद तो उड़ ही जाएगी। इन गानों में जी भर के खोने को मन करता है। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। हमने आपसे एक बहुत ही आसान सा प्रश्न किया था, इस फिल्म में तो आमिर खान और माधुरी दीक्षित नजर आए थे, इस फिल्म के अतिरिक्त एक और फिल्म इन्हीं दोनों कलाकारों पर फिल्माया गया था, 1990 ही में रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम आपको बताना था हमें, और बहुत ही आसान सा प्रश्न था और सही जवाब दिया फुलवंती जी बाकवा से, आशा जी कॉटेज से, इंदिरा जी मौदालबिया से, अनिता जी लालजी मौदालबिया से ही, नलिनी जी कटरबोन से और शोभा जी वाकवा से। और आज खुशी की बात है कि आशा जी का जन्मदिवस है, हम आपको कहेंगे पूरी एमबीसी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जन्मदिन के अवसर पर, ईश्वर आपकी सदैव रक्षा करें, आपकी दामन में ढेर सारी खुशियां भर दें, और आपको याद दिला दें कि फिल्म का नाम है ओ जाने जाना जरा रुक जाना, तूने मुझे जाना नहीं, दीवाना मुझसा नहीं। यह फिल्म का नाम है, आमिर खान और माधुरी दीक्षित उस फिल्म में नजर आए थे, और आपको

0: पुरस्कृत होंगे। अगर आप लोग एमबीसी के साथ खेलेंगे तो आपको हम याद दिला दें कि एक बहुत ही बढ़िया गेम शो हो रहा है जहां पर आपको दो टिकट्स प्राप्त होंगे, दो लोगों को दो टिकट्स प्राप्त होंगे। आप लोग फर्स्ट एवर भोजपुरी कॉन्सर्ट जो होने वाला है सैटरडे 26 सितंबर 2026 को, 26 सितंबर 2026 को ब्लिस ब्लैंकेट हॉल आसेनाल में, ये बहुत ही बड़ा सा भोजपुरी धमाका होने वाला है वहाँ पर। और आप लोग तैयार हो जाए वहाँ पर एक पूरी रात्रि बिताने को, संगीत के साथ नृत्य और मनोरंजन, इससे और ज़्यादा आपको क्या चाहिए। जलसा के रात इस कॉन्सर्ट का नाम है और आप लोग हमारे साथ खेल सकते हैं और दो टिकट्स जीत सकते हैं जहाँ पर लाइव परफॉर्मेंसेस होंगे। रंभा राम तोहल जी, नीरज गुप्त, मधु, किशोर खिमिया, कुणाल हिरीलाल, रोशन सदा सिंह और कृषि मोनिक के साथ आप लोग यहाँ पर आइए। और डीजे भी वहाँ पर उपस्थित होंगे, नेकी, स्पाइकी वी, डीजे वकील, डीजे अभी और डीजे अनी साथ साथ देंगे। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम होने वाला है। और दो टिकट्स जीतने के लिए आपको हमें फ़ोन करके जवाब देने पड़ेंगे हमारे प्रश्नों के, और यहाँ पर तो वो लोग जवाब दे चुके हैं, उनके नाम विनर लिस्ट में तो अभी से ही शामिल हो चुके हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए और गाने चलाएंगे 90s से लेकर, और प्रश्न भी तो पूछेंगे। चलिए दूसरा गाना, 1991 में जो फिल्म सबसे ज्यादा चली, जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी उस साल की, तो वो थी फिल्म साजन।
1: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस।
0: और साजन फिल्म में नजर आए थे सलमान खान, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त, और उस साल में स्टार ऑफ द ईयर थे सलमान खान और माधुरी दीक्षित। तो हमें आप बताइए कि सलमान, माधुरी और संजय दत्त के इस फिल्म में उनके नाम क्या थे, फिल्मी नाम संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी के क्या थे। फिल्म साजन में 4028085 4028085।

देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, और प्यार से सुखी हो जाता है ये संसार। माधुरी दीक्षित, सलमान खान और संजय दत्त के नाम क्या थे फिल्म साजन में? और सही जवाब है, सलमान का नाम आकाश, माधुरी दीक्षित का नाम पूजा और संजय दत्त का नाम अमन। और एक पेन नेम भी था जो गजल लिखते थे, शायर लिखते थे, उसका नाम था सागर। सही जवाब दिया शोभा जी वाकवा से, अनीता जी मदाबिया से, लिस्कालिया से अली जनाब और रॉसबेल से उमा जी। अब देखना चाहेंगे कि कौन से दो श्रोता को दो एंट्री टिकट्स प्राप्त होंगे जलसा की रात प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। चलिए, 90s का जमाना, फिल्मों का खजाना। 1990 को छोड़कर, 1991 को छोड़कर अब हम 1992 की ओर बढ़ेंगे, 1992 में। और उस साल में ऋषि कपूर और दिव्या भारती ने क्या खूब गुल खिलाए थे बॉक्स ऑफिस पर। ऋषि कपूर के फिल्म दीवाना, बोल राधा बोल, हनीमून, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा चली थी। और दिव्या भारती के तो बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी और ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। तो चलिए, दीवाना फिल्म से लिया गया ये गाना सुनिए, जिसमें दिव्या भारती के साथ ऋषि कपूर नजर आए थे। और आपको हमें बताना पड़ेगा 4028085 पर कि दिव्या भारती की फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म जो 1992 ही में रिलीज हुई थी वो कौन सी थी। वो कौन सी पहली फिल्म थी दिव्या भारती की जो 1992 ही में रिलीज हुई थी दीवाना की तरह। 4028085 पर आप लोग प्लीज हमें जवाब दें।

सचमुच श्रोतागण, हम भी आपसे बेहद प्यार करते हैं। इतनी चाहत से आप लोग प्रोग्राम सुनते हैं और भाग भी लेते हैं, सही जवाब देते हैं। इसके लिए जितना मैं

धन्यवाद करूंगा उतना ही होगा कम। हमने सवाल किया था कि दिव्या भारती की फिल्म जो सबसे पहले रिलीज हुई थी 1992 में, बॉलीवुड फिल्म, वो कौन सी थी, और बहुत ही आसान सा प्रश्न था, और ये फिल्म थी सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, विश्वात्मा फिल्म का नाम है। सही जवाब दिया विद्या जी लागोजा से, अनिता जी मौदालबिया से, शोभा जी वाकवा से, इंदिरा जी मौदालबिया से, अली साहब लिस्कालिये से, नलिनी बोयरू जी कटरबोन से, और धीरज भाई ट्रियोले से। चलिए पहला भाग तो समाप्त हो गया है, ठीक 5:30 हम आपके लिए दूसरा भाग खेल खिलाड़ी प्रोग्राम का शुरू करेंगे हम, और जाते जाते 1993 का एक गाना आपके लिए चलाते हैं। फिल्म का नाम है दर, और उस साल में शाहरुख खान सब पर छा गए थे। दर और बाजीगर ये दोनों फिल्मों में वो नजर आए थे, दिलाशना है फिल्म में भी नजर आए थे, और जूही चावला का क्या कहना, दर, हम है राही प्यार के, लुटेरे, इन सब फिल्मों में वो नजर आई थी, आईना में भी नजर आई थी, और दोनों स्टार्स ऑफ द ईयर घोषित हुए थे। तो ये गाना सुनिए और थोड़ी देर में हम फिर से मिलते हैं।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: शाम के ठीक 5:30 बज गए हैं।
2: खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी।

जी हाँ प्यारे प्यारे श्रोताओं, स्पोर्ट्स लवर्स, म्यूजिक प्रेमियों, खेल खिलाड़ी का दूसरा भाग मेरा सवाल तेरा कमाल, जहां पर सामान्य ज्ञान स्पोर्ट्स और फुटबॉल पर हम बातें करेंगे और प्रश्नों के साथ साथ आप लोग गाने भी सुनेंगे। तो चलिए हम

इस सेगमेंट का शुभ आरंभ करते हैं फुटबॉल के साथ। बेशक और फुटबॉल की जब हम बातें करते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम इंग्लिश प्रीमियर लीग की चर्चा करते हैं। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो फिफ्थ मैच डे था, पांचवा जो जर्नी था, वो कल ही से शुरू हो गया है और झटका लगा चेल्सी को एवे जाकर ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 3-0 से हार गई। ज़ाबी अलोंसो की टीम चेल्सी, जिससे बहुत उम्मीद की जा रही थी कि वो दावेदार चैलेंजर हैं आर्सेनल के, पर ब्रेंटफोर्ड ने क्या खूब पछाड़ा चेल्सी को। और अभी अभी जो मैच खेला जा रहा है, अर्ली किक ऑफ जो हो रहा है, अभी 97th मिनट में टोटेनहम हॉटस्पर और आस्टन विला के बीच में व्हाइट हॉट लेन में स्पर्स होम है और होम मैदान में स्पर्स हार रही है 2-3 के स्कोर से। आस्टन विला की जीत हो रही है 2-3 के स्कोर से। और यहाँ पर जो है असमंजस में पड़ गया है टोटेनहम हॉटस्पर और उसकी हार हो रही है एक बार फिर। देखते हैं कि क्या होने वाला है। और आज की जो मुकाबले हैं वो इस प्रकार है, एवर्टन वर्सेस इप्सविच टाउन, ब्राइटन वर्सेस आर्सेनल। ये एक बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है आज की रात्रि। ब्राइटन बहुत अच्छी तरह से ब्राइट खेल रहा है, लेकिन आर्सेनल भी कुछ कम नहीं खेल रहा है। चैंपियंस होने के नाते हर मुमकिन कोशिश कर रही है ये टीम और जीत पे जीत दर्ज करती जा रही है। और न्यूकासल वर्सेस हल सिटी, न्यूकासल की हार हुई थी लीड्स के खिलाफ। नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस कोवेंट्री सिटी, कल के जो मुकाबले हैं बोर्नमुथ वर्सेस लिवरपूल। बोर्नमुथ जो इराउला की पुरानी टीम है वो खेलने जा रही है लिवरपूल के खिलाफ। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस सन्डरलैंड और लीड्स वर्सेस क्रिस्टल पैलेस और साथ ही साथ फुलहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इंग्लिश प्रीमियर लीग टेबल में देखेंगे तो अभी तक आर्सेनल 100% जीत, 12 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर मैनचेस्टर सिटी इतने ही अंक लिए 12 अंक, लेकिन गोल एवरेज पर अब आर्सेनल आगे चली आई है ये टीम। तीसरे स्थान पर लीड्स यूनाइटेड नहीं बल्कि ब्रेंटफोर्ड आ गई है, बिल्कुल कल के जीत के बल पर ब्रेंटफोर्ड तीसरे स्थान पर, लेकिन ब्रेंटफोर्ड ने एक मैच ज्यादा खेला है। और चौथे स्थान पर लीड्स यूनाइटेड और छठे पांचवें स्थान पर हल सिटी। और देखेंगे तो EFL कप में, EFL कराबाओ कप में लिवरपूल, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी सभी की जीत हुई है, पर अफसोस मैनचेस्टर यूनाइटेड की हार हो गई। होम मैदान में वो हार गई, EFL कराबाओ कप से बाहर हो गई। आपको हमें बताना पड़ेगा 4028085 पर, 4028085 पर। प्लीज़ आप लोग हमें बताइए कि मैनचेस्टर यूनाइटेड किस टीम से हार कर कराबाओ कप से आउट हो गई। 4028085।

जी हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड तन्हा हो गया और फैंस के दिल भी तन्हा हो गए। परंतु एक हार से मायूसी नहीं मिलनी चाहिए आप लोगों को। और बुलंद हौसला होना चाहिए आप लोगों के लिए और आप आगे चलते रहें। बाद में जीत निश्चित हो गया आपके लिए। और हमने आपसे सवाल किया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड EFL कराबाओ कप से बाहर हो गई, लेकिन किस टीम ने उसे निकाल दिया इस कप से? और सही जवाब है ब्राइट फ्यूचर वाली टीम ब्राइटन। 2-0 से हार हो रही थी ब्राइटन की यूनाइटेड के खिलाफ ओल्ड ट्रफोर्ड में, परंतु जाकर पीछे से आए, वार किए, छलांग लगाए और 3-2 के स्कोर से वो ओल्ड ट्रफोर्ड में जीत छीन करके चले गए। और सही जवाब दिया धीरज भाई ट्रियोले से, विजय भाई क्लबित सेबास्तोपोल से, इंदिरा जी मोडालबिया से, आत्मा जी ट्रूडलुस से और रामदत्त भाई वकवा से। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। आपको याद होगा कि 16 सितंबर को यानी 16 सितंबर को इस सप्ताह के दौरान बुधवार का दिन था 16 सितंबर। और यहाँ पर क्या मनाया गया था पूरे विश्व भर में? इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। जी हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये ओजोन जो है एक ऐसा गैस है जो हमें जो सूर्य के जो घातक किरणें हैं उनसे बचाती है। ये किरणें ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायोलेट रेज से हमें बचाती हैं, लेकिन बाद में चलकर देखेंगे तो ये ओजोन लेयर का जो लेयर है वो घटती जा रही है और जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक होती जा रही है। तो इसे हमें बचाना चाहिए और बहुत से कार्य किया जा रहा है हमारी धरती माता को बचाने के लिए सूर्य की किरणों से। तो जैसे ऑक्सीजन का एक केमिकल सिंबल होता है, पानी का भी एक केमिकल सिंबल होता है। ये जो प्रश्न हम पूछ

जा रहे हैं आपसे वो बिल्कुल केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है। और जो प्रश्न वो इस प्रकार है, ऑक्सीजन का केमिकल सिंबल है O2 और पानी का केमिकल सिंबल है H2O, हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल है H, तो ओजोन का केमिकल सिंबल कौन सा है? 4028085 पर हमें बताइए कि ओजोन जो है उसका केमिकल सिंबल क्या है। 4028085 या 102-8085 पर दिमाग के घोड़े लगाकर हमें आप जवाब दें।

जी हाँ, नाना नारे न मत कहें, हाँ हाँ हारे कहें। ओजोन का केमिकल सिंबल कौन सा है? और सही जवाब है O3, यानी ऑक्सीजन के फ्री एटम्स। और सही जवाब दिया कौन? धीरज भाई एक बार फिर ट्रियोले से, देवी जी हाईलैंड से, दिला जी मौलाशो से, श्रविना जी वाकवा से, इंदिरा जी मौदालबिया से, इंद्रानी जी लिस्कालिये से, नंदलाल भाई मौदस्थालिया से और शोभा जी वाकवा से। और हम कहेंगे अपने साथियों को कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग रुचि बढ़ा रहे हैं खेल खिलाड़ी प्रोग्राम के प्रति। और कोई कोई तो मुझे बता रहा है कि ये प्रोग्राम दिन ब दिन प्रसिद्ध होता जा रहा है, क्योंकि इससे उन लोगों को मौका दिया जाता है कि वो दिमागी कसरत करें और अपने आप को फिट रखें इस तनावपूर्ण जीवन में। बहुत धन्यवाद इन मीठे शब्दों के लिए जी। चलिए हम प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं एक अद्भुत खेल की ओर। और उस अद्भुत खेल का नाम आपको हमें बताना पड़ेगा।

हाँ जी, उस अद्भुत खेल का नाम आपको हमें बताना पड़ेगा, जहां पर एक मेज होता है, एक टेबल होता है और बहुत से गेंद होते हैं उसमें, बहुत से क्या कहें, बॉल्स होते हैं, अनेक प्रकार के बॉल्स, रंग बहुत ज्यादा। वो एक छड़ी से खेला जाता है, एक क्यू से खेला जाता है, और जिस बॉल पर सबसे पहले वार होता है वो है व्हाइट बॉल, यानी सफेद रंग का बॉल। और उस टेबल पर आप देखेंगे कि 15 जो बॉल्स हैं वो लाल रंग के हैं, एक सफेद रंग का बॉल है और एक पीला बॉल, एक हरा बॉल, एक मटियाले रंग का यानी ब्राउन बॉल, एक नीले रंग का बॉल, एक गुलाबी रंग का बॉल और एक काले रंग का बॉल। अब आपको पता चल गया कि ये कौन सा खेल है। बड़ा आसान सा है। तो उस खेल का नाम क्या है जिसमें अनेकों रंग के बॉल्स टेबल पर नजर आते हैं और खिलाड़ी वो क्यू से खेलता है, एक छड़ी से खेलता है, और सभी रंगों को वो एक गड्ढे में डालता है, एक होल में, जैसे कैरम खेला जाता है वैसे ही ये खेला जाता है, और ये खड़े होकर खेला जाता है। 4028085 पर आप लोग प्लीज जवाब दें कि ये कौन सा खेल है जहां पर एक वाइट बॉल है, 15 रेड बॉल्स हैं, एक येलो, एक ग्रीन, एक ब्राउन, एक ब्लू, एक पिंक और एक ब्लैक रंग का बॉल है, और जो ब्लैक रंग का बॉल है उसका जो पॉइंट्स है, उसका जो वैल्यू है सबसे ज्यादा है। 4028085 पर जवाब देकर अपनी बेचैनियां आपको मिटानी पड़ेगी।

जी हाँ, हमने आपसे जानना चाहा कि उस खेल का नाम क्या है जो एक मेज पर खेला जाता है, एक टेबल पर, एक क्यू जो लकड़ी से बना होता है और बहुत सारे बॉल्स होते हैं उस टेबल पर, व्हाइट, ब्लैक, पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ब्राउन। और वो खेल कौन सा है? बहुत से लोगों ने कहा बिलियर्ड। थोड़ा सा अंतर है, सही जवाब है स्नूकर। जी हाँ, स्नूकर वो सही जवाब है। और सही जवाब दिया ईश्वर लाल जी जोपा से, धीरज भाई ट्रिलोए से, और साथ ही साथ सुरेखा जी मेनेल से, और देवी जी हाईलैंड से, अली साहब लिस्कालिए से, और दीला जी मौलाशो से, उषा जी कटुबोन से, नीला जी वाकवा से, नन्नलाल जी मौदस्थालिया से, शोभा जी वाकवा से, और अनीता जी मॉडल बिया से। चलिए एक अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए, और बड़ा आसान सा प्रश्न है, ज्योग्राफी पर आधारित। किस देश की राजधानी का नाम है? बहुत आसान है, आप तुरंत जवाब दे देंगे। किस देश की राजधानी का नाम है? जी हाँ, किस देश की राजधानी का नाम है? मोंटेविडियो। 4028085 पर जवाब दीजिए कि किस देश की राजधानी का नाम है मोंटेविडियो। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए।

सांवरिया, और सबसे जल्दी जिसने जवाब दिया है वो है दिला भाई, और सही जवाब है युरुग्वे। और युरुग्वे ही सही जवाब है। थोड़ी देर में हम लकी ड्रॉ करेंगे और आपको बताएंगे कि किसकी जीत हुई है जलसा के रात बा, जो ब्लिस ब्लैंकेट हॉल में ये कंसर्ट होने वाली है, फर्स्ट एवर भोजपुरी कंसर्ट इन मॉरिशस आर्सेनल में, जहां पर कुणाल हिरीलाल जी के साथ किशोर केम्या, नीरज गुप्त मधु, रंभा राम तोहल जी, रोशन सदा सिंह और कृषि मोनिक रहेंगे, और डीजे की भरमार है वहां पर, जिसकी जीत हुई है थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, सांवरिया रे सांवरिया, सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सभी को हम कहेंगे बधाई हो। लेकिन जिन दो नाम मेरे हाथ में अभी हैं, पर्चे निकले हैं, वो सबसे पहले हैं नालिनी जी कटरबोन से, उनको मिलते हैं दो एंट्री टिकट्स, और धीरज बाई ट्रियोले से दोनों को मिलते हैं टिकट्स, टू एंट्री।

टिकट्स फॉर जलसा के रात बा, जो रात्रि के 6 बजे से लेकर रात्रि देर तक जाएगी ये भोजपुरी कंसर्ट आर्सेनल में। तो दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, और आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक 9 से लेकर 3 PM तक यहाँ पर आना है। MBC काउंटर में आपको ये टिकट्स उपलब्ध किए जाएंगे। इसी के साथ समाप्त होता है आज का खेल खिलाड़ी प्रोग्राम। जिन लोगों ने भाग लिया बहुत धन्यवाद, बहुत से लोगों ने ये प्रोग्राम सुना और सराहा भी, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते रहेंगे, और आप लोग वादा करके जाइए कि हमेशा व्यायाम करेंगे और अपने आप को फिट एंड फाइन रखेंगे, तभी तो जीवन में आप करेंगे शाइन। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।

0: खेल खिलाड़ी वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।
1: This is Radio Mauritius.
2: 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius. Radio Mauritius.
3: शाम के 6 बजे है।

नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कल 20 सितंबर को वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया जाएगा। इस संदर्भ में आज मॉरिशस में जीरो डंपिंग अभियान की लॉन्चिंग की गई। मकसद है जनता के बीच जिम्मेदार आदतों को बढ़ावा देना और गैर कानूनी तरीके से कचरा फेंकने यानी इलीगल डंपिंग की समस्या से निपटना। 4 महीने से कम समय में देश में स्टेट एज पेंशन लागू होगा। इस दिशा में समाज सुरक्षा मंत्रालय अपने अफसरों को इस नई धारणा पर सटीक जानकारियां देने के लिए तत्पर है, ताकि वे इस बारे में संभावित पेंशन लाभार्थियों तक उचित जानकारियां पहुंचा सके। ट्रियोले में कल 60 वर्षीय एक महिला सरस्वती मुथिया का शव एक खेत में पाया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला कि उसका गला घोंटकर उसे मारा गया है। इस मामले में पुलिस सब पहलुओं पर बात

0: बारीकी से जांच कर रही है। विदेश में 2030 एजेंडा की समय सीमा ढलने में मात्र 4 साल बचे हैं और संयुक्त राष्ट्र का जायजा स्पष्ट है, दुनिया के देश निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जरूरी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे। अरब समाचार विस्तार से। कल 20 सितंबर को क्लीन अप डे मनाया जाएगा। इस संदर्भ में आज मॉरीशस में जीरो डंपिंग अभियान की लॉन्चिंग की गई। इसका मकसद है जनता के बीच जिम्मेदार आदतों को बढ़ावा देना और गैर कानूनी तरीके से कचरा फेंकने यानी इलीगल डंपिंग की समस्या से निपटना। आज पॉम्पलमस में इस अभियान की लॉन्चिंग की गई। उपस्थित हुए पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान ने इस बात पर बल दिया कि साफ सफाई का संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और इस साल की शुरुआत से अब तक पर्यावरण पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से कूड़ा फेंकने से जुड़ी लगभग 1000 शिकायतें दर्ज की है। और 4 महीने से कम समय में देश में स्टेट एज पेंशन लागू होगा। इस दिशा में समाज सुरक्षा मंत्रालय अपने अफसरों को इस नई धारणा पर सटीक जानकारियां देने के लिए तत्पर है ताकि वे इस बारे में संभावित पेंशन लाभार्थियों तक उचित जानकारियां पहुंचा सके। पेंशन सुधार से जुड़ी सुविधाओं के बारे में मंत्रालय के अफसरों को सचेत कराने के वास्ते आज पांतोपिमा में एक प्रथम ग्रुप के लिए एक प्रशिक्षण सत्र लगाया गया। उपस्थित हुए जूनियर मिनिस्टर कुगान पगापन ने बताया कि मंत्रालय अगले जनवरी महीने में लगभग 10,000 आवेदनों पर काम करने के लिए जरूरी तैयारी कर रही है। ट्रियली में कल एक हादसा पेश आया। 60 वर्षीय एक महिला सरस्वती मुचिया का शव एक खेत में पाया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला कि उसका गला घोंटकर उसे मारा गया है। इस मामले में पुलिस सब पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। ऐसे समझा जा रहा है कि ये चोरी का एक मामला था जिसने हिंसक सूरत ली। गीता सुनारायण को सुनते हैं।
1: मुच्चा परिवार में गम और हैरानी का माहौल है। 60 साल की सरस्वती मुच्चा जो 2 बच्चों की माँ हैं, उनकी लाश उनके घर से ही कुछ दूर उनके खेत में पाई गई। जांच के शुरुआती तौर पर ये सामने आया है कि उनका गला घोंटा गया था और उनके शरीर पर चोट के कई निशान भी थे।
2: Ça joue là, il n'y a pas de retour de la case. Moi, c'est un téléphone, moi, mais une fin arrive, je disais, maman va encore retourner la case, mais jusqu'à avoir un coup. Mon bras, mon skate, mon allé, mon allé, un coup. Mais moi, mon trouvé, la porte, j'ai déjà ouvert, mais je m'avais pensé, les points. Dans le terrain, quand on arrive à la marche, mon trouvé, il est tombé, et maintenant, à côté, il est tombé là-bas. Mon galopé, mon allé, mon commence à crier, mon maman, m'a levé, mais.
1: जिस टेक्सटाइल कारखाने में सरस्वती मुच्चा काम करती थी उसके बंद होने के बाद उन्होंने खेती बाड़ी का काम शुरू किया। वो हर रोज सुबह जल्दी अपने खेत जाती थी और बाद में थ्रियोली में अपनी उगाई हुई सब्जियां बेचती थी। पुलिस इस जानलेवा हमले की पूरी घटना को समझने की कोशिश कर रही है। जांच में खास तौर से लूट की संभावना देखी जा रही है। महिला के गहने भी तलाश किए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारियों के अनुसार पुलिस की नज़र में एक संदिग्ध व्यक्ति है, उसकी तलाश की जा रही है। इस बीच मुच्चा परिवार कल दोपहर बाद होने वाले अंतिम संस्कार की तैयारियाँ कर रहा है।
0: आपराधिक गतिविधियों से हासिल संपत्ति वापस पाना, गैर कानूनी तरीके से अर्जित संपत्ति जब्त करना या ऐसी संपत्ति के लिए लोगों को जवाबदेह ठहराना जिसका कोई उचित कारण न हो, ये सब जिम्मेदारियां अभी फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आती है। प्रस्तावित सुधार के तहत ये कार्य भावी नेशनल क्राइम एजेंसी को सौंपे जाएंगे। संपत्ति की रिकवरी और बिना स्पष्ट स्रोत वाली संपत्ति से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए एक अलग कानून एसेट रिकवरी एंड अनएक्सप्लेन वेल्थ बिल लागू किया जाएगा। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने जब्त की गई 69 संपत्तियों के ऑक्शन सेल से 33.4 मिलियन रुपये जुटाए थे। अब एफसीसी इस तरह का एक दूसरी कार्रवाई आयोजित कर

0: रहा है आते सोमवार और मंगलवार को रेजवी में लगभग 40 गाड़ियां नीलामी के लिए रखी जाएंगी, जबकि कल रविवार को एक ओपन डे निर्धारित है।
1: पहली नीलामी के बाद फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन जब्त की गई संपत्ति की एक और नीलामी आयोजित कर रही है। FCC से दीपा राम सोहक बताती हैं, करीब 40 गाड़ियां बिक्री के लिए रखी गई हैं, मोटरसाइकिल, लॉरियां और नावें भी हैं। खरीदार बोली लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बोली लगने से लेकर बिक्री पूरी होने तक कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। बिक्री एक इंडिपेंडेंट ऑक्शनर द्वारा की जाती है। बिडिंग के बाद जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे खरीद की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इससे पहले FCC जांच करेगी कि खरीदार का संपत्ति के पूर्व मालिक से कोई संबंध तो नहीं है। 8 अचल संपत्तियां भी बिक्री के लिए हैं। ये प्रक्रिया ओपन बिडिंग के तहत चलेगी। अक्टूबर में ये नीलामी होगी। अपार्टमेंट, जमीन और घर बेचे जाएंगे। 21 सितंबर से फॉर्म उपलब्ध हैं। नीलामी में रखी गई चीजें रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक देखी जा सकती हैं। बोली सोमवार और मंगलवार को सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक लगेगी। पहली नीलामी में 69 चीजें कुल 33.4 मिलियन रुपए में बिकी थी। अब FCC दूसरी नीलामी आयोजित कर रही है।
0: तो जैसे कि हम बता रहे थे, आपराधिक गतिविधियों से हासिल संपत्ति वापस पाना, गैर कानूनी तरीके से अर्जित संपत्ति जब्त करना या ऐसी संपत्ति के लिए लोगों को जवाबदेह ठहराना जिसका कोई उचित कारण न हो, ये सब जिम्मेदारी अभी फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आती है और प्रस्तावित सुधार के तहत ये कार्य भावी नेशनल क्राइम एजेंसी को सौंपे जाएंगे। इस पर आधारित ये रिपोर्ट पेश है।
2: मुख्य तंत्र अब भी नहीं बदला है। ये व्यवस्था 10 मिलियन रुपए या इससे ज्यादा मूल्य की संपत्ति पर लागू होगी और जब्त की गई नकदी के मामले में ये सीमा 2.5 मिलियन रुपए होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व यानी सबूत पेश करने की जिम्मेदारी भी नहीं बदली है। संबंधित व्यक्ति को ही अदालत के सामने ये साबित करना होगा कि उसकी संपत्ति अज्ञात स्रोतों से प्राप्त नहीं हुई है। बिना पूर्व न्यायिक अनुमति के कुछ संपत्तियों को अस्थायी रूप से रोकने की शक्ति भी बरकरार रहेगी। इसके अलावा आज की FCC की तरह नेशनल क्राइम्स एजेंसी किसी ऐसी संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण को रोकने के लिए प्रतिबंध दर्ज करा सकेगी जो अज्ञात स्रोतों से प्राप्त संपत्ति की जाँच के दायरे में हो। तो फिर क्या बदलाव आया है? एक बड़ा बदलाव ये है कि किसी मामले को अदालत के सामने ले जाने के फैसले से संबंधित प्रावधान बदलेंगे। FCC एक्ट के तहत जब आयोग के पास अज्ञात स्रोतों से प्राप्त संपत्ति होने का उचित संदेह होता है तो उसे अदालत में आवेदन करना अनिवार्य है। नई एजेंसी के लिए ये अनिवार्यता नहीं होगी। नई कानून व्यवस्था के तहत घोषित आय की तुलना में असंगत जीवन शैली को स्पष्ट रूप से ऐसा आधार माना जा सकेगा जिसके आधार पर अदालत ये फैसला निकाल सकती है कि संबंधित संपत्ति अवैध गतिविधियों से प्राप्त हुई है। एक और बदलाव अटैचमेंट ऑर्डर से संबंधित नागरिक कार्रवाइयों में है। अब न्यायाधीश संबंधित व्यक्ति को 48 घंटे के भीतर लिखित रूप से ये बताने का आदेश दे सकेंगे कि जब्त किए गए धन और संपत्तियों की प्रकृति क्या है और उनका स्रोत क्या है। नया कानून नेशनल क्राइम्स एजेंसी को कुछ संपत्तियों को अपने संचालन के लिए अपने पास रखने या उन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों को उनके औपचारिक कार्यों में प्रयोग के लिए हस्तांतरित करने की अनुमति भी देता है। इसके विपरीत FCC एक्ट के तहत ऐसी संपत्तियों को बेचना आवश्यक होता है।
0: राष्ट्रसभा में क्रियोल मॉरिशियन के इस्तेमाल को लेकर काम जारी है। जनता और संबद्ध साझेदार मंगलवार 22 सितंबर तक अपने प्रस्ताव और सुझाव इस अध्ययन की जिम्मेदार सिलेक्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रसभा के स्पीकर शिरीन नोमिहोदी शिफा ने इस सलाहकारी चरण को महत्वपूर्ण बताया।
2: राष्ट्रसभा में ख्योल मोगिसियां शामिल करने के मामले पर इस समय सलाह मशवरा जारी है। सिलेक्ट कमेटी बनाए जाने के बाद अब आम जनता से अपने सुझाव देने को कहा गया है। राष्ट्रसभा की स्पीकर शिरीन उमिरोदी जिफ्रा कहती
3: हैं,
2: संसद में प्रधानमंत्री का एक मोशन था जिससे एक सिलेक्ट कमेटी कायम की गई। इसमें संसद के सदस्य हैं जिन्हें मैंने चुना है और ये सिलेक्ट कमेटी निरंतर बैठक लगा रही है, पर मैं इसमें नहीं हूँ। ये गोपनीय तरीके से काम करती है, बंद कमरे में बैठक लगती है, लोग इसमें अपने प्रस्ताव भेज

कर भाग ले सकते हैं लिखित रूप से 22 सितंबर तक। ये प्रस्ताव राष्ट्रसभा के क्लर्क को भेजने चाहिए ताकि सिलेक्ट कमेटी विचारों पर अमल कर सके। सुझाव भेजने की आखिरी तारीख मंगलवार 22 सितंबर रखी गई है। सुझाव लिखित रूप में ईमेल के जरिए या इस पते पर भेजे जा सकते हैं। क्लर्क ऑफ द नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट हाउस, पोर्ट लुइस, रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस, या फिर मेल के जरिए clerk@gov.mu।

0: नया राजदूत नियुक्त किया है जो दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत होंगे। एकानल पुलपिपत ने कल स्टेट हाउस रेजुई में गणराज्य के राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। दोनों महानुभावों के बीच सहयोग मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रेस सम्मेलन के दौरान फोम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के अधिकारियों ने नेशनल क्राइम एजेंसी कायम किए जाने के मुद्दे पर अपने विचार दिया। दल के नेता पॉल बेरांजे का मानना है कि ये नई संस्था मॉरिशस में पुलिस कमिश्नर के अधिकारों को कमजोर करेगी, क्योंकि उनके अनुसार कुछ मामलों में उन्हें नेशनल क्राइम एजेंसी के महानिदेशक के निर्देशों का पालन करना होगा। पॉल बेरांजे ने सरकार से मांग की कि राष्ट्रीय सभा में नेशनल क्राइम एजेंसी बिल पेश न किया जाए, और उन्होंने साथ ही कहा कि अगर ये विधेयक आगे बढ़ता है तो फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या प्रिवे काउंसिल में अपील करेगा। 17 सितंबर से तमिल समुदाय के भक्तों के लिए भगवान कृष्ण को समर्पित गोविंदन पूजा का व्रत शुरू हुआ। ये पवित्रता और त्याग का महिमा माना जाता है जो इस साल 5 हफ्तों तक चलेगा और 17 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस शनिवार से देश भर के कोविलों में प्रार्थनाएं शुरू हो रही है। और इसी संदर्भ में मॉरिशस में रामायण गान हिंदू सांस्कृतिक का एक अभिन्न अंग है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आवाज़ संगीत और रामचरितमानस की चौपायों के पाठ के माध्यम से आगे बढ़ती जा रही है। इसके लिए मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की तरफ से महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फेडरेशन ने रामायण गान प्रतियोगिता का आयोजन किया था और इसका फाइनल आज पोर्टवी में आयोजित किया गया। विदेश में 2030 एजेंडा की समय सीमा ढलने में मात्र 4 साल बचे हैं और संयुक्त राष्ट्र का जायजा स्पष्ट है। दुनिया के देश निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जरूरी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे। संघर्ष, जलवायु संकट, असमानताएं और फंडिंग की कमी विकास में बाधा पैदा कर रही है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड में अमरीकी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए समझौता होने का ऐलान किया है। समझौते के तहत डेनमार्क ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार बनाए रखेगा, जबकि अमरीका को इस आर्कटिक इलाके की सुरक्षा पर स्थायी नियंत्रण मिलेगा। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं।
1: पूर्वी से आ रहे अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान है कि आज रात को देश भर में रह रहकर बरसात हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 19 से 22, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्यास्त 5:05, सूर्योदय 6:01 पर।

0: मौसम संबंधी जानकारियों के बाद ही ये समाचार समाप्त हुई। इसे आप तक पहुंचाने में हमें शेव और कोविला का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: बिकुलेन शामुनी में 65 साल के 65 के श्री ज्ञानदेव बिकु जो मालबाओ नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर बिकुलेन शामुनी से उठाकर दफनाने के लिए रिवियरा गाले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमरो एट 11 AM। रॉय रोड पोंलाजी में 78 के 78 के श्री बासुदेव मेगन जो रोहित नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल सुबह 9:30

तो उनके घर रॉय रोड पोलाजी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशरों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 9:30 AM। रॉय रोड ग्लेन पार्क वाकुआ में, रॉय रोड ग्लेन पार्क वाकुआ में 74 साल की की श्रीमती बाईजा बाई एसु, पैदाइशी नाम गणेश और जो बाईजा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के बारह बजे उनके घर रॉय रोड ग्लेन पार्क वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा मेल की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। कोलंबो रोड लॉन्ग माउंटेन में 70 साल की श्रीमती जयवंती राम, पैदाइशी नाम गुंदा, जो शीला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री राकेश राम के घर कोलंबो रोड लॉन्ग माउंटेन से उठाकर दफनाने के लिए खोंगुप की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। बोनाइड रोड विचिया मिल ट्रियोले में 60 साल की श्रीमती सरस्वती मुचा, पैदाइशी नाम तानी और जो बनीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल सपहर तीन बजे उनके बेटे श्री वेदाशय सूरज मुचिया के घर बोनाइड रोड विचिया मिल ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस ट्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 3 PM। श्वाजी रोड पस द फ्लैग में 70 साल की श्रीमती राजकुमारी बिस्तुनुत, जो चिकिया नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी बहन श्रीमती फुलमनी बिस्तुनुत के घर श्वाजी रोड पुस्तफ्लाक से उठाकर दफनाने के लिए श्वाजी पुस्तफ्लाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। नंबर उनचास रोबे एडवा हाउ द ट्रेफर रोजल में 58 साल की 58 years old की श्रीमती आरती कुमारी बंधु, पैदाशी नाम सिबोरत और जो अमिता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके पति श्री धीरज बंधु के घर नंबर 49 रोबे एडवा हाउ द ट्रेफर रोजल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 9:30 PM। रॉय रोड बनाना क्लूनी में 72 साल के श्री देवीदिन बाबूलाल, जो अनिरुद्ध नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती तारा बाबूलाल के घर रॉय रोड बनान क्लूनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बनान क्लूनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। लाकाविया नंबर दो वाकुआ में 86 साल के श्री श्रवण कुमार अजारी सिंह, जो मेघदत्त नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के सवा एक बजे उनके घर लाकाव्या नंबर दो वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1:15 PM। शोक पे डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

शाम के 6:25 25:54 लीजिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि कल रविवार 20 सितंबर 2020 की सुबह 8:30 बजे से शाम 3 बजे तक पोर्टली और आसपास के इलाकों के रहने वाले बाशिंदों को सूचित करती है कि ये इलाके हैं रे रॉयल और जोसेफ रिविया कि कल सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली चालू कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ला मारी और रॉयल रोड ला मारी मालाकोफ मिरन लेन तथा रॉयल रोड ला

और नाथुलेन के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह मरम्मत कार्यों की वजह से कल सुबह 9 से 11 बजे के बीच रॉयल रोड लामारी और मलाकोफ तथा मिरन लेन में कटौती लाई जाएगी और दिन के 10 बजे से दिन के 2 बजे तक रॉयल रोड लामारी और नाथू लेन में भी कटौती लाई जाएगी। चंद अन्य विज्ञप्तियां भी सुनिए। कल ही रविवार 20 सितंबर 2026 की सुबह 8:15 बजे से एवेन्यू लोरिये पॉइंटो कैनोनिये में बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। ग्राहकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने सारे इंतज़ाम कर लें। साथ ही साथ मोसेलमा नोडलैन पेरेबिया के ग्राहकों को भी सूचित किया जाता है कि कल दिन के 11 बजे से दिन के 2 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से इस इलाके में भी बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और सीबी अपने थ्रेफ्ट के रहने वाले ग्राहकों को भी सूचित करता है। ये इलाके हैं कंडा लेन, एवेन्यू दे कैक्टस, एवेन्यू दे ओकिडे, एवेन्यू दे जेरानियम और आसपास के इलाकों के बाशिंदों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 8:30 बजे से सुपहर के 3 बजे तक सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और बिना किसी पूर्व सूचना के मरम्मत कार्य जैसे ही पूरे होंगे तब बिजली चालू कर दी जाएगी। साथ ही साथ जोंची और तेलफेया विलेज, ले जार्डन दे शांतिने, रेलवे पोस्ट ऑफिस, मोसेलमा एस्प्राल, डॉक्टर पिलो, मोसेलमा रैप्सोडी, कालाचान, सोसाइटे मोन प्लेजिर, FIEL, फेल जोंची, फेल ऑफिस, फ्लैट ए फोलिया, मोसेलमा MDA, MDAN और MDA2, फेल मिनी CN और 2 एक और 2, शॉल तेलफेया इंस्टीट्यूट एक और दो, CWA कं ऑगस्ट, CWA मिनीसी पंप, स्टॉप पंप, पीवी फॉर्म मिनीसी, लिसे दे मास्कारेन, एकोल दू सेंट्र और आसपास के आले एल्वेशिया में कल सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। यहां पर भी बिना किसी पूर्व सूचना के मरम्मत कार्यों के पूरा होने पर सप्लाई चालू कर दी जाएगी। कोरोमंडल और आसपास के इलाकों के रहने वाले बाशिंदों एवं ग्राहकों को भी सूचित किया जाता है। ये इलाके हैं मोसेलमा लिसिंग, एवेन्यू रिवरसाइड और द वेजे अपार्टमेंट में कल सुबह 8:30 बजे से दिन के 2 बजे के बीच बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और सीबीआई तेयागूज के रहने वाले अपने ग्राहकों को भी सूचित करता है कि यह स्कूल लेन और मोसेलमा जिराज के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 8:30 बजे से दिन के 1 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना किसी पूर्व सूचना के मरम्मत कार्यों के पूरा होने पर बिजली चालू कर दी जाएगी। सीबी इस असुविधा के लिए अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: गजानन आश्रम, जो जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल रोजबेल के बगल में पाया जाता है, एक सरस्वती महापूजा का आयोजन कर रहा है। ये पूजा रविवार 20 सितंबर 2026 को सपहर के 3 बजे होगी। बच्चों एवं छात्रों से विनम्र आग्रह है कि वे इस पूजन में भरपूर भाग लें। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया आचार्य नगेंद्र शर्मा से संपर्क करें इस फोन नंबर पर 5914339050 5914339050 5914-3390।
2: NBC Radio 24 hours a day.
3: 毛里求斯广。

0: 想一辈子住在你。
1: 听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: बजले प्रभु का नाम, रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

सभी श्रोतागण को अनीता का करजोड़ नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप रेडियो मॉरिशस की लहरों पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम सुन रहे हैं। भक्तों, मनुस्मृति में कहा गया है कि जो द्विज धर्माचरण से रहित है वह वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म जन्य सुख रूप फल को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जो वेद विद्या का अध्ययन करके धर्माचरण करता है वही उसके संपूर्ण सुख रूप फल का भागी बनता है।

भक्तजन, एक संस्कृत श्लोक इस प्रकार है कि ना ही कश्चिदपि ज्ञातुं शक्नोति कस्यचित् कालेन फलते सर्वं ना ही सर्वं सदैव ही। अर्थात कोई भी व्यक्ति यह निश्चित रूप से नहीं जान सकता कि किसके जीवन में कब क्या होने वाला है। प्रत्येक कार्य और प्रयास का फल उचित समय आने पर ही प्राप्त होता है। हर चीज हर समय नहीं मिल सकती, अर्थात हर कार्य का अपना उचित समय होता है। सफलता देर से मिल सकती है, किंतु धैर्य और कर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

प्रियजन, जहाँ विद्वान व्यक्ति नहीं होते वहाँ शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान नहीं होता, और जहाँ शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता वहाँ सच्चे ज्ञान का विकास नहीं हो सकता। अर्थात विद्वानों का संग, श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान की साधना मनुष्य के जीवन को प्रकाशित करते हैं। सत्संग और स्वाध्याय से ही ज्ञान, विवेक और चरित्र का विकास होता है।

भक्तजन, आशा एक ऐसी नदी है जिसका जल मनोरथों से भरा है, जिसकी लहरें तृष्णा है, जिसमें राग रूपी मकर है, तर्क वितर्क रूपी पक्षी है और जिसके दोनों तट ऊंची ऊंची चिंताओं से घिरे हैं। इस दुस्तर नदी को पार कर शुद्ध मन वाले योगी ही आनंदित होते हैं।

श्रोताओं, कहा गया है कि निर्मल स्वभाव वाले और स्थिर उन्नति वाले व्यक्तियों में समय की प्रतिकूलता से उत्पन्न विकार वास्तव में नहीं टिकता। जैसे

ग्रहण के बाद चंद्रमा पुनः अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जी श्रोताओं, इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।

بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मग़फ़रत तलब करते हैं। हम अपने नफ्स के शर से और बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रेडियो मॉरिशस की उर्दू नशरियात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीनाज जान अली। महफिल शब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। इस बाबरकत महफिल का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करते हैं। कुरान महज वो किताब नहीं जिसे हम आम किताबों की तरह पढ़ते हैं, बल्कि ये ज़मानो मकान की सरहदों को चीर कर नाजिल होने वाला अल्लाह सुभानहु व तआला का कलाम ज़िंदा है। ये लोहे महफूज का एक मादी आईना है और इस कायनात में जहां हर तरफ शकूक को शुभात का अंधेरा है, यकीन मुहक्कम का वाहिद और आखिरी सरचश्मा है।

सामईन, हम अक्सर तकदीर को बहाना बना लेते हैं अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए। ये कायनात बहानों पर नहीं चलती, ये उसूलों पर चलती है। अल्लाह ने आदमी को शऊर दिया है सिर्फ जीने के लिए नहीं, बदलने

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी,
3: भोजपुरी तड़का,
2: तड़का।
4: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
3: भोजपुरी,
2: भोजपुरी तड़का,
3: तड़का।

नमस्कार, 8 मिनट हो गल बा और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमर सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत बा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। आप सब कोई के साथ देवत हवन रत्ना सब प्रेम नमस्कार स्वीकार कर ले जा अभी से लेके रात के 11 बजे ले आप सब कोई के मनोरंजन करे खातिर बढ़िया से बढ़िया भोजपुरी गीत और संगीत के संगे हाजिर हो गल हई। और जे तोरा मन बा कोनो गीत सुने के तोरा मन बा कोनो खातिर गीत डेडिकेट करे के त जरूर हमनी के संगे जुड़े सकब 4028085 पर 4028085। और जे मिसाज विदा करे खोजत हवा तो 5251700 सेकंड दे सकते हैं 5705 पर तो हमने के टेलीफोन करे सकवा था। चला अभी से लेके बढ़िया बढ़िया गीत तोहर खातिन और 2005 के बरिस में एल्बम एगो बढ़िया गीत चंद्रदेव जीवोदन के आवाज में रखल है गीत रहल तो चला है ये गीत के संगे करब जाए एगो बढ़िया शुरुआत भागते रहेला आदमी जब शाम दियारी दिमाग आवेला तक कबो कबो लगेला हाय भागल जिंदगी में तनो तनी तनी संतोरा ब्रेक मिल गल तो चला लाजवाब गीत के साथ कर अब जाए गो बढ़िया शुरुआत।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: हाँ गीतवा सुन के तो हमारे चाचा भागे लगल सच्चे के त्राका लगल ओकरा हाय रे भगवान का बोलब आ देखा चाचा के किस्सा तो बोलते रहब तोहरा और ये है जो सुनीता जी है हमनी के बहुत प्यारी सुनीता जी घोंगोब से हमनी के हमेशा साथ देवेलन सुनते रहेलन और उनकर जो बहिन है विमला कोंगो माँ से साथ देवेलन घोंगोब से हवन अमृता जी और गुडलैंड से हवन वीना जी और अमृता जी बोले सुनीता जी बोले हमनी के हमर बहिन खातिन चला दत तनी राधा के शोभेला बहुत खुशी रहेलन कृष्ण ओकज के आवाज में रखल राधा के शोभेला हाँ तो चला चलाओ अब जा ये गीत अमृता जी खातिन भी चलाओ अब जा अमृता जी हमनी के साथ है देवत हवन पीतो बगल से अमृता गणेश साथ जुड़ गल हवन उनकर दूगो नातिन संगे अमृता जी हवन सोनिया और परी के संगे बेटा हवन विषम पतो हवन मीनाक्षी और बेटी पूनम के नाम जोड़ अब जा आज के है कार्यक्रम में और हाँ चाचा के बोले रही ना है गीतवा सुन के लगल भागे लगल धौगे हम चाचा से बोले चाचा कौन ची होल काहे भागत हो काहे धौगत हो बोले हम बहुत परेशान हो गल है हम बहुते बहुते त्राका में है हम बोले कौन ची होल बोले जाने ले हमार जीवन के सबसे बड़का त्राका है ये हा हम बोली कौन ची बोलब तो हम जानब ना कौन त्राका बा पैसा के ताका बा कौन त्राका बा लासौते के त्राका बा कौन त्राका बा बोलत मतलब तो हम तो है ये अभी ले सोची ला ऊपर वाला हमनी के धरती पे काहे विदा कर ले हवन कौन ची करे के खातिन विदा कर ले हवन ना हमनी के एगो अच्छा शकल देलक ना हमनी के अच्छा अकल देलक दोस्त भी ऐसा निकम्मा लोग दे देलक जो कोनो काम के नहीं हो और किस्मत भी ऐसे दे देलक हिया हुआ से सगड़ो जगह से हमर किस्मत फाटल बा और शरीर ऐसा देलक कि का बोलब 50 से 100 कदम चलब जैसे चले के शुरू करीला तो हमर दिल के धड़कन हो जाला तेज और हमनी के जोर जोर से चिकर चिकर के बोलेलन मालिक तू रुकबा कि हम रुक जाई बोला था अब कौन ची करब ऐसा शरीर के बोला
3: था धर्म सिंदूर कृष्ण

0: भोजपुरी तड़का
1: उमेश दाऊ के आवाज में रखल भोजपुरी तड़का के हई गीत रहल जिले जिले और इतना तनी गीत सुन के बहुत मन खुश हो जाला। तो चल अगला गीत जो है सुनीता ननकू के आवाज में रखल और हई गीत चलाओ अब जा विश्वानी जी के पसंद पे। और विश्वानी जी हमनी के साथ देवत हवन वाकवा देने से और बोलत हवन उनकर सब सहेली लोग गल हवन रोद्रिक घूमे। तो चला उनकर खातिन और उनकर बहिन हवन इंदिरा और शारदा, सखी हवन नीला और प्रतिभा, संगे हवन शोभा और अमृता और साथ देवत हवन गीता गजादर। तो चला उन सब कोई खातिन चलाओ अब जा सुनीता ननकू के आवाज में रखल चमेली चमेली औरी चमेली चमेली बोलन तो हमार चाची चमेली चलाल हो दिमाग में का बोलब। हमार चाची जाने ल कौन चीज बोलन चाचा से, चाचा के बोले अहो हाय बरिश करवा चौथ पर हमनी के कौन चीज देब। तो चाचा बोले हाँ तोरा मोबाइल किन के देवब। तो चाची बोले मोबाइल के कौन चीज करब, मोबाइल तो बा हमनी के। तो चाचा बोले अच्छा तो कोई बात नहीं तोरा एगो सोने के उंठी खरीद के दे देवब। बोले नहीं नहीं नहीं वो उंठी नहीं चाहिला, उंठी भी अभी अभी किन ले हई। तो चाचा तो बोले कौन चीज ले के देव अब तोरा सोना के चेन लेके दे। तो बोले नहीं नहीं चैन भी बा हमनी के। तो चाचा बोले तो कौन चीज लेबे। तो बोले हाय बरिस कुछ ऐसन दिया हमनी के जेकर हम कबो उम्मीद नहीं कर ले हई, कबो सपना में भी नहीं सोच ले, एगो ऐसन अच्छा वाला कादो दिया। तो चाचा बोले अरे वाह कौन चीज जीवस दे दे तोरा।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बा और चल अभी 9:35 हो गल बा और हैजा पर हमनी के साथ देवत हवन नोएल फॉन्स से गायत्री जी संगे हवन उनकर मामी कल्याणी मोहन जे तनी बीमार हो गल हवन मेबक से साथ देवत हवन बेटा अजय साथ देवत हवन और भौजी हवन शकुंतला मोतायलोंग से और खास सखी गीता बाई नोएल फॉन्स से संगे संगे हैजा पर जुड़ गल हवन जयंती जी पे जूली से उ भी तनी तबियत नरम गरम बात है। चल आशा करब जा भगवान से प्रार्थना करब जा जितना कोई हमनी के सुनत हवन जितना कोई बीमार लोग हवन उन सब कोई खातिन ईश्वर से प्रार्थना करब जा और अभी ले बहुत जगह पर गणेश चतुर्थी के पर्व जारी बातें ढेर कोई अभी ले प्रार्थना करत हवन पूजा करत हवन और काल ढेर कोई जयंस समंदर किनारे विसर्जन के कार्यक्रम करे। तो चला आगे बढ़ब सा और बढ़ब जा और अगला गीत जन हल लागी नाही छूटे राम है गीत चलावब जा तो हर खातिन और ही मजेदार गीत संगे जितना कोई साथ देवत हवन बस बढ़िया बढ़िया चुटकुला सुनते सुनते तनी तोहर जन त्राका हा ओकरा हटा द और ही हमनी के चचा बोले एगो बात हमर दिन में बहुत दिन से आवता तो हम बोलनी हाँ बोला चचा बोले एगो बात हमनी के समझ में नहीं आवता है जो मरल आदमी है वो तो कबो बोले नहीं सकेला जिंदा आदमी तो नहीं जानी तो फिर है नरक और स्वर्ग के बात के बतावता के फैलावता है सब बतवा कि हाई काम करवा तो नरक में जाइबा हाई काम करवा तो स्वर्ग में जाइबा उ का हौजा पर द्वारपाल रहल की है वहाँ के बात हियाँ आके हमनी के सब कोई के सुनावत हवन

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का।
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बहुते चौचक गीत बढ़िया बढ़िया गीत जे तू हमनी के खोज खोज के मांगत हवा और हम भी बहुत आनंद से तोहर खातिन चलावत हई और आमीजे करत हई। गीत सुन के बहुत मजा बहुत बहुत लाजवाब गीत और चलो अगला गीत जो है शांति जी खातिन चलावब जाती है उर से उस साथ देवत हवन और राजा बंधु के आवाज़ में रखल है गीत थोड़ा जीला और है गीत दागोचिया के मराठी परिवार खातिन और खास कर उनकर भगीना ओम खातिन और जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिन और खास कर उनकर भैया बलराम खातिन जे लापुलिस हवन और अभी काम करत हवन। तो चल मजेदार गीत संगे जुड़ जाइया और हंसते मुस्कुराते बस साथ देते रहिए जा और ही हमर चाची के का बोलब चाचा कौन दिन चाची से बोले काहे मुंह फुला के बैठल हुआ हो बोले चाची बोले वो जाने लो आज सब्जी तनी पकैली तो सब्जी में तनी जस्ती नमक पड़ गल बा तो चाचा बोले तो ई में मुंह काहे बना के बैठल हवा मुंह काहे फुलावत हवा बोले हाँ तो नमक तनी जस्ती हो गल बा तो सब्जी खराब हो गल ना तो हम तो सोच ली तू हमनी के बात बोल बा हाइये से हम मुँह फुला के बैठल हई तो चाचा बोले अरे पगली तू तो हमार पूरा जिंदगी खराब कर देले बा हम तोहर से कबो कुछ बोलले हई तो हाय तो सब्जी हा कौन ची बोलब चुचाप तो खा लेब

0: भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम और चला है जा पर हमनी के साथ देवत हमन चाची ललिता कुशल थ्रियो ले से और अगला गीत के मांग करत हवन और हाई गीत हा लागी नहीं छूटे राम के लाले लाल होठवा। हाई गीत उनकर बहिन सुदेवी ज्ञानी संगे हवन छोटी पोलौजे से दादी प्रभावती भाई आत्मा राम भाई हरीश बोबासे से सुखलाल मौसी माला राम जावन और बहिन मीता खातिर। तो चले एक बार फिर से हाई बढ़िया सन गीत सुनब जा पर ओकर अगाड़ी चाचा के तक गीत तो सुन ला हो। चाचा जाने ला बोले हम एगो गीत लिखले हैं। हम बोले अरे वाह चाचा तू तो गायक हो गल हवा तू तो गीतकार हो गल हवा। बोले हाँ हमार बुढ़िया के देख देख के हमनी के बहुत इंस्पिरेशन मिले ला गीत गावे के। हम बोले अरे वाह चाची चमेली के बोला बबी कि बहुत तोहर बूढ़ा तो होशियार हो गल हवन तोरा देख देख के गीत वा लिखेलन। बोले पहला गीत तो सुना चार गो लालिन लिखले हैं। हम बोले अरे वाह गा के सुनाव चाचा हमर जितना श्रोता लगन हवन वो भी सुनियन सा। बोले काहे ना सुनाव अब जा। अरे गा करत हो चाचा। बोले गल्ला ठीक करत है हो। अच्छा सुना है जो बहुत बहुत ओरिजिनल है गीतवा। हम बोले यार अच्छा अच्छा सुनाव सुनाव हाली कर सुनाव अल बे।

अरे चचा हक्का ओरिजिनल है तो फिल्म के गीत पर हो। बोले हाँ अभी चार गो लालिन लिखना है, दूसरा आगे सुनावा। अभी तोर चाची देख ले तो हमने के मारी।

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी रखत है और चल अभी थोड़ा घड़ी में रात के 10 बजी और हैजा पर अनीता जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन फ्लिक ऑफ फ्लैग देने से और बोलत हवन बहुत मजे से गीतवा सुनत हवन और आज तो राधा अष्टमी बा जितना कोई पूजा पाठ करत हवन सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना और सरिता बुद्धू के आवाज में रखल कलकत्ता से छूटल जहाज है गीत के उमांग कर ले हवन तो जरूर है गीत चलाओ अब जाऊन कर खातिन और हैजा पर हमनी के दागोचिया दिने से नाजीरा भी साथ देवत हवन नाजीरा जी बस साथ देते रहिए जा मजेदार गीत संगे और हैजा प्रेमिला सी गुलाम जी भी जुड़ गल हवन कौदे मास दिने से उनकर दू गो बहिन हवन रागिनी और साधना बेचू परिवार से ग्रीष्मा अफलाक से वो हमेशा साथ देते रहेलन और अनसुया राम के लावन त्रियोले दिने से बस हंसते मुस्कुराते सब कोई ऐसने साथ देते रहिए जा मजेदार गीत संगे आगे बढ़ब स और चुटकुला के भी अभी थोड़ा घड़ी में जारी रखब सा

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का, तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही मजेदार कार्यक्रम चले संगीत चला है जहाँ पर कोनो भी खास मौका रही तोहर हिया शादी रही जन्मदिन रही और ये तोरा मन बा कोनो खातिन गीत मांगे के त जरूर हमनी के टेलीफोन करे सकब 402-808-5 पर और ये मिसाज भी दा करे खोजत हव 5251-7005 पर तू हमनी के मिसाज भी विदा करे सकब व्हाट्सएप के द्वारा या आम मिसाज के द्वारा। तो चला हैजा पर कार्यक्रम जारी रखत हई और हैजा बिल्कुल रात के 10:03 हो गल बाद 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और पूर्णिमा फोकिरा जी के आवाज में रखल है अगला गीत चलाओ अब जा रिवे जो हों पर।

से पूर्णिमा फोकिरा जी खातिन और उनकर प्यारी नातिन परी जेकर जन्मदिन बा परी दसोई के मामा पूनम और पापा रोशन भाई हवन कनीश और नानी पूर्णिमा की ओर से सात देवत हवन मौसी पूजा पिंकी प्राविनी मामू हवन भावेश मामी कुष्मा उदीन जे लॉन्ग लेते हैं मैं हवन और साथ ही साथ नाती आयुष के भी जन्मदिन बा 28 तारीख के तर नानी माँ बोले आयुष खातिन भी गीतवा चला द ममा पूजा पापा हवन नीतीश देवी दयाल जे फ्लाक रहे लंसर और सब परिवार दिनी से सब परिवार की ओर से उनकर खातिन चलाओ अब जा पूर्णिमा फुकीरा जी यानी नानी जी के आवाज में रखल है ये गीत जरूर पलना में झूले श्री राम है ललना के गीत तू मंगले हवा तो जरूर चलाओ अब जा है मजेदार गीत तो चला साथ देव अब जा

जी तड़का कार्यक्रम आउरी चलग लागी चलाव अब जा किशोर खीमिया के आवाज में संगे चली जा अनीता लाल जी जी हमने के साथ देवतमन मॉडल बे देने से और लाल जी परिवार गोगा परिवार इतु परिवार और नागेश्वर परिवार खातिन संगे चली जा आउरी हमार बिचारी चाची चमेली कोन दिन ऐसन कपार पकड़ के बैठले रहल त बोले चाचा से बोले आज तक नहीं बात दवाई घर में हमर तक जितना कपार भारी होता का बोलब लगल चचा दांत कचर के बोले हाँ तू तो हमर जीवन पे हमर भारी हो गल हवा हम कबो बोले हैं तोरा तू तो रोज हमर कपार खाला हमर रोज कपार भारी हो जाला तोहर खातिर तोहर कारण

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला है जहाँ पर अमृता जी हमने के साथ जुड़गल हवन पीतों देने से और उनकर बेटा विषम सुने खोजत हवन जुब्बे डालो तो लेके जाए रंभा राम तोहल के आवाज में और हई गीत खास उनकर खातिन और उनका जितना संगतिया हवन अभी रात के काम करत हवन और जितना कोई खुशी हवन सुबह ता के गीत सुने के चलो उन सब कोई खातिर और हमर पप्पू भैया के कमाल त सुनते चला पप्पू भैया हमनी के बोले संडे के फुल फॉर्म कभी सुन ले हवा हम बोली संडे के कौन फुल फॉर्म रहेला हो बोले रहेला रहेला हम आविष्कार कर ले हाँ संडे के फुल फॉर्म सुनब त हम बोली हाँ बोल दिले हवा तो सुना द बोले संडे जाने ल संडे हई बहुत बहुत बड़का दिन ह और एस एस के मतबल ह सुतले रह यू के मतबल ह उठिया नहीं एन के मतबल ह नहाइया नहीं डी के मतबल रहेला दिन भर फोन पे लगल रहिया और आ ए के मतबल ह आराम करिया और वाई के मतलब मतबल ह या फिर अपन संगतिया संगे तनी पार्टी करा सच्चे के बोला था है जोन संडे आदमी जब बनैले हवन उ जोन दिन हमनी के भेंट भेटा जाए ओकरा हार माला पिना के ओकरा आरती उतारब पप्पू भैया दूसर कोनो काम नहीं बा

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का और बस 10:24 हो गल बा और चला है जहाँ पर राजन लक्ष्मण जी हमनी के साथ देवत हवन लाफलोगा देने से और उनकर पत्नी हवन माला दूगो बेटी प्रार्थना और प्रगति और उनकर सब लक्ष्मण परिवार खातिन बसंत सुपौल के आवाज में रखला है अगला गीत दूल्हा शादी करे जाला और दूल्हा के बात तो छोड़ो जानत हव हमार पप्पू भैया कौन दिन गल पंडित जी के देखे अरे पंडित जी के जाके बोले हमने के शादी करके बहुत मन करा था त चचा संगे गल रलन जाने ल चचा कौन ची बोलन बोले बेटा शादी करे के तरह मन करा था शादी करियो तो कुछ ऐसा हो जाए का शादी करियो तो कुछ ऐसा होगा कि बीवी लड़ते रहेगी तोहर से और तोहर जेब में एको पैसा नहीं होगा अरे वो मांगे दोहर से चावल बर्फी औरी हलवा एक क्रीम लगा लगा के बनेगी गोरी और तुम रह जाओगे कलुआ अरे बाद में मांगेगी बच्चा फिर तोहरा पढ़ी बड़ी भरे के फील स्कूल के फीस और दवाई के खर्चा अरे खत्म हो जाए तोहर आजादी और अलग कर दे वो तोहर अम्मा औरी तोरे पिताजी और अम्मा के शादी करे के मन करा था घरे रहा

0: भोजपुरी तड़का
1: 10:32 और ये चला है जहाँ पर ललका चिरैया सो भाजी हमने के साथ देवा थवन कथबोन से और उनका सब परिवार खातिन जितना कोई सुना थवन जितना कोई बीमार हवन उन सब कोई खातिन जितना कोई दुख में हवन पीड़ा में हवन उन सब कोई खातिन सुना नोयन की आवाज़ में रखल है अगला गीत चलाओ अब जा मज़ेदार गीत संगे जितना कोई सुना थवन बस ऐसने साथ देते रहिए जा बहुते प्यार इसे और हमर जोन पप्पू भैया हका बोला पाठशाला गल कौन दिन और पाठशाला जाके जाने ल गुरु जी ओकरा बोले हाँ पप्पू उठ जा तोर से एगो सवाल पूछब सत्य औरी भ्रम है दोनों में कौन अंतर बा तो पप्पू भैया बोले गुरुजी तू हमने के पाठ पढ़ावत हवा है ह सत्य औरी हम पढ़त हई है तोहर भ्रम

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रात के 11 बजे ले और चला हाईजा पर 10:37 हो गल बाद जितना कोई रात के काम करत हुआ बस बहुत हिम्मत के साथ बने रहिए डटे रहिए और ही मजेदार गीत के कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस और ही रेडियो मनोरंजन पर तू सुने सकत हुआ। तो चला आगे बढ़ब स और हई जो अगला गीत है मीराबाई दमिया हमनी के साथ देवत हवन मौ डालबे बगल से और सब दमिया परिवार और पाद्या परिवार खातिर अगला गीत सुदेश बोईजू के आवाज में रखल और हमर चाचा संगे का बोला हमर कपार खाली हो जाला हमनी के बोले जाने ल ऐजा पर बोले हमनी के एगो बात हमनी के समझ में नहीं आवेला जब धनवान दोस्त संगे बैठ के बतियाई ब दोस्ती रखब त तू कबो धनवान नहीं बनब त हम बोली हाँ त कौन चीज होल बोले नहीं है ये समझे के बात है धनवान संगे जब तू बैठ के बतियाई ब दोस्ती करब त तू धनवान नहीं बने सकब होशियार संगे जब तू बैठ के बतियाई ब ओकर संगे दोस्ती करब त तू कबो होशियार नहीं बनब। हम बोले हाँ तो कौन सी होल कौन सी बोला था वो चाचा बोले हाँ ये बात तो हमारे समझ में नहीं आवेला जब पियकड़ संगे बैठब एगो बेवड़ा आदमी संगे बैठब एगो मारू आदमी संगे बैठब तू मारू कैसे हो जात हुआ है ये हमने के कपार में नहीं बात आवेला।

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला है जहाँ पर चाची नीता खेदनी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन सैन जुलिया विलास से और साथ देवत हवन सब नीमन परिवार होशनुआ देने से धर्मजय जी और साथ हवन उनकर पत्नी नीला, बेटी हवन सुनीता, बेटा हवन नवीन, पतु पूनम और सब नाती पोता संगे। तो चलब बिस्वानी दीपवा के आवाज में रखल है गीत चलाओ अब जाओ उनकर खातिन और सब कोई लाइकवन जितना पढ़त हवन उन सब कोई खातिन है गीत जारी पा।

0: स्मृति हॉल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और जलाईजी के साथ आज के कार्यक्रम के समाप्त करे के समय हो गल बार। आज कमल चिंतामणि की आवाज में रखल गांव के लव फाउंटेन के हाई गीत के अगाड़ी कुनल हीरीलाल की आवाज में सुनलक जुली छोकरी। और आज के अंतिम गीत आतिश बागी गति के आवाज में रखल छोड़ के मुरीसवा। और है गीत जितना कोई पसंद हवन, जितना कोई खुशी हवन है गीत सुने के, उन सब कोई खातिर जितना कोई रात के काम करत हवन, बस साथ में काम करते रहिए, गीतवा सुनते रहिए। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम के हाईजा पर फुल स्टॉप लगाओ अब जा। आशा करब जा आज के कार्यक्रम सब कोई के अच्छा लगल। और फेरों से भेट आप सा आवत शाम दिखे, तब ले बस अपन ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन बहुत बहुत बहुत बहुत जोली है, सुंदर है। तो चला इसी के बाद हमने के साथ दियंजा सुनहरे पल कार्यक्रम में नीतू शाह, जहाँ पर पुराना गीत के तू आनंद लेवे सकब, जो चली रात के 12 बजे ले। तो चले इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि सब कोई के।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: प्रणाम श्रोताओ, आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक कुशल मंगल है। स्वागत है आप सभी का सुनहरे पल कार्यक्रम में। तो चलिए, रेडियो मॉरिशस के सभी जितने भी प्यारे प्यारे लोग नीतू का साथ दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद। आज खूबसूरती, अदा, अभिनय और जज्बे का एक खूबसूरत नाम आपको पेश कर रही है। कौन है वो? पहला गाना सुनते चले, पता चल जाएगा।

हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की जब भी बात होती है तो कुछ ऐसी अभिनेत्रियों का नाम सामने आते हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने अभिनय, अदाकारी, स्क्रीन प्रेजेंस और यादगार किरदारों से दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बनाई। ऐसी ही एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं रीना रॉय। इन्होंने 1970s के दशक में हिंदी फिल्मों में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका फिल्म करियर 1972 की फिल्म जरूरत से शुरू हुआ। इस फिल्म के बाद उन्हें जरूरत गर्ल के नाम से भी जाना गया। लेकिन रीना रॉय की असली पहचान सिर्फ एक ग्लैमरस हीरोइन के रूप में नहीं बनी। उन्होंने समय के साथ अपने अभिनय की रेंज दिखाई और इमोशनल, रोमांटिक, ड्रामाटिक, एक्शन और फैंटेसी जैसे अलग अलग प्रकार के किरदार भी निभाए।

1973 में जैसे को तैसा ने उनकी लोकप्रियता को बढ़ा दिया। जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी और फिल्म का वो ही मशहूर गीत अब के सावन आज भी उस दौर की यादों को ताजा करता है। उनकी अदा, डांस और कैमरा के सामने उनकी नेचुरल प्रेजेंस ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया।

इसके बाद रीना रॉय ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके करियर में एक बड़ा मोड़ आया जख्मी और फिर 1976 की कालीचरण और नागिन से। खास तौर पर नागिन में उनका किरदार बहुत यादगार रहा। इस फिल्म ने उन्हें मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा की लीडिंग हीरोइंस की पंक्ति में मजबूत जगह दिलाई।

रीना रॉय की खासियत श्रोताओं ये थी कि वो एक ही तरह के रोल्स तक सीमित नहीं रही। कभी वो एक मासूम और खूबसूरत हीरोइन के रूप में नजर आई, कभी एक मजबूत और जज्बाती महिला के रूप में, कभी उनके किरदार में दर्द, कभी शरारत, कभी रोमांस और कभी संघर्ष। उनके चेहरे पर इमोशंस को एक्सप्रेस करने की खास क्षमता है। वैसे अपनापन रीना रॉय के करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में उन्होंने एक चैलेंजिंग रोल निभाया और उनके अभिनय को फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड जीता। हालांकि कैटेगरी को लेकर उन्होंने अवार्ड स्वीकार नहीं किया। फिर आई आशा, जिसने रीना रॉय की पॉपुलैरिटी को और मजबूत किया। इस फिल्म में उनका इमोशनल अंदाज, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों को बहुत पसंद आया। उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में फिल्मफेयर नॉमिनेशन भी मिला।

रीना रॉय और जितेंद्र की जोड़ी भी हिंदी सिनेमा की मशहूर जोड़ियों में शुमार की जाती है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी पेयरिंग को दर्शकों ने पसंद किया। इसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी रीना रॉय की जोड़ी ने कई सफल फिल्मों में अपना रंग जमाया। कालीचरण जैसे प्रोजेक्ट्स ने दोनों को एक याद स्क्रीन पेयर बनाने में मदद की।

1980s के दशक में रीना रॉय का करियर अपने शिखर पर था। इस दौर में उन्होंने नसीब, आशा, अर्पण, सनम तेरी कसम, आशा ज्योति, जानी दुश्मन, प्रेम तपस्या, लक्ष्मी, करिश्मा और कई अन्य फिल्मों में काम किया। 1982 भी उनके करियर का बहुत व्यस्त साल रहा, जब उनकी कई फिल्में रिलीज हुई। रीना रॉय की एक और खास पहचान थी उनका फैशन और स्टाइल। 70s और 80s के बॉलीवुड फैशन में उनका अंदाज बहुत यादगार रहा। सारी हो ट्रेडिशनल इंडियन लुक, ग्लैमरस वेस्टर्न आउटफिट्स हो या एलाबोरेट फिल्मी कॉस्ट्यूम्स, रीना रॉय हर लुक को अपनी पर्सनालिटी के साथ कैरी करती थी। उनकी आंखों की एक्सप्रेशन, ग्रेसफुल बॉडी लैंग्वेज, हेयर स्टाइल और एलिगेंट प्रेजेंटेशन उनके स्क्रीन पर्सनालिटी का हिस्सा थी।

डांस के मामले में भी रीना रॉय ने अपनी वर्सिटैलिटी दिखाई। उन्होंने ट्रेडिशनल और फिल्मी डांस एक्सप्रेशंस के साथ साथ कंटेम्पोररी स्टाइल्स को भी अपने परफॉर्मेंसेस में जगह दी। उनके डांस नंबर्स में सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि एक्टिंग और एक्सप्रेशन का भी एक खूबसूरत मेल देखने को मिलता था। उनकी फिल्मोग्राफी में वैसे विमेन ओरिएंटेड रोल्स भी खास रहे श्रोताओं। 100 दिन सास के, बेजुबान, लक्ष्मी जैसे प्रोजेक्ट्स में उनके किरदारों में महिलाओं के इमोशंस, संघर्ष और सामाजिक परिस्थितियों की झलक नजर आती थी। इसी वजह से रीना रॉय को सिर्फ एक ग्लैमरस स्टार के रूप में देखना उनके करियर को बहुत छोटा करके देखना होगा। उन्होंने इमोशनल और कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स में भी अपनी एक्टिंग एबिलिटी साबित की। उनके करियर का एक खास पहलू था कि वो बड़े स्टार्स के साथ काम करते हुए भी अपनी स्क्रीन आइडेंटिटी बनाए रखने में सफल रही। राजेश खन्ना, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, संजीव कुमार और कई अन्य बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया। उनकी फिल्म जर्नी में रोमांस के साथ साथ फैमिली ड्रामा, एक्शन, सोशल ड्रामा और फैंटेसी सिनेमा भी शामिल रहा। फिल्मों के अलावा रीना रॉय ने टीवी में भी काम किया। उन्होंने अपनी बड़ी बहन बरखा के साथ मिलकर एक्टिंग स्कूल चलाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया। इस तरह उनका सिनेमा से रिश्ता सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रहा बल्कि नए कलाकारों को एक्टिंग की दुनिया से जोड़ने की कोशिश भी उनके सफर का एक हिस्सा बनी। रीना रॉय के करियर में हम एक और खूबसूरत बात बताता है कि बॉलीवुड में स्टारडम सिर्फ एक फिल्म या एक गीत से नहीं बनता। उसके पीछे होता है सालों का काम, अलग अलग किरदारों को निभाने का हौसला, बदलते सिनेमा के साथ खुद को ढलने की क्षमता और दर्शकों के साथ एक गहरा रिश्ता।

नारॉय की खूबसूरती उनकी पहचान जरूर थी, उनकी असली ताकत थी उनकी आंखों की भाषा, उनका इमोशनल एक्सप्रेशन, उनकी ग्रेसफुल पर्सनालिटी और किरदार के हिसाब से अपने अंदाज को बदलने की कला। वैसे 1983 में रीना रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी की और फिल्मों से एक ब्रेक लिया और उसके बाद उनकी जिंदगी एक नए दौर में प्रवेश कर गई। कुछ सालों बाद वो भारत लौटी और 1990s के दशक में एक्टिंग में वापस भी आई। रीना रॉय की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कलाकार की कहानी है जो बहुत कम उम्र में सिनेमा में आई, मुश्किलों और बदलते दौर के बीच अपनी पहचान बनाई, स्टारडम देखा, सिनेमा से ब्रेक लिया, फिर वापस पर्दे पर आई और अपनी एक अलग सिनेमैटिक लेगेसी छोड़ गई। और शायद इसीलिए जब भी पुराने बॉलीवुड के पर्दे पर रीना रॉय का नाम उभरता है तो आंखों के सामने एक खूबसूरत चेहरा, ग्रेसफुल मुस्कान, एक्सप्रेसिव आंखें और एक ऐसी हीरोइन की तस्वीर उभर आती है जिसके अंदाज में था नजाकत भी, जज्बात भी, ग्लैमर भी और अभिनय की गहराई भी। रीना रॉय हिंदी सिनेमा के उस दौर का खूबसूरत नाम जिसे वक्त ने गुजरा जरूर लेकिन बॉलीवुड की यादों से कभी मिटा नहीं पाया। शुभ रात्रि, प्रणाम।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।